印度德里广播电台，下面请听印地语电音歌曲。

0: 孟秋霞播送。
1: 印度德里广播电台，下面请继续收听印地语电音歌曲。

को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सब पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल रहा हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

一篇特写，题目是《印度罗勒，一种神圣植物》，是孙玉如播送的。印度德里广播电台。

0: 印度德里广播电台，各位听众，本台欢迎各位听众来信告知收听情况以及对本台节目提意见。来函请寄印度驻各地外交使节，或转交，或直接寄交到印度新德里第500号信箱，全英电台对外广播处处长收。地址再播送一遍，印度新德里第500号信箱，全英电台对外广播处处长收。电子信函请发送给 esd.chinese@air.org.in。 这次的普通话节目就播送到这里。
1: विवाह मंडप में श्री राम तथा सीता विराजमान हैं। उधर राजा दशरथ और जनक जी अपने अपने सगे संबंधियों समेत उपस्थित हैं। राजपुरोहित तथा विधि विधान संपन्न कराने वाले मुनिगण ने शुभ समय विचार कर राजा जनक की पट्टमहिषी सीता जी की माता रानी सुनैना को मंडप में बुलवाया। पुलक भरे मन से राजा जनक और रानी सुनैना श्री राम के चरण पखारने लगे, जिनका स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा के रूप में शिव के मस्तक पर शोभा पाता है, जिन्हें मुनि तथा देवगण पवित्रता की सीमा मानते हैं, उन्हीं चरणों को आज बड़े भाग्य वाले जनक पखार रहे हैं। जिस प्रकार हिमवान ने शिव को पार्वती तथा सागर ने विष्णु को लक्ष्मी दी थी, उसी प्रकार राजा जनक ने सीता को राम को समर्पित किया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस बाल कांड भाग 117। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए आप सुनते हैं संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः अद्य प्रवर्तते। तेन सह सामाजिक सुरक्षा सन्धिरपि, या डीसीसी इति द्विगुण अंशदान सन्धिः नाम्ना प्रसिद्धः, क्रियान्वितो जातः। अनेन ब्रिटेन देशे कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यावसायिकेभ्यः कार्यावसराः, प्रतिस्पर्धा सामर्थ्यं च वर्धिष्यन्ते। एषः सन्धिः तावत् ब्रिटेन देशस्य विपण्यां 99% यावत् शुल्कश्रेणीषु भारतीय वस्तूनां शून्य सीमा शुल्कं सुनिश्चीकरोति, येन भारतीय निर्यातस्य संवर्धनं भविष्यति। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् वाणिज्य सचिवः राजेश अग्रवालः इतं सन्धिं भारतस्य व्यापार विकासे महत्वपूर्णं सोपानम् इति अवर्णयत्। प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते। भारतेन होर्मुज़ जलसन्धि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यद् वैश्विकस्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्। श्रीजयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन तेहरान् प्रशासनाय स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र

0: Di sini siaran luar negeri Akashvani, Seksi Bahasa Indonesia, India. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, penyiar Anda Anita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.
1: Catch the rain. बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
5: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
3: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
6: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
3: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत बरतानिया जामे इकतसादी व तजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौइयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी व तजारती माहदा आज से अमल में आ गया है। इसके साथ साथ गुजर बसर से मुतालिक समझौता दोहरे ताउन का कन्वेंशन DCC भी नाफिज हो गया है, जिसके तहत बरतानिया में भारतीय पेशावर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबिकत को इस्तेहकाम हासिल होगा। इस अहम समझौते के तहत भारत के बरामदकारों को बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे भारत और बरतानिया की दिफाई शराकत दारी को गहरा करने और दोनों मुल्कों के आवाम में मजीद खुशहाली लाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार होता है। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इकतसादी व तिजारती माहदे को भारत के तिजारत के सफर में एक अहम संग मील करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल के लिए ताबनाक इकतसादी शराकत दारी को इस्तेहकाम हासिल हुआ है। दोहरे ताउन के कन्वेंशन DCC का जिक्र करते हुए जनाब अग्रवाल ने कहा कि इस बंदोबस्त से बरतानिया में भारत के पेशावर अफराद और उनके आजिरों को फायदा हासिल होगा। ज़राअत और देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मगरबी बंगाल के वजीर आला स्वयंदु अधिकारी, रियासती काबीना के अरकान और मरकजी व रियासती सरकार के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। जनाब चौहान ने ऐलान किया कि मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की मंजूरी दी है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: मीटिंग में सड़कों, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, कोयले और मेहनत के शोबों में 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बुनियादी ढांचे से मुतालिक 19 बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। जमीन को कब्जे में लेने, बाजाबादकारी, जंगलात से मुतालिक मंजूरियों और बैन महकमा जाति तालमेल से मुतालिक मामलात को हल करने की हिदायत दी गई ताकि प्रोजेक्टों को बरवक्त मुकम्मल किया जा सके। मरकजी वजीर ने अमल दरामद में तेजी लाने के लिए प्रोजेक्टों पर नजर रखने के रियासती सतह के ग्रुप कायम करने की भी तजवीज रखी। वजीर मौसूफ ने फसलों में तनोवो लाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को तौसी देकर, किसान क्रेडिट कार्ड की तादाद में इजाफा करके, कुदरती ज़राअत, डिजिटल, एग्रीटेक और गज़ाइयत में इजाफे के प्रोग्रामों को फरोग देकर ज़राअत को मुस्तहकम बनाने के इकदाम का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की तरक्की को रफ्तार देने के लिए मरकजी और रियासती मिलकर काम करेगी। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: कोयले और कानों के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेंगे। कानों की वजारत ने कहा है कि ये नीलामी 9 रियासतों में वाकई 20 अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स के लिए होगी, जिनमें 13 नए निशानजद ब्लॉक्स और दूसरी मरतबा पेश किए जाने वाले 7 ब्लॉक्स शामिल हैं। ये मादनियात साफ सुथरी तवानाई, जदीद मैन्युफैक्चरिंग, खाद, दिफा और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों के लिए अहमियत के हामिल हैं। वजारत ने नीलामी के 7 मरहलों की तकमील समेत 88 अहम और स्ट्रेटेजिक मादनियाती ब्लॉक्स में से 56 की नीलामी कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। इस तरह 63% से ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है। भारत आज से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स बुजरा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस दो रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वज़रा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत, जिसका उन्वान है लचक, जिद्दत तराजी, इश्तराक और पायदारी की तामीर के लिए, के तहत यह इज्तिमा होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। इस दौरान वज़रा समाजी तहफ्फुज़ को फरोग देने, मेहनत की मंडियों को बाज़ाब्ता शक्ल देने, ख़वातीन की शमूलियत को बढ़ाने और अफरादी क़ुव्वत में उन्हें शामिल करने समेत चार तरजीही मौजूआत पर तबादला ख्याल करेंगे। मीटिंग के दौरान रोजगार वर्किंग ग्रुप के जरिए तैयार करदा ड्राफ्ट एलानियों को गौर खौस के बाद अपनाया जाएगा। इस एलामिया का मकसद ब्रिक्स ममालिक में मेहनत के बाजार की पॉलिसियों, मेहनत कशों की बहबूद, हुनरमंदी के फरोग और शमूलियत रोजगार पर तआवुन को तकवीत देना है। पवित्र शहर पुरी कल से शुरू होने वाली आलमी शोहरत याफ्ता भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज पवित्र नाबा जोबन दर्शन के बाद सालाना रथ यात्रा के लिए वसी तर इंतजामी और सिक्योरिटी इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये सालाना मुख्तसर पड़ाव देवी देवता बहन भाइयों की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक पवित्र सफर की अलामत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अजीमुशान रियासती सतह के प्रोग्राम में नौजवानों की हुनरमंदी का आलमी दिन मनाया जाएगा। इस तकरीब में वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ मुख्तलिफ इकदामात का आगाज करेंगे, जिनका मकसद रियासत में हुनरमंदी, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप को मुस्तहकम करना है। वज़ीर-आला हुनरमंदी की तरक्की से मुतालिक नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे, जहां इख्तिराई टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी पर मबनी मसनूआत और सनअती तरबियती इदारों, ITIs तरबियती इदारों और ज़ेर तरबियत अफराद के जरिए तैयार करदा प्रोजेक्ट्स का मुजाहरा किया जाएगा। हुकूमत ने 19 ज़ैली शोबों के लिए मुल्क का खिदमात की पैदावार का पहला आजमाइशी इंडेक्स ISP जारी किया है, जिसमें पहली बार ऐसा है कि बाकायदा खिदमात के शोबे में मुख्तसर मुद्दत की सरगर्मी का माहाना पैमाना फराहम किया गया है। इस पहले इंडेक्स में 2024-25 को बुनियादी साल मानते हुए अप्रैल 2026 को भी शुमार किया गया है और भारत के खिदमात के शोबे के तकरीबन 60% हिस्से को शामिल किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका ने आबनाए हुरमुस से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर लोग आबनाए हुरमुस से गुजरना चाहते हैं तो वो खुली है, अलबत्ता ये ईरान के लिए नहीं खुली है। जनाब ट्रंप ने ईरान को यह कहते हुए खबरदार किया कि अमरीका आज रात ईरान पर सख्त हमला करेगा और इन हमलों की शिद्दत हर रात के बाद बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के सभी बिजली प्लांट्स और पुलों को तबाह करता रहेगा जब तक कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार न हो जाए। जनाब ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि हर बार ईरान की तरफ से जंगबंदी का सिलसिला तोड़ा जाता है। उन्होंने ईरानी क़यादत को पैगाम दिया है कि बेहतर है कि वो

0: एक मुआहदा कर ले वरना वहां कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसी दौरान ईरान के पासदाराने इनकलाब ने बहरीन में बड़े पैमाने पर हथियारों और कलपुर्जों के जखीरे पर हमले किए हैं। पासदाराने इनकलाब ने यह दावा भी किया है कि उसने रैम पर, जहां कुवैत में अली सलीम ठिकाने पर MQ-9 ड्रोन्स तैनात थे, हमला करके बहुत से ड्रोन्स को तबाह किया है और नुकसान पहुंचाया है। भारत ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा कशीदगी और तजारती बहरी जहाजों पर हमलों के बाद वो मगरबी एशिया के हालात और वाकयात पर करीबी निगाह रखे हुए है। नई दिल्ली में नमनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी और आबनाए हुरमुस से तजारत जारी रखने की भारत की अपील को दोहराया।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आबनाए हुरमुज में दो मर्चेंट जहाजों पर हमलों और मगरबी एशिया में बहरी सलामती से मुतालिक बढ़ती तशवीश के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने तनाजे से मुतासिर खित्ते में काम करने वाले भारतीय जहाजरानों की हिफाजत के लिए जामे सी फेयर फर्स्ट पहल का आगाज किया है। वजीर मौसूफ ने भारतीय जहाजरानों की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के मुकम्मल रद्दअमल की हिदायत दी है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में आला सतही बैन वजारती जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब सोनोवाल ने हर एक बहरी जहाज की हकीकी वक्त में निगरानी करने और खित्ते में मुतासर हर भारतीय जहाजरान के लिए मखसूस लायजन अफसरान मुकर्रर करने की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत और वजारत खारजा, पेट्रोलियम और कुदरती गैस, कीमिया और खाद की वजारत, भारतीय बहरिया, जहाजरानी के डायरेक्टरेट जनरल और ईरान और ओमान में वाक़ भारतीय मिशनों के दरमियान 24 घंटे तालमेल कायम करने की भी हिदायत दी। नई दिल्ली से सकलन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: पाकिस्तान के मकबूजा जम्मू और कश्मीर इलाके में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने बावर्ती होकर अपने असातिज़ा और वालिदैन का साथ दिया। इन लोगों ने रावलकोट के ईदगाह मैदान में जमा होकर इस मकबूजा इलाके में पाकिस्तानी फौज की जालिमाना फौजी कार्रवाईयों की मजम्मत की। स्कूल जाने वाले तलबा पीर को बड़े पैमाने पर जमा हुए। ये लोग अमन की निशानी के तौर पर सफेद झंडे लहरा रहे थे और इनके हाथों में बैनर्स थे जिन पर लिखा था, बैन अलाक्वामी मीडिया हमें भी शामिल करो। ये लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। पाकिस्तान के जेर कब्जा पूरे इलाके में ये मुजाहरे खित्ते में पाकिस्तान के दीरीना कब्जे के लिए एक बराह रास्त चैलेंज बन गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौजों ने वहशियाना कार्रवाई शुरू कर दी है जिनमें दसियों शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ खित्ते में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू नाफिज है, नीज मवासलात का सिलसिला पूरी तरह मुनकता हो गया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात अमेरिका के टेक्सास के डलास स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। स्पेन की जानिब से माइकल ओयारज़बल ने 22वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद पेद्रो पोरो ने दूसरा गोल करते हुए स्पेन की जीत यकीनी बना दी। अब इतवार की रात न्यू जर्सी के मीट लाइफ स्टेडियम में फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना या इंग्लैंड से होगा। स्पेन ने 16 साल पहले अपना पहला फुटबॉल कप जीता था। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बर्मिंघम के एडबिस्टन में खेले गए 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
3: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजारत खारजा के बयान को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, हुरमुज में भारतीय शहरी की हलाकत पर भारत खफा, वजारत खारजा ने ईरानी मिशन के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन और दीगर सिफारतकारों को तलब किया, समुद्र में जहाजों की हिफाजत को यकीनी बनाने की सलाह दी। रोजनामा इनकलाब ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर शाये करते हुए सुर्खी लगाई, भारत ने सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की उम्मीदवारी पेश की, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में भारत की दावेदारी को मजबूत तरीके से पेश किया। रोजनामा प्रताप ने एक अहम

0: खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने माल बर्दारी के निजाम को बेहतर बनाने के लिए 8 नई इस्लाहात का ऐलान किया। इसी अखबार ने मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को सुर्खी बनाया है। NESAC खलाई टेक्नोलॉजी को आवाम की जिंदगी से जोड़ने का अहम जरिया बन चुका है। अखबारात की कुछ अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं। अब नए हुरमुज जंग या अमरीकी दबाव से नहीं खुलेगी, ईरान का बयान। अब नए हुरमुज से आमदोरफ्त पर कोई फीस या टोल कबूल नहीं, यूरोपीय यूनियन का बयान।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। बरतानिया, भारत बरतानिया जामे इकतसादी व तजारती माहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय बरामदात की तकरीबन 99% अशिया महसूल से आजाद रहेंगी। मरकज ने मगरबी बंगाल में देही तरक्की के लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। हुकूमत आज अहम और दिफाई नौयत की मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी के 8वें मरहले का आगाज करेगी। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में ईरानी बंदरगाहों की एक बार फिर नाकाबंदी कर दी है। फुटबॉल में स्पेन फीफा आलमी कप के फाइनल में दाखिल हो गया है। उसने फ्रांस पर 2-0 से जीत हासिल की। दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और क्रिकेट में एडबेस्टन में 3 मैचों की सीरीज के पहले ODI में भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वरगंगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अभय रुस्तम सपूरी का संतूर पर बजाया राग बसंत मुखारी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वरगंगा। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना अभय रुस्तम सपूरी का संतूर पर बजाया राग बसंत मुखारी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम साइंस मैगजीन। विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान के साथ साथ स्किल्स यानी कौशल का होना बेहद जरूरी है। आज के समय में नौकरी और करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार नई स्किल्स सीखना, स्किल डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में कौशल विश्वविद्यालयों का विचार सर्वप्रथम भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में प्रस्तावित किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व विषय पर लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता। मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय MSU सिक्किम के संस्थापक और कुलाधिपति प्रवेश दुदानी से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: प्रवेश दुदानी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिग्री और रोजगार के बीच में अंतर दिख रहा है, और जब सीखने की प्रवृत्ति में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उससे एक भय भी है कि ये शायद रोजगार को छीन लेगा या कम कर देगा भारत जैसे बहु जनसंख्या वाले देश में। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि किस तरह से स्किल्स की जरूरत है और स्किल्स यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो किस तरह का होना चाहिए?
2: मैं लास्ट 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और रोजगार अलग अलग नहीं चलना चाहिए। आज हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, लेकिन अगर डिग्री विदाउट इंडस्ट्री या डिग्री विदाउट स्किल्स अगर है तो वो आज हमारे युवाओं को एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है, ना कि उनको इम्पावर करता है। तो मुझे लगता है कि आज अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स को जोड़ते हैं तो ही वो हमारे युवाओं को एक सही रास्ता, सही दिशा दिखा सकता है कि उनका जीवन, उनका करियर किस डायरेक्शन में उनको लेके जाना है। जैसे AI की जो आपने बात करी, लास्ट 2 सालों में AI ने पूरा का पूरा जॉब का जो सिनेरियो है, मार्केट है, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। लोग ये भी बात करते हैं कि शायद जॉब्स कम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब का जो रूपरेखा है वो बदलेगा। एक का ह्यूमन टच रिक्वायर्ड होती है हर एक चीजों में, वो चीज कभी भी AI उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको पूरा खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन जो आज ऐसी चीजें जो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट कि आप लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आसपास में लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं, ऐसी क्या सिस्टम बना रहे हैं जिससे लोगों की प्रगति हो, इन चीजों को सोचना और डिजाइन करना में ज्यादा लोग अपना समय लगाएंगे, ना कि एक नॉर्मल डे टू डे बार बार रिपीट करने वाले टास्क होते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोडिंग बहुत लोग सीखते थे जिसमें काफी टाइम लगता था, इसीलिए पूरे देश में कंप्यूटर साइंस एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। लेकिन आज के दिन में जो काम कोडर्स 1 महीने में करते थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको 1 घंटे में कर दे रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे इंजीनियर्स जो कंप्यूटर साइंस को AI की नजर से सीखते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें करिकुलम आउटडेटेड हो गया है।

0: को उच्च शिक्षा से हमेशा अलग रखा गया, लेकिन नई शिक्षा नीति में इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि उसको साथ कैसे लेके चलें, एक ओवरऑल वेल राउंड डेवलपमेंट हो सके बच्चों का, और इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री को दोबारा ट्रेनिंग ना करना पड़े उनकी। आप ये भी देखें कि आज पूरे हमारे इंडिया में आज अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि जो जितने बच्चे स्कूल से निकलते हैं उसमें से कितने बच्चे उच्च शिक्षा में जा पाते हैं, उसमें से हर चार में से सिर्फ एक बच्चा ही उच्च शिक्षा में एनरोल करता है।
1: निश्चित रूप से खास करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का ये कहना है कि अनुसंधान में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और वो बीच में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के बाद वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक बात आती है, आपने IIT खड़गपुर से एक इंजीनियरिंग डिग्री ली और उसके बाद आप किस तरह से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना में और एक एकेडमिक लीडरशिप में आए, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि समावेश करके एक यूनिवर्सिटी को बनाए?
0: जी, इसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी है। मैं IIT खड़गपुर से 2008 में ग्रेजुएट हुआ, 5 साल मैंने वहाँ BTech और MTech इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया था, और मुझे अपने उस 5 सालों में सिर्फ 4 महीने के आसपास मौका मिला इंटर्नशिप करने का, जो कि कॉलेज के द्वारा दिलवाया गया था। तो उन 5 सालों में मेरी एजुकेशन ज्यादा थ्योरेटिकल थी, नॉलेज बेस्ड थी, और कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे हमेशा दिमाग में रहता था कि इस नॉलेज का मैं इंडस्ट्री के अंदर कैसे अप्लाई करूंगा ताकि वो मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं, कोई मैं उनके लिए जाते ही कोई चीज बना पाऊं। फिर निकलने के बाद जब हम लोग इंडस्ट्री में गए तो हमें हर चीज शुरुआत से सिखाई गई जो उनको जरूरत था, और जो हमने पढ़ाई पढ़ी थी वहां पर रेलेवेंस कम था क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा था वो थोड़ा पीछे चल रहा था और इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो मुझे ये समझ में आया, और आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा कि पूरे इंडिया में युवा क्या करते हैं कि क्योंकि ये डिग्री प्रधान देश, मैं इसको बोलूंगा कि भाई तब तक बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं बोलते जब तक वो डिग्री ना ले।
1: बिल्कुल,
0: और हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिग्री लें और एक सिक्योर जॉब यानी कि ऐसी नौकरी लें जो कभी उनकी सिक्योर हो जाए, सरकारी जॉब हो या कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो। लेकिन आज का युवा को ये चाहिए कि आज की पढ़ाई में जो वो समय और पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या उसको उसमें वापस मिलेगी, कितनी तेजी से वो करियर में आगे बढ़ सकते हैं, ये सवाल आज के युवा में रहते हैं। लेकिन इतने सालों में क्या हुआ, क्योंकि डिग्री भी करनी है तो बच्चे BCom BSc कॉलेजेस में जा रहे हैं और उनको प्रोफेशनल कोर्स करना है क्योंकि नौकरी चाहिए, तो आपने एक पैटर्न देखा होगा कि लोग डिग्री भी करते हैं साथ में कोई ना कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जाते हैं, यानी कि कोई अकाउंटिंग टैली सीख रहा है, कोई डिजाइनिंग सीख रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग, या तो कोई कोचिंग कर रहा है कि भाई मैं कोई एंट्रेंस टेस्ट दूं क्योंकि उसको डिग्री भी चाहिए,
1: बड़ा इंडस्ट्री है,
0: कंपटीशन की तैयारी करता है, या उसको कोई वोकेशनल यानी कि कोई ऐसा स्किल सीखता है जिससे उसकी इमीडिएट नौकरी लग सके। आज अगर कोई स्किल सीख रहा है, कोई प्रोफेशनल काम सीख रहा है, वो हमारे हायर एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। यही नई शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य है कि कैसे लोगों को एम्पावर करें एक अच्छे स्किल डेवलपमेंट से, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौशल और उसके अंदर वो कैरेक्टर और एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को कैसे जोड़ा जाए। एक स्किल यूनिवर्सिटी होने के नाते जो कि एक बहुत इंडस्ट्री फोकस्ड होती है, हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम ऐसे ही प्रोग्राम्स लाएं जिसमें हम इंडस्ट्री के स्किल सर्टिफिकेशंस को साथ में जोड़ के पढ़ा सकें। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ पे सिक्किम में एलाइड हेल्थ केयर यानी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं पूरे हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल सेगमेंट में, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं एग्जाम क्लियर कर पाते वो एलाइड हेल्थ केयर में फिजियोथेरेपिस्ट या डायलिसिस टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएशन पढ़ाई पढ़ते हैं एज अ स्किल यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरे इंडिया में बहुत जगह हो रही है, लेकिन हमारा अप्रोच ये रहा कि हम इंडिया की सबसे बड़ी जो डायलिसिस सर्विस देती है नेफ्रो प्लस, उनके साथ हम जुड़े, MOU किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे कैंपस के अंदर अपना एक डायलिसिस सेंटर खोलें जो लोकल लोगों को भी सर्विस दे और उसको हमारे बच्चे और हमारे फैकल्टी चलाएं और हमारे बच्चों को एक्सपीरियंस मिल सके कि डायलिसिस एक्चुअली एक हॉस्पिटल में या एक डायलिसिस सेंटर में कैसे होती है। तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यानी कि काम करते करते सीखना पे हमारा बहुत उद्देश्य है, और मुझे लगता है कि वो बच्चे को एक अलग कॉन्फिडेंस दिलाता है और उसको ये मोटिवेट करता है, उसको भी वो सारे चैलेंजेस सिखाता है। जैसे हमारे कोई भी स्किल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में इंडस्ट्री में जाके एम्प्लॉयर के यहाँ पर इंटर्नशिप करना, काम को सीखना इंटर्नशिप के थ्रू, अप्रेंटिसशिप के थ्रू, ऑन द जॉब लर्निंग के थ्रू, ये कंपलसरी, और 30-50% तक आपके पूरे प्रोग्राम में यानी कि 3 साल में आपको 1-1.5 साल आपको इंडस्ट्री के अंदर रहना है। और ये हमने इसका फायदा देखा, मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमारे बच्चे बहुत सारे

0: बड़े बड़े होटल्स में हमने टाई अप करके वहां पर उनको पहले साल में ही डाला कि आपने थ्योरी पढ़ी एक साल, अब आप तीसरे साल आप होटल के अंदर रह के काम करिए, वहां पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आप उससे अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं। हमारी फैकल्टी वहां जाके उनकी सुबह सुबह क्लास भी लेती है, बाकी 5-6 घंटे वो काम भी करते हैं। तो जब वो निकले तो हर होटल वाले ने ये बोला कि इन बच्चों की क्वालिटी बाकी के जो हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर से जो बच्चे आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने काम करते करते चीजों को सीखा है। और दूसरा, जब बच्चों को ग्रेजुएशन में जल्दी काम करने का एक्सपोजर दिया जाता है तो उससे वो डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उनको जो जिम्मेदारी निभानी है उसका बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस आता है, और वो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी वो अपने आप को जिम्मेदार समझेगा और आगे मेहनत करेगा कि वो आगे बढ़ सके काम में।
1: आपका मूल मंत्र क्या है लोगों को, बच्चों को शिक्षित करने का, रोजगार परक बनने का, यूनिवर्सिटी का एक या आपका अपनी तरफ से ऐसा कुछ मूल मंत्र आप लोगों को बताते हो या उस पे काम करते हो?
0: मुझे लगता है कि शिक्षा का जो स्रोत है, यानी कि यूनिवर्सिटी को पूरे इंडिया में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप चीजों को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो एज अ स्किल यूनिवर्सिटी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम करिकुलम्स को उसी हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं जैसा इंडस्ट्री को जरूरत है, और उसमें 4 चीजों पे फोकस करते हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो तकनीकी शिक्षा जो इंडस्ट्री को चाहिए उसको हम काम कराते कराते पढ़ाते हैं। दूसरा है कैरेक्टर, कि हम कैरेक्टर को कैसे डेवलप करें, उनको क्लब्स में करना, उनको एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, बाहर के जगहों पे इंडस्ट्री में इमर्जन कराना, उनको ऐसे टफ सिचुएशन में डालना, लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट में लगाना, तो इन सभी से उनका चरित्र डेवलप होता है जो कि आज बहुत ज्यादा जरूरी,
1: ताकि वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा रहे।
0: और नवाचार, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये ना सोचेंगे कि आपके आसपास की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर हर प्रोग्राम का जो बैच होता है वो एक गांव से आसपास के जुड़ा हुआ है, जहां पर उनको प्रोग्राम के तहत उस गांव में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपका वो सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, क्योंकि आज AI है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। पहले लाइब्रेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन आज पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपके फोन में है, ग्रीन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो नॉलेज को यूज करते हुए अगर आप आसपास की प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भी प्रमोट करता है, इनोवेशन सिखाता है, और रोजगार पे सारा फोकस कि भाई आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने से आप अपने काम को कैसे बेहतर कर पाएंगे रोजगार में, इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखना शिक्षा देते हुए, ये एक यूनिवर्सिटी का बहुत जरूरी फर्ज बनता है।
1: तो क्या ग्लोबल स्किल कैपिटल के रूप में भारत उभरने वाला है?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बिंदु आप लेके आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना और विजन है कि इंडिया को एक ग्लोबल स्किल्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। वो इसीलिए क्योंकि आज भारत हमारा सबसे यंग देश है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर सबसे ज्यादा युवा हैं और 30 साल से कम उम्र के करीब करीब 50% से ज्यादा लोग हमारे यंग पॉपुलेशन है। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हमारा इंटरनेशनल पाथवे का प्रोग्राम चलता है जिसमें आज जर्मनी, जापान जैसी कंट्री जहां पर लोग बूढ़े हो रहे हैं, जहां पर एवरेज एज बहुत बढ़ गया है क्योंकि वहां पर यंग लोग कम आ रहे हैं, तो पुराने लोगों को, बूढ़े लोगों को हेल्प करना, वहां पर चीजें बनाना, यानी कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, नर्स, जेरियाटिक केयर, यानी कि बूढ़े लोगों को जो सपोर्ट नर्सेज होती हैं, इन तरह के लोग कम पड़ गए हैं। तो आज भारत और जर्मनी जैसे देश का ऐसे MOUs है जहां पर यहां से लोग वहां जा रहे हैं, उसमें हमने भी अपना रोल कर रहे हैं कि हम जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग कराते हैं और उनको बाहर भेजते हैं। इसी में मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, एक बच्चा हमारा केरला से जो कि एक ऑटोमोटिव टेक्नीशियन की महीने की 20,000 रुपए की नौकरी करता था, उसको हमने साल भर में जर्मन लैंग्वेज सिखा के उसका एग्जाम पास करवा के उसको जर्मनी भेजा, मर्सिडीज बेंज में उसकी नौकरी लगी और वो 3 लाख रुपए मैंने इंडियन रूपी के हिसाब से कमा रहा है वहां पे। तो मुझे लगता है कि न कि सिर्फ उसकी जिंदगी बट उसके पूरे परिवार की और आने वाले जनरेशन, पूरी पीढ़ी का एक अप्रोच बदल जाएगा, एक रूपरेखा बदल जाएगी, जो मुझे लगता है। और इंडिया में बहुत ज्यादा इस चीज का स्कोप है कि यहाँ के युवा बाहर के देशों में जाके अच्छा काम करें, क्योंकि वहां पर हाथ से काम करने वालों की कमी होते जा रही है और हमारे यहाँ पे युवाओं की कमी नहीं है, जो पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं।
1: प्रवेश दुदानी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातों पे चर्चा की और अपने अनुभव साझा किए, खास करके जो किताबी ज्ञान से आगे एक नौकरी दिलाने वाली शिक्षा या प्राप्त करने वाली शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह की निपुणता की जरूरत है, स्किल इंडिया मिशन के तहत किस तरह से आप अपने विश्वविद्यालय में सारी चीजों का समावेश कर रहे हैं ताकि विकसित भारत के स्वप्न में

0: रोल अदा कर सकें। इसके साथ ही आपने एआई के दौर में युवाओं के लिए किस तरह की चैलेंज को स्वीकार करना और अपनी निपुणता को डेवलप करने की जरूरत है, इन सब बातों पर चर्चा की, जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय MSU सिक्किम के संस्थापक और कुलाधिपति प्रवेश दुदानी से भेंट कर रहे थे दिलीप झा। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यही सम्पन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

0: से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
0: हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए हुर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हुर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The India-UK

0: घर आंगन। नमस्कार, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ जुड़ चुके हैं आप आपके अपने घर आंगन कार्यक्रम में। आज आपके स्वागत सत्कार में हैं हम, तो स्वीकारें मनीषा
1: और रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
0: जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम को इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज 24x7 पर भी आप सुन रहे हैं। तो कार्यक्रम का आगाज और अंदाज बढ़े आगे, उससे पहले बता दें आज का प्रश्न क्या है आपके लिए। रश्मि जी बताएंगे आप?
1: आज आपको बताना है मनीषा कि कौन सा काम करते वक्त आपको सबसे ज्यादा बहाने याद आते हैं, ये बताइए जरा। भाई अक्सर हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें काम करना तो पसंद है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम नहीं पसंद होते, तो वो कौन से ऐसे काम हैं कि भाई आपको नहीं अच्छा लगता, फिर एकदम से कुछ ऐसा होता है कि उसको काम को ना करने से पहले ही हम असमर्थता जता देते हैं। तो जवाब लिख भेजिए अपना fmgoldga@gmail.com पर और मौका दीजिए दूसरों को भी मुस्कुराने का।
0: बिल्कुल, एक मीठी सी चुबन, एक ठंडी सी अगन,

0: इस खूबसूरत सी आवाज में लता मंगेशकर की रेशमा और शेरा फिल्म से सुन रहे थे आप ये गीत। और साथियों, आपको पता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले हमने कि कौन सा है हमारा आज का प्रश्न, और वो प्रश्न है कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए सबसे ज्यादा बहाने आपको याद आते हैं। और
1: जी
0: आपको बताना है fmgold@gmail.com पर, fmgoldga@gmail.com। याद रखिएगा, आपके संदेशों की प्रतीक्षा है। रश्मि जी, आप क्या कहती हैं इस बारे में?
1: जी मैं देख रही हूँ कि बड़ी मीठी मीठी वाणी में आप बोल रही हैं, तो है ना,
0: बिल्कुल
1: तो मीठा बोलना बहुत जरूरी होता है ना।
0: बिल्कुल।
1: और आजकल तो दोस्तों आषाढ़ का महीना चल रहा है, और इस मौसम में बारिश की आंख मिचौली से हम सब प्रभावित हो रहे हैं। और कहीं बारिश हो रही है तो कहीं उमस की तपिश ऐसी ही की शीतलता का एहसास करा दे हम आपको, तो कैसा रहेगा।
0: शीतलता, ये शब्द इतना शीतल है कि इससे ठंडी जुबान जुबान जो हमारी होती है उसमें अगर ये शीतलता आ जाए तो कोई भी मौसम हो, हर स्थिति में हमें उस शीतलता का एहसास मन में हमेशा होता है ना?
1: जी वो तब होता है जब आप मीठे मीठे बोल बोलते हैं,
0: हाँ
1: भाई बोलो ऐसे कि मन ना दुखे और सुनने वाला फूल सा महके, है ना मनीषा।
0: हाँ हाँ
1: और हम तो यही कहेंगे कि मीठे बोल बोलने से कोई मोल भी नहीं लगता, और इसमें जो दिल के धागे होते हैं वो खुल जाते हैं।
0: बहुत सुंदर। और मुझे एक बात याद आ रही है रश्मि जी, जो
1: जी
0: हमारे पुराने जो संत कवि होते थे उनकी बातों में एक पंक्ति होती थी जो हम सभी को याद होगी, जो हमने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी और उसको अपने जीवन में उतारी भी होगी। और वो संत कबीर दास जी की बानी है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करें आप हूं शीतल होए।
1: यानी वाणी मीठी और विनम्र हो तो सुनने वाला वशीभूत हो जाता है, और यही मिठास भी जो अगर हमारी जुबान में हो तो दूसरों के साथ साथ बोलने वालों को भी बहुत सुकून का एहसास होता है।

0: जी बहुत बढ़िया। और जो ये गीत तुमने सुनवाया ना मनीषा भाई, इसमें कहा था रात गंवाई सोए के दिन गंवाया खाए और हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदली जाए, उसमें तो कहा ही गया। तो ये तुम्हारे जो प्रश्न है उससे संबंधित था
1: बिल्कुल
0: कि भाई खाने पीने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ जिंदगी बच्ची बल्कि अच्छे कर्मों में करके जीवन को सार्थक बनाना
1: और साथ ही
0: चाहिए।
1: ये संदेश भी था कि मीठे बोल बोलने से कितने फायदे होते हैं।
0: जी
1: तो ये जो खूबसूरत सा गीत था रश्मि जी, हमने अपने दोस्तों को जो सुनाया वो अखियों के झरोखों फिल्म से था और इसे हेमलता और जसपाल ने गाया था।
0: जी
1: और अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जो आज का प्रश्न है हमारे साथियों के लिए कि भाई कौन सा काम ऐसा है जिसे करते समय आपको सबसे ज्यादा बहाने याद आते हैं। और
0: ईमेल
1: रश्मि
0: है
1: जी, हाँ हाँ
0: fmgoldga@gmail.com
1: और
0: पर,
1: रश्मि जी बहुत सारे संदेश आ चुके
0: तो पढ़
1: हैं,
0: दीजिए उन संदेशों को।
1: जिसमें पहला संदेश नवीन भाटिया जी का आया और उन्होंने कहा है कि जब उनके पेरेंट्स दूध लेने के लिए उनको बोलते हैं या फिर सब्जी लाने जाने के लिए बोलते हैं तो उन्हें उस समय बहाने याद आते हैं क्योंकि ये काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं
0: और
1: है।
0: नवीन जी सबसे पहले हमेशा संदेश करते हैं। दूसरा संदेश हमारे पास आ गया है महेश अग्रवाल बहादुरगढ़ का, और वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो काम करना अच्छा लगता है, हमेशा काम करने के बहाने ढूंढता हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहाना बनाना अच्छा नहीं लगता, और इंसान को काम करते रहना

0: दिखाइए, जो नहीं कर सकते उसे मना कर देते हैं। बहुत खूबसूरत बात
1: बहुत
0: उन्होंने कही
1: अच्छी
0: है
1: बात उन्होंने बताई।
0: जी।
1: और वैसे ही एक संदेश आया है, ये है उग्रसेन यादव जी का, और उन्होंने कहा है, मुझे बाजार से कुछ भी लाना अगर होता है तो मैं बहाने ढूंढता हूँ, क्योंकि मुझे भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: जी, और एक और संदेश हमारे पास आया है उमेश कुमार ख्याल से, कह रहे हैं कि जब घर का काम करना होता है तो ऑफिस में ऑफिस के काम का बहाना बना देता हूँ कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है। भाई ये क्या बात हुई उमेश जी, घर में भी थोड़ा मदद कर दिया कीजिए है ना। और भाई जगन कह रहे हैं कि हमें पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। भाई हम कहेंगे कि आप हमारे सवाल का जवाब तो दीजिए जनाब, हमने आपसे सवाल पूछा है कि कौन सा काम ऐसा है जिसे करते हुए आपको बहाने बनाने पड़ते हैं। fmgoalgea@gmail.com, और हम इंतजार कर रहे हैं आपके जवाबों का। मनीषा
1: बिल्कुल, अब हम रुख करते हैं अपनी अगली दिशा की ओर हमारे कार्यक्रम में, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई खास दिवस लेकर आता है। तो आज का जो खास दिन है वो है 15 जुलाई, यानी आज के दिन की ये खास बात है दोस्तों कि आज है विश्व युवा कौशल दिवस।
0: जी, काम की बात हो रही थी और तुम कौशल की बात कर रही हो।
1: युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए इस दिन को और सशक्त बनाने के लिए हम मनाते हैं। और जानते हैं आज के परिवेश में, क्योंकि हम तकनीक और डिजिटल ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, और ये मांग हमारे समय की भी है कि इसमें हम और अपने आप को मजबूत करें।
0: और मनीषा, आज का दिन याद दिलाता है हमें भारत रत्न के कामराज की, उनकी आज जयंती है। और स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने और अभावग्रस्त बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाने वाले थे श्री के कामराज। और जन नेता के रूप में हमेशा याद करते जाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही है एक और विशेष दिन, जयंती पुण्यतिथि।
1: वो है स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और संविधान सभा की सदस्या दुर्गाबाई देशमुख की जयंती,
0: जी
1: और जो कि महिला शिक्षा, सामाजिक न्याय और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत जाना जानी जाती हैं हमारे समाज में।
0: जी
1: और इतिहास की तरफ हमने रुख किया, लेकिन अब रश्मि जी रुख करते हैं आज की प्रश्नावली के बारे में, फिर से याद दिला देते हैं अपने साथियों को, और वो बहुत ही मजेदार है आज का प्रश्न, कि कौन सा ऐसा काम है जिसे करते हुए आपको सबसे ज्यादा बहाने याद आते हैं, बशर्ते आप हमारे साथ उसे साझा करें fmgoalgea@gmail.com पर।

0: जी हाँ, ये सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे प्यार किए जा फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। और रश्मि जी, हमारे पास बहुत सारे संदेश आ चुके हैं, उसमें से कुछ श्रोता साथी बहुत बेचैन हैं कि हम उनके संदेश क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं। और उसमें हमारे एक साथी हैं, वो हैं सुरेंद्र एम मित्तल जी दिल्ली से, और उन्होंने हमारा जो प्रश्न है आज का प्रश्नावली, उस पर तो कुछ कमेंट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने संदेश में एक बात कही है अपने दिल की, कि मक्कार और स्वार्थी लोगों से उन्हें इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता, बस मजबूरी होती है तो वो करते हैं।
1: जी
0: और अगला पत्र आपके पास होगा।
1: जी मैं सुदर्शन मुखी कह रहे हैं कि भाई हमें जो है काम करना पसंद है और बहाने काम करने के ढूंढने चाहिए, काम ना करने के नहीं। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। और लोग सुंदर चेहरा अक्सर भूल जाते हैं, पर सुंदर भूल
0: काम
1: जो
0: नहीं
1: बोले
0: बोलते,
1: हैं वो कभी नहीं बोलते, सुंदर जो कार्य हैं वो कभी नहीं
0: बिल्कुल।
1: बोलते। बहुत
0: कितनी
1: सुंदर
0: अच्छी
1: बात।
0: बात कही
1: जी जी
0: इन्होंने, बिल्कुल।
1: और इसके अलावा हमारे साथ गौरी शंकर जुड़ गए हैं नागलोई से, कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमसे काम करवाता है और टाइम पर पैसे नहीं देता तो उसे टालने के लिए आनाकानी करनी पड़ती है, जबकि वो समझ जाता है लेकिन कुछ आदमियों की आदत होती है तो वो मुश्किल से ही सुधरती है। बिल्कुल सही बात गौरी शंकर जी की।
0: और एक और संदेश है जिसमें इन्होंने सिर्फ अपने मन की बात लिखी हुई है। चरण दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ कई साथी हैं, जिसमें सुशील शर्मा जी उनके साथ हैं, जिनका आज जन्मदिन है जी। बहुत बधाई, हमारे रेडियो परिवार के साथ आप भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा जो आज का प्रश्न है कि कौन सा काम करते हुए आप बहाने याद करने लगते हैं, आपको बताना है fmgoldga@gmail.com पर।
1: जी और हमारे साथ कामायनी जुड़ गई हैं, वो कह रही हैं मुझे फ़ोन पर बात करना कम पसंद है, तो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ और ना करती हूँ। हालांकि ये अच्छी आदत नहीं है, बहुत लोग रूठ भी जाते हैं लेकिन बाद में मैं उन्हें मना देती हूँ। तो देखिए अभी आजकल तो फ़ोन ना करना, तो फ़ोन से थोड़ा दूर रहने की सलाह सभी लोग आप दिए देते हैं, पर हाँ एक संतुलित तरीके से फ़ोन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आजकल ज़माना है जुड़े रहने का।
0: बिल्कुल, और बातों का गीतों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं एक संदेश।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और दोस्तों, हम सभी की ना कोई आदत भी ज़रूर होती है। जैसे किसी की आदत संगीत सुनने की होती है काम करते हुए, किसी की किताबें पढ़ने की, और किसी को घूमना फिरना अच्छा लगता है। लेकिन जानते हैं, आदतें हमारी किसी भी तरह की हों बदल सकती हैं। जैसे चाय की जगह हम कभी कॉफ़ी पीने की आदत में पड़ सकते हैं, है ना। पुराना
1: जी
0: मोबाइल हो तो उसे नए में बदल सकते हैं। और कई बार लोग भी जीवन की भागदौड़ में पीछे छूट जाते हैं, यानी हमारी आदत से गायब हो जाते हैं। रश्मि जी, आपके क्या विचार हैं?
1: हम कहेंगे आदतें तो बदल सकती हैं वो ठीक है दोस्तों, लेकिन ज़रूरतों का क्या, यानी ज़रूरत, भरोसा, सहारा, वो बहुत ज़रूरी है। किसी का हमारे लिए बेहद ख़ास होना यानी आपके जीवन में आदत की तरह नहीं ज़रूरत की तरह शामिल हो, ऐसे गुण और ऐसे जो अपने अंदर इस तरह की मुकम्मल कीजिए कि भाई दूसरे का तो दिल जीतना ही है।
0: वाह, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। और पक्के रिश्ते वो होते हैं दोस्तों जो साथ रहे ना रहे पर होते सदा साथ हैं। वहाँ भावनाओं की जो डोर होती है ना, वो अदृश्य होती है, पर साथ में पक्के तरीके से बंधी होती है।
1: तो मनीषा, जब मुश्किल में कोई आपको याद करे, जब कोई आपसे कोई सलाह लेना चाहे या उसके ऊपर कोई परेशानी आए, तो उसकी जरूरत अवश्य बने। यही सबसे बड़ा फर्क है सिर्फ मौजूद रहने का या किसी की जिंदगी में मायने बनकर उसके बीच में उसकी मदद करने का।
0: बिल्कुल, तो कोशिश हो कि हम ऐसे बने जिन्हें सिर्फ याद ही ना किया जाए बल्कि जरूरत पड़ने पर सबसे पहले पुकारा जाए।

0: आजाद इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप गीत। और साथियों आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 100.1 MHz पर आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन। और घर आंगन कार्यक्रम की एक विशेषता है जो हमने शुरू की है आपके लिए प्रश्नावली के रूप में। और आज का प्रश्न है आपके लिए जिसके संदेश आपको भेजना है fmgoldga@gmail.com पर। और वो प्रश्न है कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के लिए आपको सबसे पहले बहाने याद आ जाते हैं।
1: और कुछ बहाने भी आए
0: हैं
1: और कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आई हैं। तो हमारे पास संदेश आ चुका है, संदीप अरोड़ा शास्त्री नगर से कह रहे हैं कि मैं अक्सर ऑफिस से घर पहुंचकर घर के हर काम में पूरा सहयोग देता हूं, फिर वो चाहे खाना बनाने का ही काम क्यों ना हो, बल्कि फैमिली को टाइम देने का सही समय यही है। काम भी हो जाएगा और समय भी मिल जाएगा, बीवी भी खुश और मैं भी खुश। भाई बहुत खूबसूरत ये संदेश, घर के काम में हाथ बटाना कोई बहाने ना बनाना, इससे ज्यादा कोई और क्या चाह सकता है।
0: बिल्कुल। और एक संदेश है जो बिल्कुल अलग जवाब के साथ है, वो है कृष्णा कुमार गुप्ता का, और ये महोबा उत्तर प्रदेश से हमें उत्तर भेज रहे हैं। और वो कहते हैं कि देखिए बहाना बना सकते हैं हम, लेकिन जब रेडियो का कार्यक्रम हम सुन रहे होते हैं उस दौरान हमें कोई भी बहाना याद करने की भी जरूरत नहीं होती, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सोनाली कह रही है कि मुझे बेवजह घूमना या बाहर जाना पसंद नहीं है, इसलिए जब कोई ऐसा मौका आता है तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ। इसके अलावा मुझे फोन पर ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं, तो इसी वजह से दोस्तों के बीच में कम लोकप्रिय हूँ, लेकिन कम और अच्छी बातें करके रिश्तों की गरिमा बनाए रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे और साथी हमसे जुड़ गए हैं। आप हैं भाई, वाह, बहुत दूर, जिला बीड़ अंबा जोगाई महाराष्ट्र से दीप्ति वैद्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो कह रही हैं काम तो करते रहना चाहिए, काम करते रहो तभी तो काम के रहोगे, सीधी सी बात है, फिर भी मुझे भीड़ में जाके खरीदारी करना अच्छा नहीं लगता। बात तो सही है और अच्छा संदेश। इसके अलावा शीशपल अकेला गाजियाबाद से जी कह रहे हैं कि मुझे काम करने पर विश्वास है, बहाने बनाने पर नहीं। बहुत बढ़िया भाई, हमारे श्रोता कितने समझदार है ना मनीषा, सारे कर्मठ है, कामकाजी है और बढ़ चढ़ के काम करने विश्वास रखते, तभी तो हमारा देश प्रगति के पथ पर चल सकता
0: है, आगे जा रहा है। बिल्कुल। और समय के साथ चलना, आगे बढ़ना ही तो हम सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: तो समय ना गंवाते हुए आगे चले अगली जानकारी के ऊपर।
0: बिल्कुल। बहुत सी बातों के लिए अब डिजिटली हम बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं, तो ऐसी चीजों के लिए हमें एक जानकारी आपको देना है। डिजिटल

0: प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए करियर के बारे में, क्योंकि डिजिटली आजकल हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो भारत सरकार का जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, NCS पोर्टल 2015 से वहाँ चलाया जा रहा है, जिसका
1: जी
0: फुल फॉर्म पता क्या है? नेशनल करियर सर्विस पोर्टल।
1: हम कहेंगे डिजिटल पर डिपेंडेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि इससे बहुत सहूलियत हुई है मनीषा, क्योंकि जब आप डिजिटली कनेक्टेड होते हैं तो बहुत कम समय में बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। देखिए, पूरा देश, पूरा विश्व आज
0: बिल्कुल
1: एक दूसरे से जो है ध्वनि अदृश्य तरंगों से जुड़ा हुआ है, और ऐसा ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जो तुमने बताया, इस पे नौकरी, करियर और कौशल विकास की दुनिया में जो लाखों युवाओं के लिए ये नई उम्मीद लेकर आता है NCS, और ये
0: बिल्कुल
1: नौकरी देने वाले नियोक्ताओं, नौकरी तलाशने वालों के लिए और काउंसलर और प्रशिक्षण संस्थाओं को एक सीधे मंच पर जोड़ता है। और NCS सिर्फ नौकरी ढूंढने का पोर्टल नहीं है, बल्कि ये करियर के लिए काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटर्नशिप, रोजगार मेले और साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसी जो सुविधाएं हैं वो भी देता है।
0: बिल्कुल पोर्टल में आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं दोस्तों, अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार अवसर वहां तलाश सकते हैं। वहीं नियोक्ता यानी जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो भी अपनी जरूरत के अनुसार उम्मीदवार को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि देश भर में आयोजित होने वाले जॉब फेयर और भर्ती अभियानों की जानकारी और सीधी भर्ती का मौका आपको यहाँ सीधे सीधे मिलता है। इसलिए अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो NCS पोर्टल की वेबसाइट www.ncs.gov.in पर आप विजिट भी कर सकते हैं।

0: यकीन इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रहे थे आप इस गीत को। और साथियों आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम गोल घर आंगन कार्यक्रम आपके लिए, आपका अपना कार्यक्रम। और आपका जो प्रश्न है आज का वो है कौन सा
1: और उस
0: ऐसा
1: प्रश्न के
0: काम
1: बहुत
0: है।
1: सारे जवाब आ चुके हैं। जी हाँ,
0: हाँ
1: क्या
0: हाँ
1: बहाने बनाते हैं आप। और हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश गोगिया जी। वो कह रही हैं, जब मेरी पत्नी मुझे अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाना चाहती है तो मैं बहाने बना देता हूँ। भाई वाह, मुझे लग रहा है अगर वो शो सुन रही है घर आंगन मनीषा, तो वो जरूर
0: हाँ
1: जान गई होगी कि गोगिया जी क्या करते हैं ना, बहाने बनाते हैं। और
0: हाँ
1: हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी। वो कह रहे हैं, सुबह चाय पीने के बाद जब मैं सब्जी सफाई वगैरह करता हूँ सब्जी की, तो मैं रोज जो हूँ व्यायाम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है भाई, काम भी करते हैं और व्यायाम भी करते हैं, तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छी बात है। तो जुड़े रहिए एफएम गोल्ड चैनल के साथ। और एक दो और संदेश भी हमारे पास आ गए हैं, अगर तुम कहो मनीषा तो मैं वो भी पढ़ दूं।
0: हाँ बिल्कुल।
1: हाँ, वो कह रहे हैं कि बहाने बनाने, मैं जो बहाने बनाता हूँ वो ये है, कहते हैं कि भाई कभी कहते हैं कि आज तो सोमवार है, आज काम शुरू करने का मन ही नहीं करता। और कभी कह देते हैं, मैं कह देता हूँ कि आज मेरा जो दिमाग है वो मेंटेनेंस मोड में है।
0: अरे वाह
1: तो कहते हैं इसी तरह के मैं बहाने बनाता हूँ। और आप हैं विनय मयूर विहार से। और एक और प्रश्न हमारे साथ श्रोता जुड़ी हैं सुरभि। वो कह रही हैं कि भाई मैं क्या करती हूँ कि कभी ऐसे कह देती हूँ कि पहले मैं टेबल साफ कर लूँ फिर मैं करूँगी, इस तरह के मैं बहाने
0: अच्छा
1: बना देती हूँ काम करने के, पर लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे काम करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, ये सारे मजेदार
0: ये
1: संदेश
0: बड़े
1: थे
0: ईमानदार से बहाने थे सुरभि के।
1: जी
0: और देखिए हम बहानों की बात तो करते रहेंगे लेकिन कुछ बात सावधानियों की भी कर लेते हैं,
1: जी
0: क्योंकि रश्मि जी एक जो आदत है या जरूरत है वो हमारे साथ अब हमेशा जुड़ गई है और वो है मोबाइल की आदत या मोबाइल की जरूरत।
1: जी
0: और मोबाइल का प्रयोग करते समय हमें हमेशा इस बात की जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है कि उसके डू और डोंट्स क्या हैं, यानी कि मोबाइल रखते समय, मोबाइल को चार्ज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही अगर आप करेंगे दोस्तों तो वो परेशानी का सबब बनती है या बन सकती है, इसलिए हम आपको हमेशा अपडेट रखना चाहते हैं मोबाइल चार्जिंग से जुड़ी, क्योंकि ये एक ऐसी जानकारी है 24 घंटे हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, वो चार्ज करते हैं, चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मोबाइल को याद रखिए, अपने तकिए के नीचे कभी भी रख कर चार्ज करते मत रहिएगा और उसे रात भर चार्जर में लगा कर मत छोड़िए। और इसी तरह मोबाइल की जो लिथियम आयन बैटरी है ना वो चार्जिंग के दौरान गर्मी पैदा करती है, ऐसे में फोन को अगर आप किसी भी ऐसी जगह में रखते हैं जहां हवा का आना जाना कम है तो वो जोखिम भरा हो सकता है।
1: जी और मोबाइल चार्जिंग के दौरान हमेशा ओरिजिनल या प्रामाणिक चार्जर का इस्तेमाल करें, और क्षतिग्रस्त केबल या ढीले चार्जर का उपयोग भी न करें। जब फोन असामान्य रूप से गर्म होने लगे तो चार्जिंग तुरंत बंद कर दें, और चार्जिंग के दौरान फोन में के प्रयोग से भी बचें। कई बार ऐसा होता है कि आप लगा भी देते हैं चार्जिंग में और इस्तेमाल भी करते हैं, और सबसे जरूरी जब उपयोग ना हो तो चार्जिंग स्विच भी हमेशा ऑफ करके रखें। ये सारी बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मनीषा आगे क्या कहना
0: मोबाइल
1: चाहोगे
0: को
1: आप?
0: स्मार्ट बनाने के साथ साथ रश्मि जी हमारी सुरक्षा भी जरूरी है, वही
1: जी
0: असली स्मार्टनेस है। और ध्यान रहे फोन को फुल चार्ज करें लेकिन स्वयं की सुरक्षा को कभी भी डिस्चार्ज ना होने दें।

0: और मनीषा इस बीच एक और संदेश दिग्दर्शन मेरठ कैंट से कह रहे हैं, मेरा नाम दिग्दर्शन है, यदि मुझे घर में कुछ काम बताया जाता तो समझो बस वो हो ही गया है, बहाने बनाने का कोई मतलब ही नहीं उठता, वरना घर में क्लेश हो जाता है, पत्नी चैन से बैठने नहीं देती। पर ये आपकी अच्छी आदत है, इसे बनाए रखिए, काम करते रहिए, कामकाजी बने रहिए, कर्मठ बने रहिए, तभी तो अच्छी सब जगह अच्छाई फैलेगी। और भाई काम करना बहुत जरूरी है ना।
1: हाँ, और जमाने को दिखाना है इस फिल्म से। आप इस अंतिम गीत को सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम में आशा रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में। इसी के साथ हम इस गीत के साथ आपको यहीं छोड़ रहे हैं और जाने की अनुमति लेते हैं आपसे मनीषा और
0: रश्मि।
1: हमें दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा।

0: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि ये निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये समझौते एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: This agreement would open up new opportunities.
2: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम।
0: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force from today. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the agreement will benefit women, farmers, youth, MSMEs, innovators, professionals and fisherfolk, creating various opportunities. In an article in an English daily, Mr. Goyal said that this ambitious agreement will empower every section of society, reflecting the capabilities and aspirations of the people of India. Mr. Goyal said that it will not only benefit just Indian exporters, but also white-collar service sector professionals across skill sets. He noted that

ये आकाश में दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और अब वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सबका। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में कुछ फिल्में ऐसी बनी जो सिर्फ मनोरंजन नहीं कराती बल्कि अपने दौर की भावनाओं और समाज की सच्चाइयों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पर्दे पे उतारती थी। आज हम बात करेंगे

1960 में रिलीज हुई ऐसी ही एक यादगार फिल्म छलिया की, एक ऐसी फिल्म जिसमें प्यार है, बिछड़न है, उम्मीद है और विभाजन के बाद टूटे बिखरे रिश्तों का दर्द भी। इस फिल्म ने अपनी संगीत, अभिनय और संवेदनशील कहानी के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। लेकिन किसी भी फिल्म की सफलता के पीछे सिर्फ कलाकारों का ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे काम करने वाले कई हुनरमंद लोगों का भी बड़ा योगदान होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस फिल्म के निर्माण से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें।

श्रोताओं, इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई, जो अपनी मसाला और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते थे, उन्हें छलिया से ही अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की थी। महज 23-24 साल की उम्र में उन्होंने इस भारी भरकम स्टार कास्ट वाली फिल्म को डायरेक्ट किया था, जो उनके भाई सुभाष देसाई द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। मनमोहन देसाई बॉलीवुड में बिछड़े हुए परिवार या भाइयों के मिलने, लॉस्ट एंड फाउंड वाले फार्मूले के बेताज बादशाह माने जाते हैं। इस फार्मूले की शुरुआत छलिया फिल्म से ही हुई थी, जहां पार्टीशन के दौरान एक परिवार बिखर जाता है और बाद में मिलता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि छलिया की कहानी प्रसिद्ध रूसी लेखक फ्योदोर की 1848 की शॉर्ट स्टोरी व्हाइट नाइट से प्रेरित थी। लेखक इंद्रराज आनंद ने इस रशियन क्लासिक को 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्दनाक बैकड्रॉप में बेहद खूबसूरती से ढाला। इस कहानी के बाद संजय लीला भंसाली ने भी फिल्म सांवरिया भी इसी कहानी के बेस्ड पे बनाई थी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

जी हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है छलिया, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब जिक्र करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने छलिया को यादगार बना दिया। मुख्य कलाकारों की बात करें तो राज कपूर और नूतन हमेशा से ही मेकर्स की पहली पसंद थे। इससे अनाड़ी की भारी सफलता को देखते हुए प्रोड्यूसर सुभाष घई और डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने छलिया में भी इसी जोड़ी को रिपीट किया। छलिया में राज कपूर साहब का लुक और उनका अंदाज काफ़ी हद तक चार्ली चैपलिन के मशहूर ट्रैम्प किरदार की याद दिलाता है। ढीले ढाले कपड़े, मासूमियत भरी मुस्कान और नेक दिल व्यक्तित्व ने इस किरदार को राज कपूर के यादगार किरदारों में शामिल कर दिया। वहीं नूतन अपने स्वाभाविक अभिनय और गहरी भाव भंगिमाओं के लिए जानी जाती थी। छलिया में उनका अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना जाता है, और ये जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर दोबारा से सुपरहिट भी साबित हुई। फिल्म में अब्दुल रहमान का जो बेहद महत्वपूर्ण और दमदार किरदार प्राण साहब ने निभाया था, उसके लिए पहली पसंद मशहूर अभिनेता राज कपूर थे। शुरुआत में राज कपूर को ही इस रोल के लिए साइन किया जा रहा था, लेकिन डेट्स की वजह से बात नहीं बन पाई। इसके बाद ये रोल प्राण को मिला। ये बदलाव फिल्म के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि प्राण साहब ने इस पठान के किरदार को इतनी शिद्दत और भावुकता से निभाया कि ये उनके करियर की सबसे यादगार और पॉजिटिव किरदारों में से एक बन गया। इसके अलावा रहमान और शोभना समर्थ ने भी अपनी भूमिकाओं को भी पूरी गंभीरता और प्रभाव के साथ निभाया, जिससे फिल्म की कहानी और अधिक मजबूत बन गई। और अब वक्त है फिल्म के एक और खूबसूरत नगमे का।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और फिल्म का नाम है छलिया। दोस्तों, छलिया फिल्म अगर आपने देखी होगी तो देखते समय अगर आप ज़रा गौर करेंगे तो एक मज़ेदार बात नज़र आएगी। फिल्म के कुछ दृश्यों में जब राज कपूर साहब सड़क पर चलते दिखाई देते हैं तो पीछे दीवारों पर उनकी ही पुरानी फिल्मों के पोस्टर भी दिखाई देते हैं, यानी पर्दे पर राज कपूर भी हैं और बैकग्राउंड में भी उनकी फिल्म की झलक भी है। आज की भाषा में इसे एक दिलचस्प मेटा रेफरेंस कहा जा सकता है, जो दर्शकों के लिए एक छोटा सरप्राइज था। कहा जाता है कि डम डम डिगा डिगा इस आइकॉनिक गाने की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने खुद अपने किरदार के नटखट मिजाज को बेहतर दिखाने के लिए कोरियोग्राफी में कुछ खास बदलाव करवाई थी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक छोटा सा संदेश।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है छलिया, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं फिल्म की कहानी की ओर। फिल्म की कहानी है विभाजन के दर्द और रिश्तों की कसौटी को बेहद भावुक अंदाज में सामने लाती है। कहानी की नायिका है शांति, जिसका विवाह केवल से होता है, लेकिन देश के विभाजन के दौरान हालात ऐसे बनते हैं कि शांति अपने परिवार से बिछड़ जाती है और पाकिस्तान में ही छूट जाती है। परिस्थितियों के कारण उसे अब्दुल रहमान नाम के एक व्यक्ति के घर में रहना पड़ता है। करीब 5 साल बाद शांति अपने बेटे के साथ भारत लौटती है। उसका पति केवल उसे स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन समाज की शंकाएं और लोगों के सवाल उनके सामने एक नई मुश्किलें खड़ा कर देती हैं। यहाँ तक कि परिवार के लोग भी उसे अपनाने में हिचकिचाते हैं। ऐसे कठिन समय में उसकी जिंदगी में आता है छलिया, जिसका किरदार राज कपूर साहब ने निभाया है। ए बेफ

एक बेफिक्र लेकिन नेक दिल इंसान जो शांति का सहारा बनता है। धीरे धीरे कहानी रिश्तों, विश्वास, गलतफहमियों और भावनात्मक संघर्षों के कई मोड़ों से गुजरती है। आखिरकार उनके उतार चढ़ाव के बाद अनेक उतार चढ़ाव के बाद सच सामने आता है, गलतफहमियां दूर होती हैं और बिछड़े हुए रिश्तों को फिर से जुड़ने का मौका मिलता है। छलिया की सबसे बड़ी खूबी यह है, ये दर्शाती है कि इंसानियत, विश्वास और प्रेम किसी भी पूर्व आग्रह से बड़े होते हैं। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी।

0: और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है छलिया। और श्रोताओं, फिल्म का जो आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके मेल भी मेरे पास आ चुके हैं, तो मैं आपके मेल अब पढ़ लेती हूँ। ये मेल आया है नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल देवगन, सावित्री बाई का पलियारी, छत्तीसगढ़ से। और आगे बढ़ते हैं, ये मेल आया है दादा बाबू रोड झारखंड से, मोहम्मद यासीन, साइमा, हसन बाबू, मिर्फा और बेबी चाहत का। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से मेल कर रहे हैं, साथ में हैं शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्णजीत सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुन्नूर, गुरलाल और अविराज सिंह जी हैं। नीतेश कुमार देवगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम और कृष्णा देवगन हैं छत्तीसगढ़ से। और ये हैं सुनील पाठक जी, जो एक ही फिल्म से कार्यक्रम के लिए मेल किया है उन्होंने। अनारकली बाज़ार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक और गव्या मल्होत्रा जी। ग्राम पंचायत जाफराबाद से है सुधाकर, प्रशांत, संचित, परमेश, प्रणाली, सानवी और कल्पना। वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला, ये लिखते हैं आज की फिल्म सुभाष देसाई की छलिया, राजकुमार कपूर, प्राण नूतन की भूमिका वाली फिल्म, कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजी लाजवाब फिल्म पेश हो रही है, बेहद लाजवाब पेशकश, धन्यवाद आपका जो आप आकाशवाणी दिल्ली इंद्रप्रस्थ चैनल से जुड़े हुए हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। और आगे बढ़ते हैं, और ये मेल आया है हमारे पास छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसफाक, खतीजा, मोहम्मद असफाक, आफरीन, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर और इनके परिवार के सभी सदस्य का। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी, दीपा रिमझिम गुप्ता जी का है मेल। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु हैं हमारे साथ जुड़े हुए। मेरठ कैन से दिग्दर्शन और कविता गौड़। और ये है नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु जी और संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत, कमल, पिंगावाला चौक जालंधर से हैं। और ये है सती सनेजा, बिमला अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजीत भावसागर लिखते हैं दहेज और रूढ़िवादी सोच पर ये फिल्म, बिल्कुल सही बात, ये इस फिल्म में बहुत सारी समाज की विभाजन के दौरान जो परिस्थितियां थी उसको उजागर किया गया है। तो चलिए कार्यक्रम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं फिल्म के आखिरी पड़ाव पे। दोस्तों, अगर छलिया आज भी याद की जाती है तो उसके संगीत का योगदान बहुत बड़ा है। फिल्म के संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और गीत लिखे थे मशहूर शायर कमर जलालाबादी ने। गायकी की बात करें तो फिल्म के गीतों को अपनी आवाज़ दी थी मुकेश, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी। 1960 में रिलीज़ हुई छलिया को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और ये उस साल की सफल फिल्मों में गिनी गई। राज कपूर और नूतन के अभिनय की विशेष रूप से दर्शकों ने पसंद किया उनको, और दोनों को 1961 के फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की श्रेणी में नामांकन भी मिला। छलिया की एक और खास बात ये थी कि अपने दौर की ये उन गिनी चुनी फिल्मों में शामिल थी जिसमें विभाजन के दौरान बिछड़ गई महिलाओं के दर्द और समाज द्वारा उन्हें स्वीकार न किए जाने जैसे संवेदनशील मुद्दों को बड़े पर्दे पर सामने रखा। यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ अपने गीत संगीत के लिए नहीं बल्कि अपने सामाजिक

श्रोताओं, उम्मीद है फिल्म से जुड़ी ये बातें आपको पसंद आई होंगी। फिल्म मुलाकात होगी दिन के 3 बजे मैटिनी मेलोडीज प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनिएगा समाचार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इख्तिसादी तिजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और ये भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। आज ओडिशा के लिए मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि जामे इख्तिसादी और तिजारती समझौता CETA और सोशल सिक्योरिटी से मुताल्लिक समझौता जो आज से

0: हुआ है, भारत और बरतानिया के दरमियान साझेदारी में एक अहम पेशरफ्त है। जनाब मोदी ने ये बात कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल की एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए कही। वजीर आजम ने मजीद कहा कि सीईटीए से भारत के किसानों, कारोबारियों और एमएसएमईज को काफी फायदा पहुंचेगा, साथ ही कई फाल शोबों को बरतानिया की मार्केट में ज्यादा रसाई हासिल होगी। वजीर आजम ने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी, पेशा वाराना खिदमात और जिद्दत तराजी में इश्तराक को वसत हासिल होगा और हुनर याफ्ता भारतीय अफराद की ज्यादा आमद रफ्त में मदद मिलेगी। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि भारत और बरतानिया मुश्तरक खुशहाली के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहेंगे। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी और तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान ये समझौता नाफिज होने की खुशी में तजारत और सनत की वजारत मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है, जिसके दायरे में सभी रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके आएंगे। गैर मुल्की तजारत से मुतालिक डायरेक्टरेट जनरल हीरे जवाहरात की बरामद को फरोग देने से मुतालिक काउंसिल और कस्टम अथॉरिटी और दूसरे मुतालिका इदारों के इश्तराक से आज तीसरे पहर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर एक प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है, जहां से बरतानिया के लिए बरामदी सामान की खेप भेजी जाएगी। इस सिलसिले में तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अंग्रेजी के एक रोजनामा में एक मजमून भी लिखा है। उन्होंने इस मजमून में लिखा है कि ये जामे इकतसादी और तजारती समझौता कारोबार के लिए मुनफरिद मौके फराहम करेगा और साल 2047 तक विकसित भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नस्बुल ऐन को पूरा करने की रफ्तार तेज करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समझौते से मुआशरे के हर तबके को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा और भारत के अवाम की उमंगें और ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। सनती इदारों ने भारत बरतानिया आज़ाद तजारती मुआहिदे को भारत के आज़ाद तजारत से मुतालिक सफर में एक तारीखी संगे मील करार दिया है। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल अनंत स्वरूप ने कहा कि मजकूरा मुआहिदा आलमी वैल्यू चेन्स में भारत की शराकत दारी और इख्तरा पर मबनी तरक्की को फरोग देने में कामयाब और मुआविन साबित होगा। जनाब स्वरूप ने भारत बरतानिया जामे इकतसादी और तजारती मुआहिदे के नफाज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। एसोचेम के सदर निर्मल कुमार मिंदा ने कहा कि मजकूरा मुआहिदे के जरिए दुनिया की दो सबसे कदीम जमहूरियतें साथ आई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मरकजी सरकार एक नई तवानाई और जोशो खरोश के साथ योग और आयुर्वेद को आलमी मंजरनामे पर लाई है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में 2026 के सोश्रुतम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि आयुर्वेद की कदीम जर्राही को साइंसी मेयारात पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि और ज्यादा भलाई, नीज बेहतरी के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीके अपनाने की जरूरत है।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष मंत्रालय WHO के माध्यम से उनके साथ मिलकर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन और आधुनिक विज्ञान की अनुसंधान तकनीकों का सम्यक उपयोग करने से इस प्राणी की व्यापक वैश्विक स्वीकृति को बल मिलेगा।
0: सदर जमहूरिया ने कहा कि आयुष की वजारत आलमी सेहत तंजीम के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि आयुर्वेद के तरीक़ाए इलाज को आलमी मेयार का बनाने के काम को मुस्तहकम किया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। पंजाब के जालंधर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई के दौरे के सिलसिले में तैयारियां जारी हैं। इस दौरे के दौरान जालंधर कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुल्क भर में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत बेहतर बनाए गए दीगर 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया जाएगा। वजीर आजम संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। ये नई रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से जोड़ेगी। ब्रिक्स मुल्कों के मेहनत और रोजगार के वजीरों की 12वीं मीटिंग 2026 की भारत की सदारत के तहत हैदराबाद में शुरू हो गई है। वजीर मुमलिकत मोहतरमा शोभा के साथ मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया की जेर सदारत आला सतह की मीटिंग में सोशल सिक्योरिटी को फरोग देने, काम करने वाली खवातीन की शराकत दारी में इजाफा करने, आलमी हुनरमंदी को बरूए कार लाने और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बेहतर इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। लोकसभा

0: आगे स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कानून साजों को बामानी बहस व मुबाहिसे और तामीरी तबादला ख्याल के लिए इज्जत मिलती है, न कि ऐवान में रखना अंदाजी के लिए। विधायी गौरव यात्रा के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि राजस्थान की जमहूरी मुजाकरात और तौर तरीकों की एक शानदार रिवायत है। इस यात्रा का एहतमाम राजस्थान कानून साज असेंबली के 75वें साल के मौके पर अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर किया गया है। असेंबली को जमहूरियत का एक स्कूल करार देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमतों को अवामी नुमाइंदों की नुकताचीनियों को तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। अच्छे कामकाज की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शफाफियत और जवाबदेही वक्त का तकाजा है।
1: लोकतंत्र के अंदर विधायी संस्थाएं जहां से आप बेहतर शासन चला सकते हो, मेरा मानना है कि समय परिवर्तनशील है और समय परिवर्तनशील के समय अभी एक उत्तरदायी जवाबदेही शासन भी होना चाहिए, उत्तरदायी जवाबदेह जनपति भी होना चाहिए। समय के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जनता उत्तरदायी प्रतिनिधि मानता है, पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए, वही जनपति सफल होगा और वही शासन सफल होगा।
0: भारत ने खबरदार किया है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात न होने और आलमी तनाज़ेआत पर मुअस्सर तौर पर तवज्जो न देने के नतीजे में इस आलमी इदारे से अवाम का एतमाद उठ रहा है। ये बात अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने मुस्तकबिल के लिए कसीर पहलू वाली हिकमत अमली के मौजू पर वजीरों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि सलामती काउंसिल मौजूदा तनाज़ात में बामानी तरीके पर मुदाखलत करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से बैनुल अक्वामी अमन और सलामती बरकरार रखने की उसकी अहलियत के बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने आज ओडिशा में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। शिमाल मशरकी भारत के बाज़ हिस्सों बिहार, मगरबी बंगाल और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश होने का अंदाजा लगाया गया है। फीफा आलमी फुटबॉल कप 2026 में स्पेन फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी तजारती समझौता आज से लागू हो गया है। वजीर आजम ने कहा है कि इस समझौते से भारत के सनतकारों, छोटे, बहुत छोटे और मुतवस्सित दर्जे के सनती इदारों और किसानों में एक नया जोश पैदा होगा। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि खुर्दनी तेल, सब्जियां और डेयरी जैसी अहम मसनूआत इस समझौते के तहत पूरी तरह महफूज हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने और ज्यादा भलाई के लिए आयुर्वेद में जदीद तौर तरीकों की अहमियत पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है और ये भी कहा है कि कोई कदम न उठाने की वजह से इस इदारे पर से अवाम का भरोसा खत्म हो रहा है। और आलमी फीफा फुटबॉल कप के मुकाबले में आज रात अटलांटा स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction is eroding global public confidence. Red alert for heavy rain in Odisha today. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina to take on England in the second semi-final at Atlanta Stadium tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, and the Agreement on Social Security, which came into force today, is a significant moment in the partnership of India and United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The Prime Minister added, the CETA will give a fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs, along with several vibrant sectors, gaining stronger access to the UK market. The Prime Minister noted that it will also deepen cooperation in technology, professional services and innovation, while supporting greater mobility for skilled Indian talent. On the agreement on social security or the double contribution convention coming into effect today, the Prime Minister said it will provide invaluable support to Indian professionals working temporarily in the UK and strengthen the competitiveness of Indian enterprises. The Double Contribution Convention will reinforce the mobility and competitiveness of the Indian professionals in the United Kingdom. Mr. Modi noted that this moment reflects the trust between India-UK democracies and their resolve to build a forward-looking partnership driven by trade, technology, investment and innovation. The Prime Minister highlighted that India and the UK will continue working together for shared prosperity. Our correspondent tells us more on the agreement which grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market.
3: The agreement between India and UK marks a new phase in the country's economic diplomacy. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exports in the UK market, generate new opportunities for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. The agreement will create rural employment opportunities across farmers, producer organizations, food processing units and logistics. The agreement on social security relating to social security contribution also came into force along with CETA. It exempts Indian workers and employers from making dual social security contributions in the United Kingdom during temporary assignments. The period of exemption has been increased from 3 years to 5 years. With Dipendra Kumar, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
2: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the Comprehensive Economic and Trade Agreement is opening new avenues for trade, investment and innovation. In an article in an English daily, Mr. Goyal said the agreement will create unique opportunities for the businesses while further accelerating Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat 2047. He noted that this ambitious agreement will empower every section of society, reflecting the capabilities and aspirations of the people of India. Further, he highlighted that it will not only benefit just Indian exporters, but also the white-collar service sector professionals across skill sets. Mr. Goyal expressed optimism that more than 75,000 Indian professionals and over 900 companies are expected to be benefited from it. He also assured that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils and others by replacing them in the sensitive list, and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. Defence Minister Rajnath Singh has said the India-UK trade agreement marks a significant step in strengthening India's economic growth and global partnerships. Consumer Affairs Minister Prahlad Joshi has said the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, is a landmark step that strengthens the country's economic interests, safeguarding the farmers and agricultural sector. Industry bodies have described the India-UK Free Trade Agreement as a historic milestone in India's free trade agreement journey. Secretary General of FICCI, Anand Swarup, has said the agreement will go a long way in enhancing India's participation in global value chains and encouraging innovation-led growth. Mr. Swarup congratulated Prime Minister Narendra Modi on the operationalization of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. He said it will also help enhance the competitiveness of Indian industry.
4: This agreement would open up new opportunities for the Indian industry in both goods and services. The cooperation in innovation, technology, and talent mobility will enhance Indian industry's competitiveness. The agreement is a major landmark in India's FTA journey and will go a long way in promoting India's participation in global value chains and encouraging innovation-led growth in both the countries, India and

0: In Pakistan, occupied Jammu and Kashmir, or POJK, entered the 36th consecutive day today, with thousands gathering in Rawalkot amid growing unrest. Addressing the rally, Joint Awami Action Committee leader Sardar Aman Khan accused Pakistan of forcibly occupying the region. He said POJK is an occupied territory and not a disputed territory. He vowed that the movement would continue until victory, even if protesters had to sacrifice their lives. The rally witnessed strong anti-Pakistan slogans, with demonstrators pledging to continue their agitation. Meanwhile, the United Kashmir People's National Party strongly condemned the reported killing of six civilians by Pakistani security forces during clashes in Rawalkot. The India Meteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeast India, Bihar, West Bengal and Uttarakhand till tomorrow. Furthermore, heatwave conditions are expected over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. According to the Met Department, hot and humid weather conditions are expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rayalaseema and Uttar Pradesh till tomorrow. In Bihar, due to heavy rainfall in Nepal's catchment area, the water levels of the Gandak, Bagmati, Kamla Balan and Kosi rivers in Bihar have been rising continuously. In Gopalganj, the Gandak River has crossed the danger mark by 2 centimeters. More from our correspondent.
1: As the water level of the Gandak River continues to rise, 1,83,400 cubic water had been discharged from the Valmiki Nagar Gandak barrage in West Champaran district by 12 noon today. By 11 p.m. last night, the discharge had reached 2,21,000 cubic. In view of the rising river level, the Water Resources Department has issued an alert. It has also cancelled the leave of all engineers until further orders. The district administration had advised people living in nearby areas to remain vigilant and move to safer locations if necessary. Meanwhile, in Shivhar, the rising water level of the Bagmati River has led to riverbank erosion. At several places, water has begun spreading inside both embankments of the river. Savita Parikh, Akashvani News, Patna.
0: And in sports, in FIFA Cup football, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final tonight at Atalanta Stadium in US. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Last night, Spain stormed into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash in Texas last night. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction in eroding global public confidence, and red alert for heavy rain in Odisha today. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन। समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान। आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
3: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रुपए से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
4: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में

0: महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
1: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: भारत ने आग्रह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: सिक्योरिटी काउंसिल हैज बीन इनएफेक्टिव।
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमरीका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। होर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता।
4: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता।
5: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 1,83,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर

0: बिहार में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबूधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को ये भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर्स अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओ, इस कलाकार में मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा। सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारे जो आज की कलाकार हैं वो हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज पार्श्व गायिका और अभिनेत्री थी, जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपने अभिनय और सुरीली आवाज से अपनी पहचान बनाई। वे एक मशहूर शास्त्रीय गायक घराने से ताल्लुक रखती थी और जतिन ललित की बहन थी। जी हाँ, इतना ही काफी है और अब तो आप पहचान गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुलक्षणा पंडित की। तो आइए आज हम करेंगे इनके बारे में ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले सुनते हैं उनकी आवाज में ये खूबसूरत।

श्रोताओं, अगर हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो सुलक्षणा का जन्म छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। उनके पिता पंडित प्रताप नारायण पंडित एक कुशल शास्त्रीय गायक थे और दिग्गज पंडित जसराज उनके चाचा थे। संगीत उन्हें विरासत में मिला था। उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया। पार्श्व गायिका के रूप में उनका करियर 1965 में आई फिल्म तकदीर से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर के साथ युगल गीत गाया। उन्होंने हिंदी, बंगाली और मराठी जैसी कई भाषाओं में गाने भी गाए। और अगर उनके अपने करियर की बात की तो उलझन से बतौर अभिनेत्री के

रूप में उन्होंने कदम रखा। इसके बाद उन्होंने हेरा फेरी, अपनापन, संकोच और थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्में 25 फिल्मों में काम किया। फिल्म संकल्प के गीत तू सागर है के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार भी मिला।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओ, हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारी कलाकार हैं वो एक बेहतरीन पार्श्व गायिका सुलक्षणा पंडित है। इस कार्यक्रम में मैं दीक्षा आपके साथ बनी हुई हूँ। श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, और जैसा कि हमने बताया कि इनका जो बैकग्राउंड था वो पूरा ही गायक के बैकग्राउंड का था। अगर हम उनका जो संबंध था हरियाणा राज्य के हिसार जिले के पिली मंडोरी गांव से था। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और दिग्गज पंडित जसराज उनके मामा थे। राजगढ़ के पूर्व सांसद और जनसंघ नेता वसंत कुमार पंडित भी उनके मामा थे, और जैसा कि हमने बताया कि जतिन ललित उनके भाई थे, लेकिन उनके जो तीसरे भाई यानी जो सबसे बड़े भाई मंदिर वो भी एक बेहतरीन गायक थे। पहले जतिन ललित से पहले उनका उन्हीं के साथ बहुत ही अच्छा गाना रिकॉर्ड करते थे, और साथ ही उनकी तीन बहनें भी थी, माया एंडरसन, संध्या सिंह और विजयता पंडित थी। उनके पिता वो भी एक शास्त्रीय गायक थे। पंडित के भतीजे यश पंडित भारतीय टेलीविजन अभिनेता है। उनकी भतीजियां श्रद्धा पंडित और श्वेता पंडित पार्श्व गायिका हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध गायिका उनकी चचेरी बहन है जो है हेमलता जी।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं और जो हमारे पास पहला संदेश आया वो आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह का, और इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। अगला संदेश है नितेश देवगन जी का और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूरा राम देवांगन और कृष्णा देवांगन, जो कि हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। यासिन अनजान जी हमें लिखकर भेज रहे हैं और उनके साथ हैं साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रानाज, बेबी चाहत, अगला जो कि हमें लिखकर भेज रहे हैं झारखंड से। अगला जो संदेश है वो है अमर रमेश कुमार का और उन्होंने लिखा है कि उन्हें सारे गीत बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो संदेश है वो है सोमदत्त का, जिला पटियाला पंजाब से, और इनके साथ है कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु। अगला संदेश है मसरूर हसन जी का और सहारनपुर से, और इनके साथ है सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। अगला जो संदेश है गुरमीत सिंह का है

साउथ एक्सटेंशन से वो हमें लिख कर भेजा है, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल। धर्मेंद्र चीपा जी हमें लिख कर भेज रहे हैं, उन्होंने लिखा है मशहूर अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं, रोचक किस्से सुनवा रहे हैं और साथ साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं, हमको बेहतरीन जानकारी मिल रही है, ये जानकारी हमारे ज्ञान में इजाफा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ है कपिल छिपा और पूजा परिहार। अगला जो संदेश है वो दिग्दर्शन गौर जी का है मेरठ कैंट से, और इनके साथ है कविता गौर, अनिल मोहन जी हमें लिख कर भेजे, इनके साथ है उषा मोहन, पिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। प्रकाश वर्मा हमें लिख कर भेजे, इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से। तुलसी मस्कीन लिखकर हमें भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशूर। और जो अगला संदेश है वो है फारूक अली खान का, और इनके साथ है फारिया, ताहिरा और फरहीन, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं यूपी से। अगला जो संदेश है वो आर कुमार का है, इनके साथ है मिंटू पिंकी आती अरोड़ा, जो कि हमें लिखकर भेज रहे हैं पंजाब से। इशक मोहम्मद जी का संदेश है, अगला संदेश है फागू राम यादव का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं संबलपुर कांकेर से, और इनके साथ है ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, स्वर्ण सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं लोगर ठाकुरवाला से। अगला जो संदेश है वो है सुदर्शन मुखी का, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और अगला संदेश है संदीप मकर जी का, और इनके साथ है ज्योति मकर, मन्नत, भरत, कमल सहानी, पिंगा वाला चौक से, अजीत भास्कर, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं वीर मगान गुजरात से। अमीना तखन जी हमें भेज रहे हैं गांव घिटरोनी नई दिल्ली, साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम और इनके अन्य साथी। साथ ही अगला संदेश है संजय ढींगिया के, जो बागपत उत्तर प्रदेश से हमें लिखकर भेजने के साथ हैं नमन और अपार ढींगिया।

आज के इस कार्यक्रम में सुलक्षणा पंडित जी के बारे में अगर उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि अभिनेता संजीव कुमार ने उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। काम मिलना बंद हो जाने के बाद उनका समय कठिन हो गया और उनकी बहन विजेता पंडित और बहनोई संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने उनके लिए भक्ति एल्बम बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनकी आदेश जी का निधन हो गया था। साथ ही अगर हम बात करें विजेता पंडित जी की, तो बहुत कम काम मिलने की वजह से और साथ ही उनकी शारीरिक क्षमता जो थी वो काफ़ी प्रभावित हुई और प्रभावित होने से उन्होंने बहुत ही कम काम किया। उन्होंने जुलाई 2017 में आज ही विजय अकेला को एक लंबा वीडियो साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने अपने अभिनय और गायन करियर के बारे में बात की थी। श्रोता, वो दिन था 6 नवंबर 2025 को जब हम सभी ने विजेता पंडित जी को खो दिया। हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी आवाज़ को हम आज भी याद करते हैं उनके इन बेहतरीन गीतों से। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक लिए मुझे यानी दीक्षा को दीजिए विदा।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। दिन के 3 बज रहे हैं और ये वक्त है मैटनी मेलोडीज कार्यक्रम का, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे मौसम की। मौसम कभी भी अचानक नहीं बदलता, पहले हवा का मिजाज बदलता है, फिर आसमान का रंग, और धीरे धीरे पूरा माहौल। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी में कुछ बदलाव आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती है। हिंदी फिल्मों के गीतों ने मौसम की इन छोटी छोटी आहटों को बड़ी ही खूबसूरती से महसूस किया है। तो चलिए सुनते हैं उसी पे एक संगीत।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म मॉडर्न गर्ल फिल्म से, और इस गीत को गाया था सुमन कल्याणपुर और मुकेश ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बचपन की। एक खूबसूरत बात ये होती थी कि हर मौसम का अपना अलग इंतज़ार होता था। गर्मियों का मतलब छुट्टियाँ, बरसात का मतलब खुला आसमान और भीगने की जिद, और सर्दियों का मतलब धूप में बैठकर लंबी बातें। शायद तभी तो बड़े होने के बाद भी जब कोई मौसम आता है तो उसके साथ बचपन की कोई ना कोई याद चुपके से लौट आती है। तो चलिए चलते हैं उसी याद की तरफ।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, बात करते हैं सफ़र की और मौसम की। हर सफ़र का अपना एक मौसम होता है। कुछ यादें ठंडी हवाओं के साथ याद आती हैं, कुछ बारिश की फुहारों के साथ और कुछ सुनहरी धूप के साथ। शायद यही वजह है कि जब भी हम किसी पुराने सफ़र को याद करते हैं तो उसके साथ साथ उस दिन का मौसम भी याद आ जाता है। हिंदी फिल्मों में भी कई खूबसूरत गीतों ने सफ़र और मौसम के इस रिश्ते को बड़े ही सलीके से सुरों में पिरोया है। तो चलिए चलते हैं उसी सुहाने सफ़र पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी।

जी हाँ श्रोताओं, ये मौसम का हाल है। तो श्रोताओं, आप भी हमें मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके दिल के मौसम का क्या हाल है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मौसम की। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे शब्दों में नहीं कही जाती, कभी एक मुस्कान उन्हें बयां कर देती है, कभी एक नज़र और कभी मौसम। हिंदी फिल्मों में अक्सर देखा गया है कि जब दिल की बात कहनी मुश्किल हो तो मौसम मदद के लिए आ जाता है। कहीं फूलों से भरी बहार इजहार का जरिया बनती है, तो कहीं ठंडी हवाएं किसी नए रिश्ते की दस्तक सुनाती है। शायद इसी वजह से प्रेम और मौसम का साथ फिल्मी गीतों में इतना खूबसूरत लगता है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही मधुर गीत।

हमारे कुछ प्यारे श्रोताओं के मेल हमारे पास आ गए हैं, हम उसे पढ़ लेते हैं। ये हैं, लिखते हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसागर। मैटिनी मेलोडीज़ में मधुमती ओपरा हाउस से गीत सुने, लाजवाब सॉन्ग, गोल्डन एरा के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं। सभी फिल्म देखी है, देखो मौसम क्या बहार है। ज़रूर ये सारे गोल्डन एरा के सारे ही गीत सचमुच बेहद ही सुंदर और लाजवाब हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं कि आदरणीय राखी बैनर्जी जी, सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं। उच्च कोटि की प्रस्तुति, मौसम पर गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिल की बड़ी दिल से बड़ी दुआएं हैं। आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। धन्यवाद आपका भी कि आप आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ से जुड़े हुए हैं। होस्ट राखी बैनर्जी जी, हम भी जुड़ गए हैं आपके शो में। आपका हर शो सुपर हिट लगता है। लवली सॉन्ग, ये मौसम रंगीन समा। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और रिधान खुराना जी लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ये है जिला खरगोना सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश, शेख मूसा, भाई राजकुमार, बड़ोना और सदमा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर का मौसम कुछ और होता है और मन का मौसम कुछ और, लेकिन अच्छे गीतों की खूबी यही है कि वो मन के हर मौसम में हमारे साथ रहते हैं, खुशी में भी, उदासी में भी और सुकून के पलों में भी। तो आइए सुनते हैं अगला गीत।

जी हाँ श्रोताओं, मैटिनी मेलोडीज इस वक्त आप सुन रहे हैं और हम पहुंच गए हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में। श्रोताओं, कभी धूप ज़्यादा होती है तो कभी बादल छाए रहते हैं, कभी हवाएं अपना रंग दिखाती हैं, लेकिन हर मौसम अपने साथ कुछ खास पल छोड़ जाता है। हिंदी फिल्मों के गीतों ने भी इन बदलते मौसम को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सहेजा है और शायद यही वजह है कि मौसम और संगीत दोनों का साथ कभी पुराना नहीं पड़ता है। तो चलिए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं और कार्यक्रम को यहीं करते हैं।

मैटनी मेलोडीज के इस आखिरी गीत के साथ राखी बैनर्जी अपनी दोस्त को अनुमति दीजिए, और ये जो गीत आप सुन रहे हैं वो है फिल्म आनंद से।

की भरपूर कैफियतों की शायरी है। वो हुस्न की सालिमियत के शायर हैं। उर्दू शायरी बिलखसूस गज़लों में उनकी मुनफरिद हैसियत इन मानों में है कि उन्होंने हुस्न की जुमला कैफियतों की हिस्सियाती अक्कासी में एक नए तर्ज या रंग की बुनियाद डाली थी, जिसने नई नस्लों के लिए हुस्न जमाल के मासूमाना कैफियत की नई राहें खोल दी थीं। फिराक की शायरी का मुताला हमें अजीब व गरीब कैफियत से दोचार करता है। कभी महसूस होता है कि फिराक खालिस जमालियात के शायर हैं, कभी महसूस होता है कि फिराक हकीकत और मजाज के फासलों को कम करने वाले शायर हैं, कभी ये अंदाज़ा होता है कि फिराक नई मिठास, नरमी, लोच, तरन्नुम और सोज़ो गुदाज के शायर हैं, कभी ऐसा भी महसूस होता है कि फिराक रात की कैफियत, रात की रमजियत को पेश करने वाले शायर हैं। हत्ता के उनकी शायरी बाज़ वक्त ये भी बावर कराती है कि वो तन्हाई और उदासी के एक एक लम्हे को गिरफ्त में लेने वाले शायर हैं, और कभी कभी ये भी महसूस कराती है कि वो तन्हाई और अकेलेपन की नफ्सियाती तौज़ीहात करने वाले शायर हैं। पकड़ लिया सरे महफिल किसी ने हाथ मेरा, बस आज मिल गई अपनी वफा की दाद मुझे, ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई, कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं। थी यूं तो शाम हिजर मगर पिछली रात को वो दर्द उठा फिराक के मैं मुस्कुरा दिया, दिल दुख के रह गया ये अलग बात है, मगर हम भी तेरे ख्याल से मसरूर हो गए। फिराक की शायरी बल्कि गज़ल के इन्हीं मुख्तलिफ कैफियात के सबब ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि फिराक किसी मखसूस रंग के शायर नहीं है। ऐसा इसलिए कि फिराक हर रंग में शेर कहते हैं, बल्कि जिस रंग को अपनाते हैं उन्हें अपना लेते हैं। उनकी गज़लों में आपको मीर, गालिब, मोमिन, आतिश, मुसहफ़ी, हसरत, फ़ानी और जिगर का रंग देखने को मिलेगा। मोमिन के रंग तगज़ुल में फिराक का ये शेर बहुत मशहूर है कि मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते आए दोस्त, आह अब मुझसे तुझे रंजिशे बेजाह भी नहीं। हसरत का शेर है कि नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। फिराक ने इसी मज़मून को यूं कहा है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। फ़ानी का शेर है कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, ज़िंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। फिराक ने इस मज़मून को यूं बांधा है कि न समझने की है बातें न समझाने की, ज़िंदगी उछटी हुई नींद है दीवाने की। फिराक ने ज़िंदगी के हकायक पर जिस तरह से रोशनी डाली है वो उन्हें जमालियाती एहसासात से करीब कर देती है। इसलिए फिराक के मुताले में जो बात सबसे पहले जहन में आती है वो उनका जमालियाती एहसास ही है। हमारे नाकदीन ने भी ज़्यादातर उनके जमालियाती तस्वुर को ही परखने की कोशिश की है। जमालियात किसी भी अशिया को महसूस करने और देखने परखने का एक तर्ज है जिसका गहरा ताल्लुक हिस्सी इदराक या इम्बसात व तहसीन से मुरक्कब एहतसासी कैफियात से होता है। हुस्न जमाल शनासी के इस अमल को बाज़ मुफक्करीन ने फ़लसफ़ा और बाज़ ने साइंस करार दिया है, जो उन उसूल और नज़रियों का तायुन करते हैं जो अदब पारों में मुसबर होते हैं। इसलिए हिस्सी जमालियाती तजर्बे और तख्लीक़ हुस्न पर ज़ोर देने वाले नाकदीन इस नज़रिए में उमूमी महसूसात के बजाय फ़न, फितरत और हुस्न की तहसीन को परखते हैं। फिराक के जमालियाती एहसास के तायुन में हुस्न व इश्क का जादू जगाने वाली शायरी या जिस्म और रूह के फासलों को कम करने वाली शायरी को ही पेश नज़र नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनकी खुदपसंदी, अनानियत और ज़हानत को भी मलहूज रखना चाहिए, ताकि उनके जमालियाती तेवर का अंदाज़ा सही सही लगाया जा सके। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फिराक के एहसास जमाल के पीछे ज़िंदगी की वो कड़वी सच्चाई भी पोशीदा है जो उनके लिए किसी आसेब से कम नहीं थी, और जिसने उनके एहसासात को इतने कचोके लगाए थे कि उनकी शायरी हिज्र के जमालियात का पैकर बन गई। फिराक के शेरी जमालियात का एक पहलू फिज़ा भी है। चूँकि फिराक का समाई तखय्युल बहुत रचा हुआ था, इसलिए उनके यहाँ जो शेरी फिज़ा है उसमें एक किस्म की मौसीकियत और सौतियाती इरतआश मिलता है। रोमानियत के सतही तखय्युल से हटकर भी उनके यहाँ इश्किया जज्बात की मुसव्वरी मुनफरिद है। वो ज़िंदगी और मज़ाहिर फितरत के वजूद में एक मुश्तरक रिश्ता तलाश करते हैं, यानी वो अपने नब्ज़ और कायनात की रफ्तार में एक रब्त तलाश करते हैं। यही रब्त उनकी गज़लों को समत भी अता करता है और उनके मुनफरिद लब लहजे की तशखीस भी करता है। इस ताल्लुक़ से जो अशार मिलते हैं उनसे दो बातों का अंदाज़ा होता है।
ایک یہ کہ احساس تنہائی انہیں بار بار

0: अपनी दाखली दुनिया से निकलकर खारजी दुनिया की बुलंदियों को छू लेने की तरगीब देती है। दूसरी ये कि इंसान और कायनात के दरमियान नुक्ते इत्तिसाल को पा लेने का जज्बा उन्हें उकसाता है। इन्हीं दोनों ख्यालात से फिराक की शायरी में ज़ौक़े जमाल और एहसास नगमा की लहर उठती है, जिनसे फिराक की शनाख्त कायम होती है। फिराक का खुद बयान है कि उनकी बेशतर गज़लें और नज़में शब के पिछले हिस्से में लिखी गई हैं, जब पूरी कायनात पर एक पुर असरार खामोशी, एक लतीफ़ और दिल नवाज महवियत का आलम तारी होता है। यही वजह है कि फिराक की शायरी में एक किस्म की खामोश पुर असरारियत की फिज़ा का एहसास मौज लेता हुआ नज़र आता है और कारी को यह महसूस होता है कि उन्होंने अपने अंदर की नगमगी को फितरत और फिज़ा के मुतरन्नुम सकूत से हम आहंग कर दिया है। मैं आसमान मोहब्बत पे रुखसत शब हूँ, तेरा ख्याल कोई डूबता सितारा है। सितारे खो गए हैं रूप के संगीत में अक्सर, कहाँ साजे शब महताब में है नगमगी तेरी। तमाम खस्तगी व मांदगी है आलम हिजर, थके थके से ये तारे, थकी थकी सी ये रात। गर्दूं शरारे बर्क दिले बेकरार देख, जिससे ये तेरी तारों भरी रात रात है। फिराक के यहाँ जो अरजियत है, धरती की अजमत और तकद्दस का जज्बा है, कायनात से कुर्बत का एहसास है, रस और नगमों का एहसास है, वो सब के सब हिंदी और संस्कृत के मुताले से आए हैं। उनकी गज़लों की रूह सरापा अरजी है। जिस तरह ज़मीन एक कशिश रखती है और ऊपर से आने वाली हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, उसी तरह फिराक अपनी गज़लों में खारजी दुनिया के वाकयात व हादसात और मुआमलात ज़िंदगी को अपना मरकज व महवर बना लेते हैं। फिराक की शायरी महज असालीब की शायरी नहीं है, बल्कि ख्याल की रानाई और तरन्नुम की शायरी है। उनकी शायरी में हर तकलीफ द चीज़ उनके लिए मुसर्रत का बाइस बनती है। कसक उनका आईना है, जिसमें वो अपने दिल का हाल देख लेते हैं और अपने गमजदा एहसासात को हसीन पैकर अता करते हैं। गम से हासिल करदा लताफत को सराहना और उसके साथ याराना सलूक रवा रखना ही फिराक के एहसास जमाल की असली कुंजी है। नियाज फतह पूरी ने उनकी इस अदा को मोहब्बत की मजबूरी और मायूसी से ताबीर किया है। हालांकि मैं उनके इस तर्ज अमल को महज मजबूरी और मायूसी से ताबीर नहीं करता। इसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि ज़िंदगी के खुशगवार और नाखुशगवार हालात और तजर्बात का एक सच्चा जमालियाती एहसास हासिल किया जाए। नीज़ ये भी एतराफ़ किया है कि इश्किया शायरी को सतहियत, तलखी, खुशकी से बचाना और उसमें जज्बात की सदाकत पैदा करना ही मेरी शायरी का असल मकसद है। फिराक के मुंदरजा ज़ैल अशार में हमें उन्हीं सदाकत का हुनरमंदाना इस्तेमाल देखने को मिलता है। कहाँ इतनी खबर उम्रे मोहब्बत किस तरह गुजरी, तेरा ही दर्द था दिल में जहाँ तक याद आता है। निसारे वादे दीदार फिर भी सोच से है, तुझे भी भूल न जाऊँ मैं देख कर तुझको। नरंगिए उम्मीद करम उनसे पूछिए, जिनको जफाए यार का भी आसरा नहीं। फिराक ने जमालियाती एहसासात को हयात व कायनात को समझने के लिए एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया था। हम उन्हें आम तौर पर हुस्न इश्क का शायर करार दे देते हैं, लेकिन उनका जमालियाती तसव्वुर किसी एक फिक्र या मजाक से वाबस्ता नहीं है। इसके कई पहलू हैं जो सरसरी मुताले से गिरफ्त में नहीं आते। उन्होंने ज़िंदगी की तलखियों को यकीनन महबूब का दर्जा दिया है, जिनसे एहसास जमाल की तरबियत होती है, और ऐसा उसलूब पहली बार हमारी गज़ल का हिस्सा बनता है। ताहम फिराक के जमालियाती शऊर को समझने के लिए उनके इश्किया तजर्बों के साथ साथ उनके रम्स आगी धीमे लहजे को भी परखना होगा, जो जमालियाती एहतसासी कैफियात से मामूर हैं।
1: फिराक का जमालियाती महवर, अभी आप इस मौजू पर जनाब इम्तियाज़ अहमद से उनकी तकरीर सुन रहे थे। सामईन, उर्दू अदब में जिसके वजूद से जमालियात और हुस्न को चार चांद लग जाते हैं, उसे गज़ल कहते हैं। आइए सुनते हैं गज़ल।

0: अभी आप सरला कपूर की गाई गजल सुन रहे थे। कलाम था शकील बदायूनी का। समीन शायरी खूबसूरत और मौजू अल्फाज के इंतखाब का नाम है। एहसासात और जज्बात को मौसर तरीके से पेश करने का नाम है। नसर जहां इंसानी अक्ल और मंतिक से मुखातिब होती है, वहीं शायरी किसी इंसान के दिल और रूह में उतर जाती है और जज्बात को बेदार करती है। अदब में शायरी को एक ख़ास मकाम हासिल है। आइए अदब के इस प्रोग्राम में सुनते हैं नवाए शायर प्रोग्राम के तहत जनाब फरहत एहसास से उनका कलाम।
1: ये जो हालात हैं ज़माने के, सब तिलिस्मात हैं ज़माने के। हम जो रोते हैं रात भर इतना, अहले खिदमात हैं ज़माने के। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, हम भी क्या हाथ हैं ज़माने के। सोचना बंद कर दिया हमने, सिर्फ जज्बात हैं ज़माने के। क्या हमारे सरों पे बैठे हैं ये जो बदज़ात हैं ज़माने के। फरत एहसास भी हैं खाना नशीं, क्या करें साथ हैं ज़माने के। हमको मत छेड़ की घनघोर हुए बैठे हैं, हमको मत छेड़ की घनघोर हुए बैठे हैं। फट ही पड़ने को तेरी ओर हुए बैठे हैं। बारिशे इश्क बस अब पाँव की जंजीरें खोल, बारिश इश्क बस अब पाँव की जंजीरें खोल। रंग सारे जो मेरे मोर हुए बैठे हैं। धड़कने तक भी सुनाई नहीं देती अपनी, धड़कने तक भी सुनाई नहीं देती अपनी। हम भी कैसा दिले पुरशोर हुए बैठे। उनकी मंजिल की हवा ही अब उठाएगी उन्हें, उनकी मंजिल की हवा ही अब उठाएगी उन्हें। बीच रास्ते में जो कमज़ोर हुए बैठे, वसल की रात के छोड़े हुए हिजराए हुए, वसल की रात के छोड़े हुए हिजराए हुए। उसकी चौखट पे अजब भोर हुए बैठे हैं, उसकी चौखट पे अजब भोर हुए बैठे हैं। फरत एहसास तो खामोश खड़े हैं बाहर, सुनने वाले हैं कि पुरशोर हुए बैठे हैं। दूर उधर बहता चला जाता है दरिया हमसे, दूर उधर बहता चला जाता है दरिया हमसे, और इधर छूटता जाता है किनारा हमसे। दूर उधर बहता चला जाता है दरिया हमसे, और इधर छूटता जाता है किनारा हमसे। जिंदगी मौत को देती है किराए पे बदन, जिंदगी मौत को देती है किराए पे बदन। मौत इस जिस्म का लेती है किराया हमसे, जिंदगी मौत को देती है किराए पे बदन। मौत इस जिस्म का लेती है किराया हमसे। ऐसा जाता हुआ देखा है किसी को हमने, ऐसा जाता हुआ देखा है किसी को हमने। कोई आता हुआ देखा नहीं जाता हमसे, एक बुढ़ापा की बुढ़ापे में ही

आना है जिसे, एक बुढ़ापा कि बुढ़ापे में ही आना है जिसे, क्यों जवानी में ही करता है बुढ़ापा हमसे। एक बुढ़ापा कि बुढ़ापे में ही आना है जिसे, क्यों जवानी में ही करता है बुढ़ापा हमसे। इतने चेहरों को बिगाड़ा है हंसी ने उस, इतने चेहरों को बिगाड़ा है हंसी ने उसकी, दूर ही रखना ये हंसता हुआ चेहरा हमसे। जब हुआ दूर तो हमसे भी किया दूर हमें, जब हुआ दूर तो हमसे भी किया दूर हमें, वो जो नज़दीक था हमसे भी ज्यादा हमसे, वो जो नज़दीक था हमसे भी ज्यादा हमसे। चार चांदों में है दो चांद हमारी नजरें, उसका चेहरा जो है पुरनूर तो आधा हमसे। चार चांदों में है दो चांद हमारी नजरें, उसका चेहरा जो है पुरनूर तो आधा हमसे। दूर उधर बहता चला जाता है दरिया हमसे, और इधर छूटता जाता है किनारा हमसे। कैसा दुश्मन था कि हम दर्द हमारा निकला, कैसा दुश्मन था कि हम दर्द हमारा निकला, हम जिसे धूप समझते थे वो साया निकला। कैसा दुश्मन था कि हम दर्द हमारा निकला, हम जिसे धूप समझते थे वो साया निकला। इस कदर हमने मोहब्बत में किया उसका सिंघार, इस कदर हमने मोहब्बत में किया उसका सिंघार, वो बिछड़ते हुए पहले से भी प्यारा निकला। इस कदर हमने मोहब्बत में किया उसका सिंघार, वो बिछड़ते हुए पहले से भी प्यारा निकला। क्या जवानी थी हमारी कि खुद अपने दर पर, क्या जवानी थी हमारी कि खुद अपने दर पर, जब भी आवाज लगाई तो बुढ़ापा निकला। क्या जवानी थी हमारी कि खुद अपने दर पर, जब भी आवाज लगाई तो बुढ़ापा निकला। देख आंखों के उफुक पर ये चमकदार आंसू, देख आंखों के उफुक पर ये चमकदार आंसू, गमजदा दिल तेरी किस्मत का सितारा निकला। गमजदा दिल तेरी किस्मत का सितारा निकला। मैं ही रहता हूँ हर एक घर में कि जब कोई मरे, मुझको लगता है कि मेरा ही जनाजा निकला। मैं ही रहता हूँ हर एक घर में कि जब कोई मरे, मुझको लगता है कि मेरा ही जनाजा निकला। शहर की भीड़ में वहशत भी थी वीरानी भी, शहर की भीड़ में वहशत भी थी वीरानी भी, यूं लगा मुझको मैं सहरा की तरफ आ निकला। शहर की भीड़ में वहशत भी थी वीरानी भी, यूं लगा मुझको मैं सहरा की तरफ आ निकला। एड़ियां रेत पे रगड़ी थी जहां प्यासों ने, एड़ियां रेत पे रगड़ी थी जहां प्यासों ने, मर गई प्यास तो उस रेत से दरिया निकला। मर गई प्यास तो उस रेत से दरिया निकला। शादियां करता रहा जिस्म मगर आखिरकार फरत एहसास कुंवारे का कुंवारा निकला। कैसा दुश्मन था कि हम दर्द हमारा निकला, हम जिसे धूप समझते थे वो साया निकला। हम निहत्थे थे तो हमने होश के नाखून लिए, हम निहत्थे थे तो हमने होश के नाखून लिए, अपने सब उड़ते हुए पुर्जे बिलाखिर चुन लिए। हम निहत्थे थे तो हमने होश के नाखून लिए, अपने सब उड़ते हुए पुर्जे बिलाखिर चुन लिए। मुखबिरी की होगी तेरी सुर्ख रुई ने जरूर, मुखबिरी की होगी तेरी सुर्ख रुई ने जरूर, वरना दिल वाले सुखन दुनिया ने कैसे सुन लिए। मुखबिरी की होगी तेरी सुर्ख रुई ने जरूर, वरना दिल वाले सुखन दुनिया ने कैसे सुन लिए। मैं वो तन्हाई बजा हूं

0: इसको मुर्दा जानकर, मैं वो तन्हाई बजा हूँ जिसको मुर्दा जानकर, मकड़ियों ने मेरे दरवाजे पे जाले बुन लिए। मैं वो तन्हाई बजा हूँ जिसको मुर्दा जानकर, मकड़ियों ने मेरे दरवाजे पे जाले बुन लिए। हम वो दुनिया हैं जिसे होने में दिलचस्पी नहीं, हम वो दुनिया हैं जिसे होने में दिलचस्पी नहीं, हम वो दुनिया हैं जिसे होने में दिलचस्पी नहीं, और खुदा सर पर मुसल्लत अपनी तेगे कुन लिए। हम वो दुनिया हैं जिसे होने में दिलचस्पी नहीं, और खुदा सर पर मुसल्लत अपनी तेगे कुन लिए। शहर अंधों का है जिसमें आईना, आया हूँ मैं, सोचता हूँ लौट जाऊँ अपने सारे गुन लिए। शहर अंधों का है जिसमें आईना, आया हूँ मैं, सोचता हूँ लौट जाऊँ अपने सारे गुन लिए। गाने वाले सब नए, सारे नए संगीतकार, फिर रहा हूँ कब से अपनी एक पुरानी धुन लिए। फरहत एहसास आप या ना फरहत एहसास आप हैं, फरहत एहसास आप या ना फरहत एहसास आप हैं, आपको एक उम्र गुजरी अपनी ही सुनगुन लिए।
1: अभी आप प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब फरहत एहसास से उनका कलाम सुन रहे थे। तो सामिन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्से अदब। यकीनन आपको पसंद आया होगा। और अब अपने दोस्त मोहम्मद अली कमाल को आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। 4 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

接下来将播放另一首歌曲，这首民歌是卡纳塔卡尔邦的民歌，请大家收听一下。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा। खेल से जुड़ी नवीनतम जानकारियां और खिलाड़ियों से खास बातचीत लेकर प्रस्तुत हैं हम आपके मनभावन कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में। मेरे साथ हैं विदुषी वत्स। हेलो विदुषी।
2: नमस्कार, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है खेल खिलाड़ी में।
1: सबसे पहले बात फीफा विश्व कप की करेंगे, जहां दो बार की चैंपियन फ्रांस को सेमीफाइनल में स्पेन ने 2-0 से हराकर 16 साल बाद फाइनल में प्रवेश कर लिया है।
2: जी हाँ बिल्कुल, साथ साथ चर्चा आज के दमदार मैच की भी होगी, सेमीफाइनल जो खेला जाएगा अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच।
1: जी अब बात क्रिकेट की करेंगे, जहां भारत ने इंग्लैंड को 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में पराजित कर दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों पर हमारी खास सीरीज में आज बात होगी मुक्केबाजी में भारत के दमखम की। इसके अलावा जापान ओपन बैडमिंटन, बुडापेस्ट में चल रही कुश्ती रैंकिंग सीरीज और अंडर 20 कुश्ती ट्रायल्स पर हमारे सहयोगी शाहिद आजमी की खास रिपोर्ट, और इसके अलावा एशियाई बॉक्सिंग के ताजा नतीजों से भी आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीफा विश्व कप से। स्पेन की फुटबॉल टीम को अपनी टिकी टाका शैली के लिए जाना जाता है, यानी छोटे छोटे पासों से गेंद पर कब्जा रखना और मौका मिलते ही गेंद को गोल में उतार देना। कुछ इसी पैटर्न पर स्पेन ने फीफा विश्व कप में 2 बार की चैंपियन और पिछली बार की फाइनलिस्ट फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में धमाकेदार ढंग से प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही फ्रांस का लगातार तीसरे फाइनल में पहुंचने का सपना भी तार तार हो गया। कोच डिडियर डेशैंप की फ्रांसीसी टीम को टेक्सास में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में यूरोपियन चैंपियन स्पेन ने यह सबक भी सिखा दिया, किसी भी टीम को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। 2010 की चैंपियन स्पेन को मिकेल ओयरजाबेल ने 20वें मिनट में पेनल्टी के जरिए बढ़त दिलाई। फ्रांस के रक्षक लुकास डिग्ने को स्पेन के विंगर 19 साल के लामिने यमाल को गलत ढंग से टैकल करने पर पेनल्टी दी गई थी। ओयरजाबेल का यह इस वर्ल्ड कप में 5वां गोल रहा। दूसरे हाफ में पेट्रो पेरो ने गोल कर स्पेन की जीत तय कर दी। पहले हाफ में 1 गोल से पिछड़ने के बाद फ्रांस की टीम इतने सकते में थी कि उसकी हलचलें हल्की पड़ गई, गोल पोस्ट पर बमुश्किल निशाने लगे। अब तक विश्व कप में फ्रांस की एम्बापे और डेम्बले की जोड़ी उनके हमलों को धार दे रही थी, लेकिन स्पेन की रक्षा पंक्ति की मजबूत किलेबंदी के आगे नामी स्ट्राइकर बस प्रयास करते ही रह गए। माइकल ओलिसे तो बिल्कुल ऑफ कलर रहे। अब तक इस विश्व कप में 8 गोल करने वाले एम्बापे का मैजिक भी कहीं गुम हो गया था, और यहाँ तारीफ स्पेनिश खिलाड़ियों की करनी होगी जिन्होंने एम्बापे की कड़ी मार्किंग कर रखी थी। फ्रांस के कोच डिडियर डेशैंप ने हाइड्रेशन ब्रेक के बाद रियो हर्नांडेज और रियान को मैदान में उतारा था। ब्रेडली बार्कोलो को भी आक्रमण में धार देने के लिए उतारा गया, लेकिन कोई भी युक्ति फ्रांस के काम न आई। पहले हाफ में सेंटर बैक विलियम सालिबा भी पीठ में चोट के चलते बाहर हो गए थे, उनकी जगह लैक्रोइस आए। इस मुकाबले से यह भी जाहिर हो गया कि स्पेन और फ्रांस की प्रतिद्वंदिता फिर से पनप रही है। पहले यूरोपियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से मात दी थी। इसके अलावा पिछले साल स्पेन ने नेशंस लीग में भी फ्रांस को 5-4 से हराया था। 2 दिन पहले अपनी 19वीं सालगिरह मनाने वाले स्पेन के लामिने यमाल ने पहले ही चेताया था कि

0: फ्रांस को स्पेन से डर कर रहना होगा और फ्रांस ने यमाल की बात को हल्के में लेने की गलती कर दी। ला रोजा के नाम से मशहूर स्पेन 16 साल बाद फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है और उसके पास यूरोपियन खिताब के बाद विश्व कप जीतकर अनूठा डबल करने का भी अवसर है। फाइनल में उसकी टक्कर चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगी। फ्रांस की टीम तीसरे स्थान का प्लेऑफ खेलेगी। फ्रांस जैसी मजबूत प्रतिद्वंदी को हरा फाइनल में पहुंचने वाली स्पेनिश टीम के कोच लुइस दे ला फुएंता हैं, जिनका रक्षण पर बड़ा जोर है, इसलिए अब तक टीम पर एक ही गोल हुआ है और टीम फाइनल में पहुंच गई है। इन्हीं कोच फुएंते ने स्पेन की अंडर 19 और अंडर 21 टीम का भी मार्गदर्शन किया है, लिहाजा खिलाड़ियों के साथ उनका तालमेल अच्छा है। अगर फाइनल तक के सफर की बात की जाए तो स्पेन ने ग्रुप चरण में कैबोवार्डो के साथ पहला मैच गोल रहित ड्रॉ खेला, उसके बाद सऊदी अरब को 4-0 से हराया, उरुग्वे को 1-0 से मात दी और ऑस्ट्रिया को 3-0 से पराजित किया। पुर्तगाल के खिलाफ टीम 1-0 से विजय रही। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराया और सेमीफाइनल में फ्रांस को 2-0 से हरा खिताब के लिए दस्तक दे दी है। स्पेन की जीत पर हमने बातचीत की तरुण राय, जो कि भारत के जाने माने पूर्व फुटबॉलर हैं, तो क्या कहा उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में और स्पेन टीम के खेल के बारे में।
1: पूरा जो स्ट्रेटेजी बनाया उनके कोच ने वो रियली रिमार्केबल, इसको हम कह सकते हैं जो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था फ्रांस के लिए। वो समझ ही नहीं पाए जो ये क्या हुआ। और आप 90+ मिनट में भी आप देखोगे उनका एनर्जी जिस लेवल में था, उनका न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी जिस हिसाब से था, चाहे वो अटैकिंग में हो या डिफेंसिव में, सारे प्लेयर मेहनत कर रहे थे और उसका रिजल्ट उनके सामने। सिर्फ दो चांस मिले, दोनों कन्वर्ट, एक पेनल्टी में मिला और एक स्कोर किया उन्होंने। अदरवाइज उन्होंने पूरा पोजीशन रखा अपने पास और वो टैक्टिकल पोजीशन वो खेली थे और प्रेशर गेम खेला उन्होंने। सबसे जब भी बॉल गया और उनको पता था एमबेपे है जो मेन, उसको ऑलवेज उन्होंने मार्क करके रखा, ऑफसाइड ट्रैक में भी रखा, कई बार ऑफसाइड हो गया वो। तो ये एक टैक्टिकल जो कहते हैं हम एनालिसिस जो किया उनका कोच जरूर इसमें हावी रहा।
0: तो सर वो जो फ्रांस की टीम की जो अटैकिंग पावर थी, एम्बापे 8 गोल और इसके अलावा डेम्बले, मतलब सभी एक शानदार उनके पास स्ट्राइकर थे, लेकिन वो इनका डिफेंस इतना मजबूत है कि वो
1: जब भी देखो वहां पे उनके जब भी काउंटर अटैक किया फ्रांस ने, इनके डिफेंस क्या मिडफील्ड भी इतना स्ट्रांग है, सारे करते थे। अगर 4 उनके फॉरवर्ड आ रहे हैं ऊपर अटैकिंग मिडफील्ड को साथ लेके 3 स्ट्राइकर ऊपर चढ़ रहे हैं तो उनके 5 डिफेंडर आ जाते थे, एक ज्यादा, ऑलवेज ज्यादा। इवन काउंटर होता है, अटैक हुआ तो अटैक में भी उनके डिफेंसर डिफेंस से ज्यादा उनके अटैकिंग प्लेयर होते हैं। तो इससे ये एकदम समझ नहीं पाए। प्लस जो टिकी टाका इस बार हमने 2010 के बाद फिर देखा इनको, तो डेफिनेटली वो भी एक एडवांटेज रहा और बहुत कॉन्फिडेंटली खेले, बहुत ही कॉन्फिडेंटली खेले। प्लस जो एनर्जी मेरे को देखा वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, सब मतलब चेस कर रहे, हर बॉल को चेस कर रहे और पूरा प्रेशर देके खेला उन्होंने। जब भी बॉल जा रहा है इमीडिएटली प्रेस कर रहे हैं, जिससे कि वो फ्रांस समझ ही नहीं सकी क्या करें।
2: अब रुख करते हैं फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल का, जहां आज फुटबॉल जगत की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने होंगी। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में विश्व फुटबॉल की निगाहें टिकी होंगी, जहां एक और होंगे इंग्लैंड के 3 लायंस, जो 1966 के बाद पहली बार विश्व कप जीतने का सपना संजोए हैं। तो दूसरी ओर मैदान में उतरेगी मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, जिसका लक्ष्य लगातार दूसरे विश्व कप फाइनल में जगह बनाना है। अब अगर बात करें दोनों टीमों के अब तक के सफर की, तो इंग्लैंड ने इस विश्व कप में अब तक हार का स्वाद नहीं चखा है, लेकिन नॉकआउट चरण में उसका हर मुकाबला बेहद कठिन रहा है। राउंड ऑफ 16 में टीम ने मेक्सिको को 3-2 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के खिलाफ अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में 2-1 से जीत दर्ज की। उस मैच में जूड ने निर्णायक भूमिका निभाई और पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। वहीं अर्जेंटीना ने भी अपने खिताब बचाने के अभियान में कई कठिन परीक्षाएं बार पार की। राउंड ऑफ 16 में टीम ने मिस्र को 3-2 से हराया और क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को अतिरिक्त समय में 3-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। कप्तान लियोनेल मेसी शानदार लय में है और वे इस विश्व कप में अब तक 8 गोल दाग चुके हैं। अब किन खिलाड़ियों पे आज हम नजरें रखेंगे? इंग्लैंड की उम्मीदें कप्तान हैरी केन, मिडफील्ड स्टार जूड बेलिंगम और फिटनेस टेस्ट से गुजर रहे डेक्लिन राइस पर टिकी होंगी। अगर राइस पूरी तरह फिट होते हैं तो इंग्लैंड का मिडफील्ड काफी मजबूत नजर आएगा। दूसरी ओर अर्जेंटीना की सबसे बड़ी ताकत एक बार फिर लियोनेल मेसी हैं। उनके साथ जूलियन अल्वारेज और अर्जेंटीना का आक्रामक खेल किसी भी रक्षा पंक्ति को मुश्किल में डाल सकता है। रणनीतिक मुकाबला यहाँ पे देखा जाए तो थॉमस की इंग्लैंड टीम तेज काउंटर अटैक और सेट पीस का भरपूर इस्तेमाल करती है, जबकि लियोनेल की अर्जेंटीना गेंद पर नियंत्रण बनाए रखते हुए धैर्य के साथ मौका बनाना पसंद करती है। एक दिलचस्प तथ्य जो है ये है कि विश्व फुटबॉल में ये पहली बार होगा जब लियोनेल मेसी किसी बड़े प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के मुकाबले में इंग्लैंड का सामना करेंगे। ऐसे में यह मुकाबला उनके करियर का सबसे यादगार अध्यायों में से भी एक बन सकता है। 60 वर्ष से विश्व कप ट्रॉफी का इंतजार कर रहा इंग्लैंड तो दूसरी तरफ लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का सपना देख रही अर्जेंटीना। इस पर विशेषज्ञ तरुण रॉय ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: अर्जेंटीना और इंग्लैंड का भी मैच बहुत ही टफ रहेगा, क्यों ना इंग्लैंड का एक फिजिकल स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है वो यहाँ पे जरूर काम आएगा और उन्होंने भी ये देख लिया है किस तरह अच्छी टीम को रोका जाए। और मेसी को जैसे एमबीपी को उन्होंने रोका, तो मेसी को अगर ऐसे दो दो तीन तीन जने इसको मार करके रखे, बॉल ही नहीं सप्लाई हो जो मेसी को वहीं रोक दे वो, तो डेफिनेटली बॉल ही नहीं आएगा तो कहां से वो खेलेगा फिर। तो ये चीज बहुत ज्यादा आज भी टैक्टिकल देखना पड़ेगा जो दोनों कोच का स्ट्रेटेजी क्या है। तो डेफिनेटली आज का भी मैच बहुत अच्छा हमें देखने को मिलेगा।
0: जी हाँ विदुषी, ये तो बात हुई फुटबॉल की। अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान में, जहां इंग्लैंड के दौरे पर है भारतीय टीम और T20 में जो प्रदर्शन, एक T20 में जहां हार का सामना करना पड़ा था 6 मुकाबले में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे में, अब वनडे श्रृंखला जो 3 मैचों की होनी है उसमें पहले ही मैच में भारत ने जीत का स्वाद चखा है और शानदार प्रदर्शन रहा भारतीय क्रिकेटरों का। तो क्या है इस खास रिपोर्ट में, आइए जानते हैं।
2: आपको लिए चलते हैं क्रिकेट की दुनिया की बड़ी खबर में, जहां भारत ने एज बेस्टन में कल शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मुकाबले की शुरुआत इंग्लैंड ने की टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। शुरुआती बल्लेबाजी में पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़कर टीम ने मजबूत शुरुआत करी, लेकिन इसके बाद भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। इंग्लैंड ने महज 19 रन के भीतर अपने 5 विकेट गवा दिए और उनकी पारी लड़खड़ा गई। हालांकि अगर बात करें तो अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने एक छोर को बखूबी संभाले रखा। रूट ने नाबाद 76 रन बनाए और लियाम डॉसन के साथ 6 विकेट के लिए 121 रन की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप की। डॉसन ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 68 रन की पारी खेली। अंत में अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 62 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और इंग्लैंड की पूरी टीम 258 रन पर सिमट गई। अब 259 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग के लिए आए पावर प्ले के भीतर ही आउट हो गए, जिससे भारत पर दबाव बढ़ गया। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने केवल 75 गेंदों पर 80 रन की बेहतरीन पारी खेली और श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारत की पारी को संभाला। लेकिन जब भारत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था, तभी शुभमन गिल मांसपेशियों में खिंचाव के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए। इसके तुरंत बाद श्रेयस अय्यर रन आउट हो गए और केएल राहुल भी बिना खाता खोले आउट हो गए। एक समय 160 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद मुकाबला फिर रोमांचक हो गया। ऐसे मुश्किल समय में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार संयम और आक्रामकता का परिचय दिया। दोनों ने 5वें विकेट के लिए नाबाद 102 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप की और इंग्लैंड की वापसी की भी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वॉशिंगटन सुंदर ने नाबाद 52 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल 57 रन बनाकर नाबाद लौटे। अपने इस प्रदर्शन के लिए अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने 258 रन का लक्ष्य 28 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया और शानदार जीत के साथ श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। ये जीत एज बेस्टन में भारत के लिए बेहद यादगार साबित हुई। इस जीत के ऊपर शुभमन गिल का क्या कहना है, उनकी साझेदारी जो श्रेयस अय्यर के साथ हुई उस पे उनका क्या कहना है और आगे टीम टीम किस प्रकार के मैचेस के लिए तैयारी कर रही है, आइए सुनते हैं उन्होंने इन सब बातों पर क्या कहा।
3: Honestly, it was more about a combination. You know, we have a youngish bowling attack, so our batting is still a bit more experienced than our bowling. So, the first game of the series, we wanted to bowl first, so that even

0: हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह, जो गांव की महिलाएं इकट्ठी होकर एक समूह बनाती हैं, जिसमें कम से कम 10 महिलाएं और ज्यादा से ज्यादा 15 महिलाएं होती हैं, जो मिलकर एक समूह बनाती हैं। और जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में स्कीम है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
1: जी
0: उससे हमने अपने सभी समूह को जोड़ा है। और समूह बनाने के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार करती है।
1: जी तो क्या उसी गांव की महिला होनी चाहिए या उस गांव से बाहर की, जैसे मैंने कहा करें भैया 5 गांव की पंचायत है या 10 गांव के लोग हैं, तो ऐसा भी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ है?
0: सारे गांव की ही बहनें समूह में हो सकती हैं, लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट करी कि जो बाहर की यूपी बिहार से बहनें हैं हमारी, वो गांव में रहती थी और दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, तो उनको डबल काम करना पड़ता था।
1: या कई बार खेती क्यारी का भी तो काम वे कर ले हैं,
0: हाँ
1: उगाए
0: जी,
1: बाटे पे
0: जैसे
1: करवाते होंगे।
0: उन्होंने खेत ले रखे हैं, बीज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, उनका मैंने एक समूह बनाया बात करके कि इन महिलाओं को भी फायदा मिलना चाहिए, तो उनको मैंने एक अलग समूह में जोड़ा और उम्मीद नाम से उनका एक समूह बनाया। आज जो बाहर की महिलाएं हैं वो उससे जुड़ के जब भी उनको जरूरत होती है पैसे की, तो वो ग्रुप से ही लोन उठाती हैं, और आज लोन उठा के उन्होंने अपने खुद के प्लाट वहां पे गाँव में ही लिए हैं और अपने मकान बना लिए, बहुत ही खुश हैं वो महिलाएं, तो काफी फायदा उनको भी हुआ है।
1: ये विचार आपके मन में आया कैसे? क्योंकि किसी ना किसी कहानी के पीछे कुछ ना कुछ जब आदमी बनता है तो कहीं ना कहीं से तो एक विचार आता है,
0: तो
1: तो जी
0: जी,
1: आपके मन में क्यों करे विचार आया?
0: जब मैं शादी करके आई तो परिवार की स्थिति जो है ठीक ठाक थी, गुजारा चलता रहा क्योंकि सारा परिवार एक साथ में था।
1: जी
0: फिर मेरे 3 बच्चे हो गए और परिवार से हमें अलग कर दिया। जब परिवार से अलग करा तो ये हो गया कि अब मैं अपना गुजारा कैसे करूं। मेरे पति की सैलरी कम थी और बच्चे 3 हो गए,
1: जी
0: खर्चे ज्यादा, आमदनी कम, तो मैंने ये सोचा कि मैं किस तरह अपने पति की मदद करूं, परिवार को थोड़ा सा सपोर्ट कर पाऊं और बच्चों का भविष्य हमारा अच्छा बन जाए। तो ये सोच के ही मैंने 2013 में शुरुआत की थी। उससे पहले मैंने 2,500 रुपए में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, जिसमें मैं बच्चों को स्कूल भेज के तब जाती थी और उनके आने से पहले मैं 2 बजे घर आ जाती थी। लेकिन उस 1.5 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा। घर घर जाके विजिट करना होता था, महिलाओं को समझाना पड़ता था। गुड़गांव का इकबालपुर गांव है, वहां पे मेरी ड्यूटी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम निकला तो 1.5 साल का ही था वो जो प्रोजेक्ट था, फिर मैं अब वापिस घर में ही बैठ गई। तो बस मेरा ये है कि मेरी मजबूरी ने मेरे को घर से निकाला।
1: यानी गांव की एक एक पगडंडी, गांव का एक एक पत्थर इस बात की गवाही देवे है कि आपने बहुत मेहनत करी है इस मुकाम तक पहुंचने तैयार। तो जब कोई भी महिला आपके ग्रुप से जुड़ा है तो क्या करें कि हर चीज से जुड़न तैयार, कोई ना कोई आप में योग्यता होनी चाहिए, भाई आप कितने पढ़े लिखे हो या उसमें कोई पैसा कितना लगाओगे, तो ऐसा भी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप में है?
0: एक एक ईंट और पत्थर का तो ये है, मेरे पास सिर्फ मेहनत थी, उसके सिवा मेरे द्वारा कुछ भी नहीं था।
1: जी
0: ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ी लिखी महिला ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं 10वीं पास करते मेरी शादी कर दी थी और 12वीं मैंने 3 बच्चे होने के बाद 2011 में +2 की है ओपन से। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये है कि हिसाब किताब आपको ठीक ठाक आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा पढ़ी लिखी ही महिला हो। लेकिन अगर आपको कोई पद दिया जाता है तो उसमें जैसे पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, रजिस्टर होते हैं जो, उनमें हमें मीटिंग लिखनी पड़े है और जैसे बैंक में पैसे जमा कराने पड़ते हैं और स्लिप भरनी पड़ती है, तो इस तरह से 3 जो महिलाएं होती है समूह में उनका पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। बाकी अनपढ़ महिलाओं को भी हम साथ लेके चलते हैं
1: क्योंकि उनके
0: ताकि,
1: हाथ में
0: जी, क्योंकि वो भी सरकारी योजनाओं का फायदा उठा लें। और जरूरी नहीं है कि पहले के टाइम में हर महिला पढ़ी लिखी होती थी तो वो वंचित क्यों रहे उन चीजों से। तो हमने जैसे अगर ग्रुप में 7 महिलाएं अनपढ़ हैं तो 4 से 5 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो 4 से 5 महिलाएं अनपढ़ भी हम ले सका।
1: तो टोटल कितनी महिला वो जुड़कर टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ है? केवल 5, 11, 15 या भी 50 भी हो जावा है, 25 भी हो जावा है?
0: ये हमारा जैसे हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है तो

0: इसमें हमने कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15 महिलाएं हो सकती हैं। और वैसे मैंने 12 SHG बना रखे हैं, जिसमें कम से कम एक महिला एक ग्रुप में 10 होती हैं और ज्यादा से ज्यादा हम 15 ले सकते हैं। ये सरकार का रूल है।
1: जी, जब सरकार ने आपको पैसा दे दिया और आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया, उसके बाद में पहला जो कदम होगा वो आप ये सोचोगे, भाई मान लो कि किसी ने बिस्कुट बनाने आवा है, लेकिन जो दूसरा है वो नहीं चाहवा है कि भाई हम तो जो हाथ की कारीगरी है वो गणी अच्छी कर लेंगे, तो इन दोनों में तो फिर आप ये सोचो कि भाई हमने की काम करना है।
0: रुचि के अनुसार काम कर सके हैं महिलाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर कोई महिला सिलाई कढ़ाई करना चाहे है तो हम उसको बिस्किट में लेंगे, तो उनका जैसे अलग SHG होगा तो वो अपने SHG में सिलाई कढ़ाई का भी काम कर सकती हैं।
1: अच्छा
0: और जैसे एग्जीबिशन ट्रेड फेयर, सूरज कुंड मेला होता है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, किसान मेला होता है, तो इनमें महिलाएं जाके अपने जो प्रोडक्ट बनाती हैं, चाहे वो सिलाई पे आधारित है या फिर बिस्किट है, तो उसमें जाके वो सेल कर सकती हैं।
1: जब उसकी सेल हो गई और उससे जो मुनाफा हुआ, तो उस मुनाफे को कैसे बांटा जाएगा?
0: उस मुनाफे को अगर सारी महिलाएं ग्रुप में काम कर रही हैं तो उन सभी महिलाओं के अंदर वो मुनाफा बट जाएगा।
1: इसका भी कोई परसेंटेज रखा जाएगा, बराबर बटेगा या यूं कि भैया जो बड़े पद पे है उसको ज्यादा मिलेगा,
0: नहीं,
1: उसके बाद
0: इसमें
1: छोटे?
0: सब पद बराबर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का बड़ा पद है या किसी का छोटा पद है, चाहे उसमें पढ़ी लिखी महिला है या अनपढ़ है, सबको बराबर समझा जाता है। एक साथ एक जमीन पे बैठ के सबकी मीटिंग होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। जो समूह के अंदर आ जाती है उसमें कोई जाति पाति, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सभी बराबर होते हैं। और अगर मुनाफा होता है तो वो भी बराबर ही बटेगा।
1: जो हमारा कार्यक्रम सुन रही हमारी बहन है, वे भी नहीं चाहूंगी हमने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप खोलना है, लेकिन अगर वो मान लो गांव की नहीं है, वे शहर की है, तो क्या शहर की जो हमारी बहन है वे भी इस ग्रुप का फायदा ले सके हैं?
0: देखिए, जो गांव नगर निगम में आए हैं उनका JLG का ग्रुप बनता है, चार चार महिलाओं का। लेकिन ग्रामीण एरिया में जो है गांव की महिलाएं हैं वो एक साथ जुड़ती हैं। हाँ, अगर जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में वो बात कर सकती हैं ADC ऑफिस में, और वहां पे जो कार्यकर्ता होते हैं, तो ऑफिस में जो लोग होते हैं उनसे हम बात करके अगर वो शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे समूह बनते हैं वो जानकारी सारी वहां पे उनको दे देंगे।
1: आजकल तो आ गया कि इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल पर सब कुछ मेरा पर्चा है। अगर जो हमारी पढ़ी लिखी भाण है, उनकी जो छोरी है, वे चाह है कि भी हमने कुछ आगे बढ़ना है, तो कि नेट पर भी उनने सारी जानकारी मिल जाए है?
0: बिल्कुल मिल जाएगी। जैसे हरियाणा सरकार HSRLM का पेज है, उस पे सारी जानकारी होती है कि कैसे समूह बनता है और कितनी महिलाओं का बनता है, क्या क्या इसके फायदे हैं, कौन से अवार्ड के लिए अगर महिलाएं काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो काफी सारे पुरस्कारों की भी घोषणाएं होती हैं जो महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। अब जैसे हमने जो समूह बनाए हैं उसमें बेटियों को भी लिया है,
1: जी
0: क्योंकि लड़कियों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो पढ़ाई में खर्च कर सकें। अगर बेटी कोई अच्छा कोर्स करना चाहती है तो वो समूह से लोन लेके और अपने कोर्स को पूरा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, उसको पैसा एकदम से नहीं देना होता।
1: जी
0: जैसे उनकी माँ है समूह में, वो कोई काम करती है, तो जैसे उन्होंने 1 लाख का लोन लिया तो हर महीने 10-10 हजार करके किस्त देंगी वो, 1 रुपए सैकड़ा ब्याज पे। और जो ब्याज होता है वो भी महिलाओं का ही होता है, ऐसा नहीं है कि हमारा ब्याज कोई और ले जाएगा। अगर महिलाएं समूह से लोन लेती हैं, ब्याज मतलब समूह की महिलाओं में ही बढ़ता है।
1: अच्छा
0: मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ के ट्रेनिंग ली रोस्टेड सोया नट्स की। साथ में जैसे मैं झज्जर जिले के बाकरा गांव की बेटी हूँ, तो बचपन से खेती बाड़ी और पशुपालन किया था, तो जैसे ही मैंने वो चीजें अपने साथ में जोड़ी जो हम बचपन से देखते आ रहे थे, हमारी माँ नानी से हमने जो चीज सीखी थी वो क्या क्या बनाती है, जैसे गेहूं से दलिया बनाया, बाजरे से खिचड़ी, लड्डू, मठिया, तो उन्हीं चीजों को मैंने अपने साथ में लिया है। और एक NGO की हेल्प से 2017 में बेकरी ओन हमारे यहाँ पे लगा, तो उसकी हेल्प से जैसे बेकरी ओन लगा तो ऐसी कुकीज की भी ट्रेनिंग दिलाई गई जो आज हमारी 5 स्टार से लेके विदेशों तक जाती हैं।
1: जी
0: उसके साथ ही जैसे लॉकडाउन हुआ और घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया महिलाओं को, तो महिलाओं ने घर की बागडोर को संभाला और हमने जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, चना, इन सब से बिस्किट बनाना शुरू कर दिया। और जो लोग हमसे जुड़े हुए थे जैसे एग्जीबिशन के माध्यम से, एक बहुत अच्छा मार्केटिंग का साधन है एग्जीबिशन। वहां पे जब हम स्टॉल लगाते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे ऐसे जुड़ जाते हैं जो बाद में भी सामान हमारा लेते रहते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग थे जिन्होंने लगातार लॉकडाउन में हमसे सामान लिया और महिलाओं ने अपने घर के जो जिम्मेदारियां थी वो निभाई।
1: समाज में एक नाम घना ऊंचा हो जाए, पदवी भी बहुत मिल जावे

0: और सब आपने जानने लग जावे, तो उसके बाद तक दो ही जिम्मेदारी आ जाए और उस दो ही जिम्मेदारी के बीच में अपने परिवार की जो सार संभाल है, जो देखभाल है, वो किस तरह कर रही हो, यह बीमारी जानना चाहूंगी।
1: एक महिला है जो, उसको अपनी सारी जिम्मेवारी तो पूरी करनी पड़ेगी।
0: पक्का
1: अगर वो कुछ भी काम करती है, सबसे पहले तो ये डर रहता है कि परिवार वाले कहीं रोक ना दें उसको। तो वो इन चीजों से बचने के लिए, जो महिला 5 बजे उठती है सुबह, वो 4 बजे उठना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको पूरा काम करके देना है परिवार को।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं और हमने बेरा है कि जब तक परिवार का साथ हमारी गल नहीं है, तब तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जो और हमारी बहन पीछे रह गई है या किसी तरह आगे नहीं बढ़ पाई या परिवार का सहयोग नहीं मिला, तो क्या घर में बैठ कर भी कोई वही से काम कर सके है जिससे कि थोड़ी सी आमदनी भी मिल जाएगा उन्हें?
1: बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे सिलाई का कर सकती हैं बहने, कढ़ाई का कर सकती हैं, किसी को अचार अच्छा बनाना आता है, कोई पापड़ अच्छे बना लेती है। लेकिन मेरा मानना है बहन जो है समूह में काम करें, क्योंकि एक अच्छी टीम होगी। अगर अकेला बंदा काम करेगा, कल को उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अब जो काम महिलाएं शुरू करेंगी तो उसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कुछ भी सामान बना सकता है। लेकिन सबसे मेन होता है मार्केटिंग की समस्या, मार्केट उसको कहाँ मिले। कि समूह में महिलाएं अगर काम करेंगी तो काम अच्छे से मतलब कर पाएंगी और आगे भी बढ़ेगा और उनका नाम भी होगा। जैसे कि मेरी टीम है, मेरी टीम बहुत अच्छी है और गाँव की जो महिलाएं हैं बहुत ही मतलब ईमानदारी से काम करती हैं।
0: यूं बेरा हमने कि हमने यह जो जिम्मेदारी है या पूरी जिम्मेदारी समझ गए कि हमारी ये जिम्मेदारी हमने निभानी है। जब बात चल रहा है जिम्मेदारी की और जब बात चल रहा है एक महिला की, तो देखो भी जितने भी रिश्तेदार है, नातेदार है, जब कोई महिला ऊंचे पद पर पहुंच जाए तो हर कोई नहीं चाहोगे भाई इसके माध्यम से हम कोई ना कोई काम करवा लेवा, ये मेरा या उनके मन में भावना हो।
1: बाकी कोई दिक्कत नहीं है, भावना चाहे कुछ भी हो, लेकिन लोगों का सहयोग कहीं ना कहीं रहता है जीवन में। और हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो हमारा स्वभाव है वो ही मायने रखता है। पैसे मायने नहीं रखता, पद मायने नहीं रखता। महिला जो उसका स्वभाव है, मैं अपने से ही बताती हूँ, जो मेरा स्वभाव है, आज जो भी महिलाएं हैं, मैं कभी किसी के अंदर भेदभाव नहीं करती। महिलाएं बड़ी प्यार से अपने मन की बातें सारी बोल देती हैं मेरे आगे, क्योंकि वो स्वभाव के कारण। और स्वभाव इंसान का अच्छा होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे चला जाए।
0: जब आपने इनाम मिले हैं, कौन कौन से इनाम मिले हैं, तो हमारी भावना के साथ साथ मैं भी जानना चाहूंगी, क्योंकि मुझे भी ये बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपसे बात करने लग रही हूँ और आपने जो है इतने इतने इनाम ले रखे हैं।
1: देखिए, काफी सारे पुरस्कार हरियाणा के कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल पुरस्कार मिले हैं और केंद्र सरकार से भी काफी सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें नॉन मेसी कृषक पुरस्कार है, एग्री लीडरशिप समिट अवार्ड है और मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रशंसा पत्र मेरे को दिया गया है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कलकत्ता में मेरे को सम्मानित किया गया है, तो 2022 में नारी शक्ति सम्मान मिला राष्ट्रपति जी द्वारा, और उस टाइम की खुशी ही अलग थी, क्योंकि ऐसे गांव की बेटी होना और ऐसे छोटे गांव ससुराल से निकलना और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी,
0: बहुत गर्व की बात है।
1: और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी बहने हैं, काम करें, जो भी काम है, कोई काम छोटा नहीं होता, मन लगा के करें। और परिवार वाले मतलब उनको अगर सपोर्ट करते हैं तो महिलाएं की जो उत्साह है वो दोगुना हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर कमी नहीं होती, जोश और जुनून और जज्बा उनके कूट के भरा है, कुछ करके दिखाना भी अलग बात होती है। यही मैं कहना चाहूंगी, हार नहीं माननी चाहिए।
0: सफल उद्यमी बनना है तो हम अपनी बहनों को यही कहना चाहेंगे कि अपने मन में आस रखनी है, विश्वास रखना है और ये हौसला बुलंद रखना है कि मैं उस पद पर पहुंच ही जाऊंगी जो मैंने सोचा है। आज हमारे बीच में पूजा शर्मा जी हैं और ये महिला उद्यमी हैं, इनसे इन्हीं के बारे में हमने बातचीत की है और जो इन्होंने हमसे विचार साझा किए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बहनें इससे लाभ अवश्य उठाएंगी। पूजा जी, आप यहाँ पर आई और हमारी बहनों को इतने उत्तम विचार दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रीति
1: जी,
2: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये बातचीत का विषय था स्वयं सहायता समूह द्वारा मूल्य संवर्धित उत्पादकों का विपणन, और इसमें जो जानकारी दे रही थी महिला उद्यमी पूजा शर्मा और इनसे बातचीत कर रही थी कमलेश मुदगल।
3: और इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी ग्रामीण भाइयों बहनों को राम राम, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7 बजने ही वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसवां डांगो आपोसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जाहरिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। लोकेंद्र भाई
1: हाँ प्रीति बहन।
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और कार्यक्रम में जानकारी होगी, मनोरंजन भी होगा। तो आइए सबसे पहले जानकारी देते हैं।
1: देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी हमारे किसान भाई बहनों के लिए योजनाएं चलाई हैं,
0: जी,
1: जिसमें से एक योजना है किसान उत्पादक संगठन। इसमें क्या है हम अपने भाइयों को भी बता देते हैं। प्रीति बहन क्या
0: जी,
1: क्या है बताइए।
0: इसमें जैसे कि किसानों द्वारा बनाया गया एक ये पंजीकृत संगठन है
1: हाँ
0: और इसका जो मकसद है वो छोटे और सीमांत किसानों को संगठित करके उनकी आय को बढ़ाना और खेती को और अधिक लाभदायक बनाना है।
1: हाँ और इसका जो उद्देश्य है वो मैं बता देता हूँ।
0: जी
1: छोटे किसानों को एक मंच पर लाना है, खेती की लागत कम करना है, बीज खाद और कृषि उपकरण उचित कीमत पर उपलब्ध कराना है, किसानों की उपज का बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन करना है, किसानों को उनकी उपज और उचित मूल्य दिलाना है।
0: जी बिल्कुल। और इसके लिए हम योग्यता भी बता दें कि सामान्यतः किसी क्षेत्र के कम से कम 300 किसान या फिर 100 किसान मिलकर FPO बनाते हैं और फिर वो संख्या राज्य और परिस्थितियों के अनुसार बदली जा सकती है।
1: बिल्कुल
0: और इसका महत्व ये है कि किसानों की आय, जैसे कि हमने बताया, कि बढ़ोतरी होगी और जो बिचौलिए हैं
1: हाँ
0: उन
1: हाँ
0: पर भी निर्भरता कम होगी।
1: बिल्कुल। ये तो रही योजना, तो अब हम भाइयों को एक जानकारी दिलवाते हैं, जानकारी संध्या गुप्ता से। उन्होंने जो हमारे किसान भाई हैं, जो अनुभवी किसान हैं, उनसे अपने उनके अनुभवों को साझा किया, और वो है औषधीय फसलों की खेती। उन्होंने जो हमारे किसान भाई हैं, उन्होंने क्या क्या अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया, आइए सुनते हैं।
2: जब भी हम अपनी बहनों से बातें करने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं, उनसे अपने विचार साझा करने आते हैं, तो प्रयास हमेशा यही रहता है, नित नयापन लेकर आए अपने कार्यक्रम में। आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित कराया है पूजा शर्मा को, जो महिला उद्यमी है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। पूजा जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहला मैं अपने भाणाता यहाँ निबूझना चाहूंगी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उससे के मतलब निकाले मारी बहन।
3: सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह, जो गांव की महिलाएं इकट्ठी होके एक समूह बनाती हैं, जिसमें कम से कम 10 महिलाएं और ज्यादा से ज्यादा 15 महिलाएं होती हैं, जो मिलकर एक समूह बनाती हैं। और जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में स्कीम है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उससे हमने अपने सभी समूह को जोड़ा है। और समूह बनाने के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार करती है।
2: जी, तो क्या उसी गांव की महिला होनी चाहिए या उस गांव से बाहर के, जिस तरह कह रहे हैं भैया 5 गांव की पंचायत है या 10 गांव के लोग हैं, तो ईसा भी कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ है।
3: सारे गांव की ही बहने समूह में हो सकती हैं, लेकिन मैंने एक रिक्वेस्ट करी।
4: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। कृषि समाचार दर्शन के आज के अंक में औषधीय फसलों की खेती करने वाले किसान अपने अनुभव साझा कर रहे हैं।
5: मेरा नाम उत्कृष्ट पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के हजौना गांव का निवासी हूं। बताना चाहूंगा कि मैं पैरामिलिट्री में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट 5.5

0: साल देश की सेवा किया हूँ। रिटायरमेंट लेकर मैं अपने गांव भदौना में खेती करने के लिए वापस आया, जो मकसद था। शुरुआत चंदन की खेती से की थी 2018-19 में। आज हमारे बाग में लगभग 2500 पौधे चंदन के हैं। हम लोगों ने एक सैंडलवुड बेस्ड एक एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल बनाया, जिसको ऋषिग्राम के नाम से हम लोग प्रमोट करते हैं। हल्दी प्लस कुछ दुर्लभ औषधियों की खेती भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चंदन एक औषधीय पौधा है। उसके साथ जो हल्दी हम उगाते हैं, हल्दी की विशिष्ट वरायटी लाकडोंग हल्दी है, जो मेघालय की है, जो दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी मानी जाती है। एक काली हल्दी होती है, जो भी एक औषधि है, आयुर्वेद में उसका यूज होता है। तीसरा हमारे पास एक कस्तूरी हल्दी है, जो केरला फॉरेस्ट की है, वो फेस पैक में काम आता है। पूरी जो हमारी खेती है वो प्राकृतिक खेती पर आधारित है। हम लोग देसी गायें रखते हैं। रासायनिक उर्वरकों के बदले हम इसी चीजों को बनाकर हम अपने खेत को मैनेज करते हैं। और ऋषिग्राम के नाम से ही हम लोग अपने प्रोडक्ट भी बनाते हैं। देसी गाय का घी बनाते हैं, पूरा देसी तरीके से उसको प्रोसेसिंग भी करते हैं। हमारे फार्म पर हम लोग किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, किस तरीके से आप जैविक खेती कर सकते हैं और चंदन की खेती को किस तरीके से उत्तर भारत में आप लगा सकते हैं। चंदन की खेती शुरुआत करने के पहले मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक संस्थान है, IWST, वहां पर जाकर इसकी ट्रेनिंग ली थी कि क्या हमारे उत्तर भारत की जलवायु उसके लिए सूटेबल है। वहां के वैज्ञानिकों ने बताया सफेद चंदन कहीं भी हो सकता है, तो हम लोग उसको यहाँ पर उगाना प्रारंभ किए। और हमारे खेत में लगभग 2500 पौधे हैं। हमारे पास चंदन की नर्सरी होती है, और जितनी भी हल्दी है उसके सीड भी होते हैं। उसको हम लोग अपने फार्म पर प्रोसेस करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, और अपने ई कॉमर्स ऋषिग्राम से हम लोग उसको सेल भी करते हैं। जहाँ तक किसान भाइयों की बात है, किसानों को हम लोग अपने फार्म पर अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारे फार्म पर आता है, देखता है, विजिट करता है, उनको हम लोग सारी चीजें बताते हैं। सही जगह से सही जानकारी लोगों को मिले, पौध मिले, सही बीज मिले। भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, वहां से बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार, बहुत सारी जानकारी लोगों को मिलती है। उसी का एक उत्तर भारत में जिससे हम लोग संपर्क में रहते हैं, वो RCFC जोगिंदर नगर है, हिमाचल प्रदेश। वहां से हम लोगों को सहायता मिल जाती है। भविष्य की योजना हमारी ये है कि हम चंदन और जो भी हल्दियों की खेती कर रहे हैं या औषधियों की खेती जो भी कर रहे हैं, उसको हम बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और हम हर किसान के पास ये चाहते हैं, हर घर में चंदन का पेड़ हो। हमारा एक मुहिम है हर घर चंदन का। तो एटलीस्ट किसी के घर में अगर 4 से 10 पेड़ चंदन रहता है, तो उसके लिए एक एसेट होता है। बहुत सारे सामाजिक दायित्व होते हैं एक किसान को। अगर उसको एक मुफ्त 5-10 लाख रुपए मिल जाता है 3-4 चंदन के पेड़ों से, तो उसकी बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाती है। उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके घर के लिए, उसके मकान के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उसके पास एक पूंजी होगी। चंदन की साबुन बने, चंदन की अगरबत्तियां बने, चंदन की धूप बत्ती बने। थोड़ा और लेवल पे जाएंगे तो हम लोग चंदन का ऑयल एक्सट्रैक्ट करके भी मार्केट कर सकते हैं, जो हमारे ग्रामीण भारत की समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगा, मुझे लगता है।
1: मैं पुष्कर सिंह बिस्ट से नंदानगर जनपद चमोली से हूँ। हम लोग अभी हाई एल्टीट्यूड में कुटकी की खेती करते हैं। कूट है, पुष्कर मूल, तगर, जटामासी, कपूर कचरी, रोजमेरी, लेवेंडर, चिरायता, तुलसी, औषधिया खेती। ऑर्गेनिक के थ्रू हम लोग जो है कि अलग अलग क्लाइमेट में जड़ी बूटी उगाते हैं खेतों में, वैज्ञानिक तकनीक ढंग से करते हैं। उसके बाद उसको जब तैयार होता है, किसानों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, किसानों को उसकी पैकेजिंग सिखाते हैं, ग्रेडिंग सिखाते हैं, कि किस तरह से उसको मार्केटिंग लॉन्च किया जाता है, उस मार्केटिंग तक उसको पहुंचाते हैं हम लोग। हम लोग इसका जब खेती करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं प्रत्येक फसल का, कि कितने नाली में कौन सी क्रॉप होगी, उस कितने हेक्टेयर में होगा और उसका उत्पादन कितना निकलेगा। सरकार उसका पंजीकरण कराती है। उस जिस खेत में जो क्रॉप होगी उसके डॉक्यूमेंट लगे होते हैं, आधार कार्ड हो गया, खसरा खतनी हो गया, और सरकार की जो संस्था होती है हर्बल रिसर्च सेंटर, वो उसमें जो है कि सत्यापन कराने के बाद क्रॉप हमारे नाप लेन पे हो। उसके बाद उसको सरकार वही मदद करती है कि जब माल बेचते हैं तो उसका एक रमना बनाते हैं निकासी। प्रेजेंट टाइम पे हमारा 18 हेक्टेयर में कुटकी है, तो उस कुटकी को हम लगाते हैं। लगाने के बाद उसका 2 साल तक रेगुलर मॉनिटरिंग कराते हैं, उसे कीड़ा न लगे। अगर कीड़ा लग गया तो हम लोग ऑर्गेनिक की ही गाँव में जो है कि दवाई तैयार करते हैं, गौमूत्र से, अखरोट के खाल से, जो गाँव का होता है। उसके बाद जब वो तैयार होता है, उसको हम पहले कल्टीवेशन खेत से करते हैं, फिर उसको वाशिंग कराते हैं अपने यहाँ पे, वो ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसकी ग्रेडिंग कराते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड बनाते हैं, और ग्रेडिंग करने के बाद उस ग्रेडिंग को हमारी महिला ही बनाती, ग्रुप वाली से ग्रेडिंग करते हैं, और पैकेजिंग करके हम उसको बाहर इंडस्ट्री को देते हैं। जैसे आपका झांसी में इंडस्ट्री है, कलकत्ता में हो गया, बेंगलुरु में हो गया, दिल्ली में हो गया, इन जगह हम उसको जो है कि जैसे जैसे डिमांड आती है तो उसको सप्लाई देते हैं। कोई भी क्रॉप, आपके कुटकी हमारी है, पुष्कर मूल है, कपूर कचरी, चटामासी, लेवेंडर है, रोजमेरी है, तगर है।

0: जितने भी हम जड़ी बूटी करते हैं उसको खुदाई से पहले हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट का हर्बल रिसर्च सेंटर के आदमी से सत्यापन कराते हैं। हम अप्लीकेशन देते हैं कि भैया हम माल खोदने वाले हैं, आप एक बार मॉनिटरिंग करा दीजिए। वो भी सत्यापन करते हैं, एक लिखते हैं कि भाई इसमें लगभग इतना माल तैयार होगा। खुदाई के बाद फिर दोबारा जब माल पैकेजिंग होता है तो फॉरेस्ट वाले से सत्यापन करेंगे, उसके बाद हमको रवाना मिलता है निकासी, उसके बाद हम कंपनी को माल पहुंचाते हैं। प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, सही मौसम रहता है, तो हमारा जो है कि 30-70 का एक रेशियो जड़ी बूटी बनता है। अगर 30,000 हमने लगाया है तो 70,000 रुपये उसका लाभ निकल जाता है 2 साल में। हम बाकी किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है या प्लेन का एरिया है, 1200-1800 मीटर पे जो गांव होते हैं, जो किसान होते हैं, जहाँ पे बेसिकली अब जंगली जानवर फसलों को बहुत नुकसान करते हैं, तो हम चाहते हैं कि औषधीय में नुकसान नहीं होता। औषधीय खेती अगर आदमी करे तो उसे एक परिवार की आजीविका तो चलती है, लेकिन एक बहुत बढ़िया आय का स्रोत तो रेगुलर बन जाता है जड़ी बूटी में। हमने तो क्लस्टर स्टार्ट किया था, आज हम लोग उत्तराखंड के 5-6 डिस्ट्रिक्ट में किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, फिर और पोस्ट पौध देते हैं, और उन्हीं किसानों से हम बाय बैक वापस भी लेते हैं। औषधि में अगर हम औषधि करते हैं तो हम कभी ऐसा भी हमारा चलता है, इंटरनल जो क्रॉप है अगर पेरिनियल में अगर हमने कुटकी लगाई है या रोज मेरे हमने लगाई है, तो वो होता क्या उसके बीच में जो 1 फीट का डिस्टेंस छूटता है, हम कहते हैं इसमें आप जो है कि हल्का सा कैमोमाइल लगा दो। कैमोमाइल की आज मार्केट में बहुत डिमांड है, वो 500-700 रुपए किलो बिक जाता है। तो हम क्या करते हैं कि वो 3 महीने की क्रॉप है, 3-4 महीने में जल्दी तैयार हो जाता है, तो हम उसको बीच में वो पेरिनियल क्रॉप लगाते हैं, और किसान का लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में इनकम आ जाती है बीच में, जो लंबा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बीच में किसान की इनकम बढ़ जाती है। हम तो ये कहेंगे किसानों को कि अधिक से अधिक मात्रा में जड़ी, क्योंकि जड़ी बूटी का आज बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट तो है ही, क्योंकि दो काम है वो, एक तो स्वास्थ्य के लिए भी है, दूसरा हम किसी के स्वास्थ्य के लिए भी काम कर रहे हैं साथ साथ सोशल वर्क में। एक अपना लक्ष्य रखा है कि उत्तराखंड के जितने हाई एल्टीट्यूड के क्षेत्र हैं कि हम लोग जो है कम से कम किसानों को जो है कि 100% जोड़ेंगे जड़ी बूटी में किसी न किसी क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि जहाँ पर कुटकी होती है वहाँ सब होता है, जहाँ पर जो क्रॉप होती है जड़ी बूटी में, कोई कम एल्टीट्यूड में कोई ज्यादा एल्टीट्यूड, तो हम हर प्रकार के क्रॉप किसानों को दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि आने वाला फ्यूचर हमारा हर किसान के घर में कम से कम 50,000 रुपये सालाना इनकम जड़ी बूटी से जाए।
1: मेरा नाम नीरज शर्मा है। मैं जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का एक औषधि किसान उत्पादक हूँ, जिसमें मैं औषधि के रूप में अश्वगंधा, अकरकरा, कलौंजी, सतावर, सफेद मूसली, चिया की खेती करता हूँ। मुख्य रूप से अश्वगंधा को पाउडर के रूप में प्रोसेसिंग करता हूँ। अश्वगंधा की प्रति एकड़ बीज दर जो जाती है 8 किलो प्रति एकड़। एक एकड़ में इसका उत्पादन है 6 से 8 क्विंटल तक जड़ निकल जाता है। औषधि फसलों में मुख्य रूप से अच्छा यदि प्रॉफिट मिलता है हमको तो अश्वगंधा के रूप में मिलता है, जिसमें 75,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक प्रति एकड़ का उत्पादन मुझे मिल जाता है। इसके साथ साथ अकरकरा और चिया की फसल, जो कि अकरकरा में भी 4 से 5 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है, इसका उत्पादन 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ आता है। इसका बाजार भाव जो है लगभग 15,000 रुपए क्विंटल से लेकर 20,000 रुपए क्विंटल तक जाता है। 4 किलो प्रति एकड़ लगता है, इसका उत्पादक जो है 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ जाता है। इसका बाजार भाव 15,000 रुपए क्विंटल से लेके 24,000 रुपए क्विंटल तक रहता है। मैं पिछले 5 से 6 साल पहले से औषधि फसल की खेती कर रहा हूँ। मेरे मन में विचार पहले से ही था कि मैं और कुछ औषधि फसलों की खेती करूँ, तो इसके लिए मैंने RCFC रिसर्च सेंटर जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में फिर गया वहाँ RCFC रिसर्च सेंटर जबलपुर, और उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिए अपने से। अश्वगंधा हुआ, सर्पगंधा हुआ, सतावर हुआ, सफेद मूसली। जैसे अश्वगंधा की फसल देखें तो हम लगभग 140 से 160 दिन की फसल है। 140 दिन के बाद में हम इसकी जो जड़ें हैं वो उखाड़ के और साफ करवा के और बराबर सुखा के इसका पाउडर फॉर्म में बढ़िया ले सकते। ऐसे ही जैसे अकरकरा हुआ, अकरकरा की भी जड़ निकलती है, तो अकरकरा का ये 140 से 150 दिन के बाद में हम उसको उखाड़ के छांव में सुखा के और पाउडर फॉर्म की जो जड़ें रहती हैं उस कंडीशन में निकाल के सुखा लेते हैं। चिया 150 से लेके 180 दिन की फसल है, ये 180 दिन में पक के तैयार हो जाता है। मेरे पास में टोटल एरिया 3.5 से 4 एकड़ है, तो लगभग मैं सबसे अधिक अश्वगंधा उसमें लगाता हूँ 2 से 2.5 एकड़ में, बाकी आधा आधा एकड़ में 2-3 फसलें और लगाता हूँ। कुछ बहुवर्षीय फसलें भी हैं इसमें,

0: जैसे सतावर हुआ, सफेद मूसली हुई, सर्पगंधा हुआ, तो इनको बहुत कम एरिया में हम लगाते हैं। 18 से 24 माह की फसल है तो उसको लगभग 25 डिसमिल से आधा एकड़ में लगाते हैं। इससे हमको ये रहता है कि जैसे हम कम दिनों की फसल भी हमको प्राप्त हो जाती है, और अश्वगंधा में यदि हमको लॉस हो रहा है तो ये जो फसलें हैं इनसे हमको उसकी पूर्ति हो जाती है।
1: मेरा नाम सचिवाला है। मैं ग्राम पंचायत धिनेनी से हूँ। मेरा जिला सीतापुर, ब्लॉक बिसवा। मैं औषधीय खेती करती हूँ। मैं 2 साल कर रही हूँ। पहले मैंने अपराजिता का फूल लगाया था, अन्नदाता प्रोजेक्ट से वहाँ से बिल लिया था। इस समय मेरा अपराजिता लगा है। उधर मई जून में लगाया था ब्लूकार्न। मैंने 2 बीघे लगाया था, लगभग 1-1 लाख का हुआ था वो। तो लहसुन और आलू और गन्ना मेरे पति बोते थे। उसमें हमारा परिवार का खर्चा भी नहीं चल पाता था, उसमें जो है आमदनी भी नहीं होती थी ना। ये प्रोजेक्ट चालू किया और इसमें हमको अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, और ये औषधि खेती, इसमें बिक्री भी अच्छी हो जाती है, हमको पैसे भी अपने मनमाने मिल जाते हैं इसमें। हम लोगों ने मार्च में इसका बीज बोया था पहले, फिर इसमें लगभग तीसरे दिन पानी लगाते रहते हैं और इसकी घास फूस सब साफ करते रहते हैं। फिर 1 महीने में इसका पेड़ तैयार हो जाता है। 1 महीने के बाद हम लोग इसकी रोपाई कर देते हैं खेत में। रोपाई करने के बाद फिर उसको सफाई करते रहते हैं, घास वास उसमें हटाते रहते हैं और नाले भी बनवा देते हैं। फिर उसमें जैसे फूल का पेड़ लगभग 1 बित्ते का होता है, बस वो अपने आप उसमें 1-2 फूल, 4 फूल, 5 फूल आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे करके उसमें फूल लगने लगे। ज्यादा मेहनत भी नहीं है, ज्यादा कोई दवा पानी भी नहीं इसमें। अगर हम डालते हैं तो वही गौमूत्र का 10 परणी अर्क बना के डाल देते हैं। अपराजिता की फसल बहुत लंबी है। ये जुलाई है, जुलाई से हमारे चालू हो गए हैं, और जुलाई से लेके हमारे अरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक अच्छे फूल लगते हैं। फिर उसके बाद जब दिसंबर आता है थोड़ा डाउन हो जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये डाउन रहते हैं। अगर हम अपने पुराने पेड़ रखते हैं तो हमारे उधर जैसे ही मार्च लगता है वैसे फूल इसमें लगने लगते हैं। अगर नहीं रखते हैं तो समय लगता है इसमें नए पेड़ बनाने में इसको। अगर पुराने पेड़ हम रखे हैं तो हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें होगा। हमको पहले नहीं पता था, हमने लगभग 10-15 पेड़ पुराने रखे थे। उसमें वैसे मार्च चालू हुआ, बस उसमें फूल लगने लगे, और हमने अपना 15 किलो फूल उसी पेड़ से अब तक इकट्ठे कर दिए। मैंने 1.5 बीघे का अपराजिता लगाया है इस बार, और पिछले साल मैंने लगभग 10 विसुआ लगाया था। उसमें हमारा 40,000 का अपराजिता हुआ था। लगभग 80 किलो हमने निकाला था उसमें से फूल। हम लोगों को कोई कीटा कीड़ा उड़ा लगने लगा तो हम वही गौमूत्र में 10 परणी, 10 पत्तियों का बना के, जैसे गांजा है, धतूरा है, नीम की पत्ती है, कनेल की पत्ती है, इस तरह की 10 पत्ती उसमें डाल देते हैं। गौमूत्र में डाल के उसको 10 दिन रख के फिर उसको 1 लीटर उसका और पूरी टंकी पानी में छिड़कवा देते हैं। ब्लूकार्न का बीज फरवरी में बोया जाता है। उसका पेड़ लगभग 1 महीने बाद तैयार हो जाता है। उसको हम मार्च में रोपाई कर देते हैं। उसकी 1 महीने के बाद उसका पेड़ लगाने योग्य हो जाता है। उसके बाद हम 1 महीने के बाद अप्रैल में रोपाई कर देते हैं। जैसे 1 हाथ का पेड़ होता है, बस वो उसमें फूल आने लगते हैं। ये ज्यादा नहीं, 2 महीने चलता है सिर्फ। हमारा खर्चा भी निकल आता है। लेबर हमारे 250 रुपए पे रहते हैं। हमारा ये 450 का इस बार बिका था केजी का। ब्लूकार्न जो है इसका पेड़ बहुत लंबा होता है। इसको खड़े खड़े हम लोग तोड़ते हैं और इसमें जगह नाला बना के रखते हैं, फिर भी इसमें जगह नहीं रह जाती है। इसमें दूसरी, पहले तो लगता है दूसरी फसल हो जाएगी, लेकिन जब पेड़ तैयार हो जाता है तो नहीं होती है कोई फसल। और ये जो अपराजिता का पेड़ है इसमें भी दूसरी फसल नहीं होती, क्योंकि इसका पेड़ फैलता बहुत है। इनको दिक्कत नहीं है मैम, हमारे हिसाब से तो सब लोग इसकी खेती करें, बहुत अच्छा है। औषधीय खेती है, आयुर्वेदिक दवा में जाता है सब।
2: कृषि समाचार दर्शन का यह अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ मैं संध्या आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: तो किसान भाइयों, अभी आपने कृषि समाचार दर्शन के तहत ये कार्यक्रम सुना, जिसमें आपने जाना कि आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण है और उससे जुड़ी जो औषधीय जो फसल हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कई चिकित्सा में हमारे काम आती हैं। तो ये जानकारी संध्या गुप्ता की। और आइए अब आपको जानकारी दिलवाते हैं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया, और इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की। आइए सुनवाते हैं आपको ये जानकारी।
4: आईसीआर

0: भी भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है और आज भी हमारी लगभग आधी आबादी को रोजगार मिलता है, हमारे किसान हो, खेती पे काम करने वाले बाकी साथी हो। और इसलिए आज हमने आग्रह किया कि जो CSR का हिस्सा है, कॉरपोरेट सेक्टर को एक कानून बना के देने की व्यवस्था की है, तो उसका एक हिस्सा खेती को भी मिले। खेती को काफ़ी कम मिलता है, एग्रीकल्चर से संबंधित गतिविधियों के लिए, जैसे क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर के लिए अगर कोई किया जा सकता हो, कोई प्रयोग कर रहे हो उसमें सहयोग, मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने में सहयोग, AI मशीन लर्निंग जो आधुनिक खोज और टेक्नोलॉजी जिसका लाभ कृषि को मिल सकता है उसमें आए, कैसे पोषण युक्त आहार मिले उसके क्षेत्र में भी उनका पैसा लग सकता है, नए स्टार्टअप्स के लिए, AI के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो कृषि से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उस पर CSR का वो पैसा लगाएं, ये आग्रह किया है। और कई लोगों ने यहाँ कमिटमेंट किया है कि वो CSR में खेती को प्रधानता दें। जो समझौते हुए हैं UK के साथ हुआ है या इसके पहले यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, ये हमारे देश के लिए, देश में कृषि के लिए भी और बाकी सेक्टर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझौते न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे जिसका लाभ खेती को भी मिलेगा, बल्कि इन समझौतों से भारत में हमारे उद्योग, हमारे व्यापार जगत, उनको एक नई ताकत मिलेगी। इन समझौते के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ।
1: तो अभी आपने जानकारी सुनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया और इसके तहत माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी साझा की जो कि कृषि से जुड़ी थी और इसमें स्टार्टअप्स की बात कही, AI की बात कही, जिससे कि जो समझौतों की बात की उससे जो हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो और प्रगति करेगा, उसका और प्रसार होगा।
2: बिल्कुल प्रीति बहन, देखिए और हम अपने भाइयों को बता दें कि बरसात का मौसम चल रहा है, इस मौसम में हमें अपने पशुओं की विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि बरसात के मौसम में जो नमी, कीचड़ और संक्रमण के कारण पशुओं में जो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है उसमें विशेष रूप से उनका ध्यान देना है। और इसके साथ मुख्य सावधानी भी बरतनी है, हम वो भी अपने भाइयों के साथ साझा कर देते हैं। पशुओं को साफ सुथरे, सूखे और हवादार बाड़े में रखें, बाड़े में जो जलभराव और कीचड़ में ना हो और उसका जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको भी साफ सफाई के तहत निकालते रहें समय समय पर। पीने के लिए स्वच्छ और ताज़ा पानी उपलब्ध कराएं, संतुलित आहार दें तथा इसके अलावा जो गीला और फफूंदी लगा चारा उनको ना खिलाएं। पशुओं को बारिश में अधिक देर तक भीगने ना दें और भीगने से उन्हें अच्छी तरह से, जो भीग जाते हैं उनको अच्छी तरह से साफ सफाई रखें।
1: जी बिल्कुल, और कहने का तात्पर्य यही है कि जो पशुधन है वो हमारी कृषि की रीढ़ है, तो उसका ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है कि उनका समय समय पर चेकअप कराएं ताकि उनको अगर किसी तरह की दिक्कत है, क्योंकि बरसात का समय है, कीटाणु आसपास होते हैं, मिट्टी जो होती है वो गीली होती है तो खुरपका उनको होने की संभावना रहती है, तो ये जो छोटे मोटे रोग हैं कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी रहता है कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, तो उसका ध्यान देना भी एक जो कृषि कृषक है उसका ही रहता है, तो हाँ। उसको ध्यान दे और इस तरह की कोई समस्या हो तो उसका समय रहते उपचार करें।
2: बिल्कुल पृथ्वी,
1: तो इसी के साथ अभी जो हमारा कार्यक्रम कृषि जगत है वो यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम, राम। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गजल एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। आरंभ में आइए सुनते हैं कव्वाली मोहम्मद रफी की आवाज में।

जरा अपनी सूरत दिखा दे, समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: आप सुन रहे थे गजल एवं कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली कैबिनेट ने समयबद्ध सरकारी सेवाओं के अधिकार संबंधी ऐतिहासिक विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने और यमुना नदी को बचाने के लिए दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने समझौता किया। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए नई महिला विशेष इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं की लगभग 1,30,000 छात्राओं को इस महीने से मुफ्त साइकिल मिलेगी और दिल्ली यातायात पुलिस ने भारत मंडपम में भारत टेक्स आयोजन के लिए यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली कैबिनेट ने नागरिकों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए दिल्ली विधेयक 2026 नागरिकों का समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस विधेयक में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट दंडात्मक व्यवस्था की गई है। साथ ही बिना उचित कारण के सेवा प्रदान करने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन ₹250 का दंड, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,000 तक लगाया जा सकेगा। हालांकि किसी भी अधिकारी पर दंड लगाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर मिलेगा, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अधिसूचित सरकारी सेवाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी कर यह निर्धारित करेगी कि कौन कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में होंगी। साथ ही आवेदक से लेकर सेवा प्राप्त होने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि कोई नामित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो नागरिक को अलग से अपील दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। मामला स्वतः नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील के रूप में पहुंच जाएगा। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक विभाग में नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण नियुक्त किए जाएंगे और एक स्वतंत्र वैधानिक दिल्ली राइट टू सर्विस आयोग का गठन भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकारी विभागों और अधिकारियों को सेवा प्रदान करने में होने वाली देरी और लापरवाही के लिए अधिक जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यह कानून राजधानी में प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और नागरिकों को अधिक पारदर्शी, सरल, प्रभावी तथा तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराने में मील का पत्थर बनेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक वर्ष 2011 के दिल्ली नागरिकों का समयबद्ध सेवा प्रदान का अधिकार अधिनियम का स्थान लेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है।
3: इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। यमुना के किनारे कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन भी किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मीनेश सी शाह ने समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सशक्त और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली को 2,800 नई वातानुकूलित लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इन बसों को PME ड्राइव योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई बसें अंतिम गंतव्य तक संपर्क सुविधा बेहतर करेंगी और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में सौश्रुतम 2026 के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
4: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और

0: वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: औषधीय पौधों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नवाचार, संवर्धन, कटाई के बाद की तकनीक, सस्टेनेबल पैकेजिंग, तकनीक हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के लिए लंबे समय की साझेदारी बनाना है। साथ ही देश के औषधीय पौधों के समृद्ध संसाधनों के सतत प्रयोग और संरक्षण को बढ़ावा देना भी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और आरामदायक सार्वजनिक यातायात सुनिश्चित करने के लिए नई महिला विशेष इलेक्ट्रिक बस नेटवर्क शुरू करने का फैसला किया है। ये पहल कामकाजी महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं के दैनिक यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे उन्हें शहर के सबसे व्यस्त रास्तों पर सुबह और शाम के व्यस्ततम समय के दौरान बिना किसी रुकावट के आरामदायक सफर की सुविधा मिल सके।
2: इस प्रस्तावित नेटवर्क के अंतर्गत महिलाओं के लिए विशेष तौर पर 56 समर्पित इलेक्ट्रिक बस सर्विस शामिल हैं। इनमें राजधानी के 15 प्रमुख व्यस्त रूट पर महिलाओं के लिए 30 विशेष बस सेवाएं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ कैंपस समेत दूसरे बड़े शिक्षण संस्थानों और प्रमुख रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली 13 समर्पित रूटों पर 26 यूनिवर्सिटी लेडीज स्पेशल बस सेवाएं शामिल हैं। इस अवसर पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत करना और रेगुलर बस सेवाओं में भीड़ भाड़ को कम करना है। उन्होंने बताया कि इन रूटों की पहचान उन कॉरिडोर के आधार पर किया गया है जहां महिला यात्रियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, जिससे उनकी दैनिक यात्रा और रोजाना आने जाने की जरूरतों को सही और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। परिवहन मंत्री ने कहा कि हर बस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सर्विलांस, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से सीधे जुड़े हुए पैनिक बटन, दिव्यांग जनों के लिए लो फ्लोर रैंप और जरूरत पड़ने पर बस मार्शल और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्राची प्रिया।
1: दिल्ली सरकार इस महीने से कक्षा 9 की लगभग 130,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरित करना शुरू करेगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पहल छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि साइकिल से स्कूल तक का सफर आसान होगा, नियमित उपस्थिति को बढ़ावा मिलेगा और ये सुनिश्चित होगा कि किसी भी लड़की की शिक्षा दूरी के कारण बाधित न हो। दिल्ली सरकार हर बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जुलाई महीने को पॉक्सो जागरूकता महीने के रूप में मना रही है। इसके अंतर्गत 25 जुलाई को पहली बार बच्चों की सुरक्षा पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने ये जानकारी दी। श्री सूद ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के बीच बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सीधा संवाद होगा। साथ ही पॉक्सो, साइबर सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता और संवाद के माध्यम से सरकार बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 वर्ष पूर्व शुरू किए गए साइंस ऑफ हैप्पीनेस कोर्स को अभी तक 2000 से अधिक विद्यार्थी अपना चुके हैं। इस मूल्य संवर्धन कोर्स को DU के 17 कॉलेजों और एक विभाग द्वारा अपनाया गया है। इस अवसर पर आज दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में इन सभी संस्थानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रधानाध्यापकों और संबंधित अधिकारियों ने कोर्स को लेकर अपने अनुभव साझा किए। कुलपति ने पाठ्यक्रम की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रसन्न रहना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये तभी संभव है जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद विकास टांक आज भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और चांदनी चौक से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल की उपस्थिति में श्री टांक ने भाजपा की सदस्यता ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप

0: हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज पूरे विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने युवाओं को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि युवाओं का कौशल विकास ही आत्मनिर्भर भारत और विकसित दिल्ली की नींव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को अच्छी गुणवत्ता का कौशल प्रदान करने और उनके लिए नए अवसर पैदा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार युवाओं को यूथ फॉर गवर्नेंस प्रोग्राम, विकसित दिल्ली सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, आईटीआई को अपग्रेड करने, एआई और रोबोटिक्स आधारित लर्निंग और सीएम श्री स्कूलों में आईसीटी लैब्स जैसी पहलों के जरिए सशक्त बना रही है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है, ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी के भारत मंडपम में चल रहे भारत टेक्स के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक मथुरा रोड, भैरव मार्ग और आसपास के इलाकों में किसी भी गाड़ी को रोकने या पार्क करने की इजाजत नहीं होगी। इन सड़कों पर गलत तरीके से पार्किंग करने और निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ISBT, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें और जहां भी संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यातायात पुलिस ने नागरिकों से रिंग रोड का उपयोग करने की सलाह दी है। राजधानी दिल्ली के हौज खास में कल आयोजित होने वाले 48वीं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि कल दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक बलबीर सक्सेना मार्ग, चौधरी दिलीप सिंह मार्ग, चौधरी हुकुमचंद मार्ग और गौतम नगर रोड पर यातायात बाधित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से मुख्य सड़कों और जुलूस के रास्ते के पास गाड़ियां पार्क करने से बचने की सलाह दी है। सरकार ने उस सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। अधिकतम तापमान कल 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी को देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आज चंडीगढ़ में हरियाणा ई वाहन नीति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम और फरीदाबाद की जरूरतों को देखते हुए हरियाणा ई वाहन नीति 2022 में दिल्ली की तर्ज पर आवश्यक संशोधन किए जाने पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली कैबिनेट ने समयबद्ध सरकारी सेवाओं के अधिकार संबंधी विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने और यमुना नदी को बचाने के लिए दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने समझौता किया। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए नई महिला विशेष इलेक्ट्रिक बसें चलाएगी। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं की लगभग 1,30,000 छात्राओं को इस महीने में मुफ्त साइकिल मिलेगी। और दिल्ली यातायात पुलिस ने भारत मंडपम में भारत टैक्स आयोजन के लिए यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। आरंभ में आइए सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का ये गीत। गायक कलाकार हैं मोहित चौहान।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मालिका हम आपको पुनः सुनवाएंगे रात्रि 8:30 पर।
1: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन।
2: करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का जीवंत स्वरूप एक अनुपम महापर्व है पूरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के समुद्र तट पर बसे पवित्र नगर पुरी में श्रद्धा का ऐसा महासागर उमड़ पड़ता है जिसकी भव्यता शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। वर्ष भर भगवान मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन देते हैं, परंतु वर्ष में एक बार स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आने के लिए आतुर होते हैं। यही है भगवान और भक्त के मिलन का उत्सव।

0: सनातन संस्कृति का गौरव और मानवता के प्रति भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रेम का अद्भुत प्रतीक रथ यात्रा। 12वीं शताब्दी में निर्मित श्री जगन्नाथ जी का ये मंदिर केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन से तीनों रथों के निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। प्रतिवर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। सदियों से चली आ रही विधियों के अनुसार परंपरागत शिल्प कला में निपुण सैकड़ों कारीगर दिन रात परिश्रम करते हैं और आधुनिक मशीनों के युग में भी इन विशाल रथों का निर्माण परंपरागत तकनीकों से ही किया जाता है। तीनों में सबसे बड़े भगवान श्री जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। ये रथ 16 विशाल पहियों वाला है। पीले और लाल रंग के रेशमी कपड़े जरी आदि से सुंदर रूप से सजे इस रथ को गरुड़ ध्वज तथा कपित ध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलभद्र का रथ है ताल ध्वज, जो 14 पहियों का है और हरे व लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है, जबकि देवी सुभद्रा के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, जो 12 पहियों वाला सौम्य और आकर्षक रथ है। काले एवं लाल रंग के कपड़े इस रथ पर शोभायमान होते हैं। ये तीनों रथ केवल लकड़ी के बने ढांचे नहीं बल्कि चलते फिरते देवालय हैं। तीनों ठाकुरों को रथ यात्रा के दिन रथारूढ़ कराने से पहले श्री मंदिर के पुरोहित तीनों रथों की प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। श्री बलभद्र जी, चक्रराज सुदर्शन, माता सुभद्रा और श्री जगन्नाथ जी को एक विशेष प्रक्रिया से श्री मंदिर के गर्भगृह से बाहर लाया जाता है, जिसे पोहंडी विजय कहा जाता है। और जब शंखनाद, घंट ध्वनि और लाखों श्रद्धालुओं के कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ की गूंज उठती है तो पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं ईश्वर अपने भक्तों के बीच उतर आने को आतुर हों। रथ यात्रा के विषय में मूल तथ्य की जानकारी लेते हैं जगन्नाथ संस्कृति के जानकार डॉक्टर शांतनु कुमार रथ से।
1: महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा सारे विश्व में अनन्य है। ये इसीलिए अनन्य है कि यहाँ भक्त भगवान को नहीं स्वयं भगवान भक्तों को दर्शन करने के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पतित पावन यात्रा। इसका मतलब ये है कि संसार में आकर माया और संस्कार बस मनुष्य जो पतित हो जाता है, इन पतितों मनुष्यों को पावन करने के लिए महाप्रभु स्वयं ये यात्रा रचते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ ये हुआ कि रथ पर आरूढ़ महाप्रभु को दर्शन करने से मनुष्य को अपने अंदर विराजमान आत्मा का अनुभव हो जाता है। ये अनुभव ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराता है। रथ यात्रा के सारे क्षण ऐसा हो जाता है कि यह भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहता। ये ऐसे एक बिंदु है जहाँ दोनों समाहित हो जाते हैं। धर्म, जात, वर्ण, संप्रदाय विचार से ऊपर उठकर महाप्रभु जगन्नाथ सारे विश्व मानव को प्रेम करने का जो संदेश देते हैं, यही इस यात्रा का महत्व है। महाप्रभु कहते हैं कि मैं सभी को प्रेम करता हूँ, तुम भी करो। महाप्रभु का यह संदेश शत्रुभाव से सड़ता हुआ सारे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक भी है।
0: अपने अपने रथों पर जब तीनों ठाकुर विराजमान हो जाते हैं तब होता है रथ यात्रा का एक अत्यंत प्रेरणादायक अनुष्ठान, जिसे छेरा पोहरा कहते हैं। छेरा पोहरा विधि के पीछे के संदेश के बारे में अधिक

0: जानकारी लेते हैं रथ यात्रा के भाष्यकार श्री मोहन मजीठिया से।
1: दो शब्दों को मिलाकर छेरा पहरा नामकरण हुआ है। छेरा का अर्थ है चंदन का गाढ़ा घोल और पहरा का अर्थ है झाड़ू से साफ करना। ये एक विशेष नीति है जिसके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आद्य सेवक माने जाने वाले पुरी के गजपति महाराजा को सौभाग्य प्राप्त है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता जब रथों पर विराजमान हो जाते हैं तब गजपति महाराजा के पास संदेशा भेजा जाता है। महाराजा राजकीय वेशभूषा में एक स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में बैठकर प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं। रथारूढ़ ठाकुरों के दर्शन पूजा आरती के साथ साथ सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करते हैं। उसके बाद चंदन मिश्रित जल का सिंचन कर महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति संपन्न करते हैं। राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के समर्पण भाव को दर्शाती ये परंपरा प्रतीक है भक्ति का, विनम्रता का, समानता का। जहां राजा अपने पद प्रतिष्ठा के अहंकार को त्याग कर सेवक बन जाते हैं, क्योंकि जो जगत के नाथ हैं, जो जगत के सम्राट हैं, उनके आगे राजा हो या सामान्य व्यक्ति, सभी एक बराबर हैं, सभी उन्हीं के सेवक हैं।
2: हरि ओम तत्सत श्री श्री जगन्नाथ।
3: हरि ओम तत्सत श्री श्री जगन्नाथ।
0: जगन्नाथ संस्कृति में गोवर्धन मठ की विशेष भूमिका के बारे में बता रहे हैं गोवर्धन पीठ की आदित्य वाहिनी के प्रमुख श्री मातृ प्रसाद मिश्र।
4: आदि शंकराचार्य भगवान को ब्रह्मोद्धारक माना जाता है, क्योंकि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह 164 साल भूमिगत थे। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर दिग्विजय यात्रा में बृहद भारत को परिभ्राजक रूप में परिक्रमा करते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचने के बाद उनको कपा बल के मालूम हुआ कि जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह मंदिर के रत्न सिंहासन पर विराजमान नहीं है। उस समय आदि शंकराचार्य भगवान ने तत्कालिक राजा को आदेश देकर वनजाग पद्धति ने ब्रह्म को उद्धार किया। केवल ब्रह्म ही था, क्योंकि दारू विग्रह भूमिगत होते हुए क्षय हो गए थे। उसी वजह से आदि शंकराचार्य भगवान पुनः जगन्नाथ आदि चतुर्था विग्रह को रूप प्रदान किया। वही जगत गुरु जी जो मंदिर के सारी रीति नीति परंपरा पूजा व्यवस्थावली सब कुछ तय किए, भारत से कोने कोने से ब्राह्मणों को बुला के 16 शासन प्रतिष्ठा किए, मुक्ति मंडप प्रतिष्ठा किए। पहले महाप्रसाद भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं था, केवल सेवायत वर्गों के लिए उपलब्ध था। सारी आने वाले भक्तों के लिए भी इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए प्रसाद बढ़ाया, भोग मंडप प्रतिष्ठा किया। इतने कृत्या आप देख रहे श्री जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था में सारी कृतियों का नियामक आदि शंकराचार्य भगवान है। उस समय से 2005 साल से वही स्वर्णिम इतिहास आज भी श्री मंदिर व्यवस्था में प्रचलित है। वर्तमान में वही गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जो आचार्य पद में वर्ण होते हैं वही श्री मंदिर का सारी रीति नीति परंपरा धार्मिक कृतियों का नेतृत्व लेते हैं।
0: पूरी की रथ यात्रा प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को देश विदेश से अपनी ओर आकर्षित करती। तीनों देवता गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं और वहां वे 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद प्रारंभ होती है वापस घर लौटने की यात्रा, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। वापसी के मार्ग में भगवान अपनी मौसी माँ के मंदिर के आगे रुकते हैं, जहाँ उन्हें भोग के रूप में उड़ीसा का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन पोड़ो पिठा अर्पित किया जाता है। यह परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच पारिवारिक स्नेह का सुंदर उदाहरण है। फिर श्री मंदिर के बाहर रथों पर ही पारंपरिक रूप से ठाकुरों को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है। सोना वेश में भगवान के दर्शन करने के लिए भी देर रात तक भक्तों की लंबी कतार लगती है। श्री मंदिर में माता लक्ष्मी जी को छोड़कर अपने भाई बहन के साथ यात्रा पर निकले महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी जब वापस आकर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने को होते हैं, तब देवी लक्ष्मी क्रोध और अभिमान के कारण मंदिर के द्वार बंद कर देती हैं। इस अनोखी परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रथयात्रा भाष्यकार श्री प्रताप चंद्र त्रिपाठी।
5: जिस लीला में भगवान श्री जगन्नाथ अपनी मां के पास भेंट करने के लिए 9 दिन की यात्रा करते हैं, यात्रा उपरांत श्री मंदिर को पुनः लौटने वाली लीला की अंतिम लीला लीलाद्री विजय लीला रूप में जाना जाता है। इस लीला में सबसे पहले चक्रराज सुदर्शन, दाऊ बलदेव जी, बहन सुभद्रा माता जी एक एक होकर रथ से उतरकर सिंहासन की ओर यात्रा करते हैं।

0: कि नीलाद्री विजय की यात्रा में बलदाऊ और सुभद्रा जी अंदर जाने उपरांत जब जगन्नाथ जी सिंहासन की ओर यात्रा शुरू करते हैं तो माँ महालक्ष्मी क्रोध अभिमान आदि भाव से मंदिर के द्वार को बंद कर देते हैं। माँ महालक्ष्मी जी को अपनी रथ यात्रा में साथ न लेने के कारण क्रोध में आकर ऐसी मनुष्यचित लीला करते हैं। दूसरी भगवान जगन्नाथ जी भी माँ महालक्ष्मी जी की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने साथ वस्त्र अलंकार तथा रसगुल्ला भी लेकर जाते हैं और महालक्ष्मी जी को मनाते हैं और सिंहासन की ओर जाते हैं। परम ब्रह्म को यह मनुष्य लीला वास्तव में बड़ी अनोखी है, आनंदमय शास्त्रीय होने साथ साथ संसार कल्याण का कारण भी है।
1: रथयात्रा में श्रद्धालुओं की निरापत्ता एवं श्रृंखलित रथयात्रा के लिए की गई विधि व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं पुरी जिला के पुलिस अधीक्षक श्री प्रतीक सिंह।
2: सारे डिपार्टमेंट सबकी तरफ से मिलके एक मिलित प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान को सुदृढ़ किया है, पार्किंग व्यवस्था को बढ़ाया गया है, इन्फॉर्मेशन चैनल्स बढ़ाए हैं, पब्लिक के साथ हम जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं टाइमली शेयर करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस मूवमेंट, फर्स्ट एड सेंटर्स का इफेक्टिवनेस, इस सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सारी एजेंसी सारे डिपार्टमेंट मीटिंग करते हैं रेगुलरली, सब लोग मिलके एज अ टीम काम कर रहे हैं।
1: श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाढ़ी रथयात्रा के सुचारू संचालन के विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं।
3: स्पेशल एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन एंश्योरिंग द स्मूथ कंडक्ट ऑफ रिचुअल्स, द नीति एज वी कॉल, एफिशिएंट क्राउड मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर सर्विसेज, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो मेनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन टू फैसिलिटेट ए वेरी सेफ, ऑर्डरली एंड स्पिरिचुअली फुलफिलिंग रथ यात्रा फॉर द डिवोटीज कमिंग फ्रॉम फार अक्रॉस द वर्ल्ड। The Sri Jagannath Temple Administration expresses its gratitude to all the sabbats of the Sri Mandira, the officials, the volunteers and all the stakeholders for their wholehearted cooperation and dedication. With the divine blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, every effort is being made to ensure the successful and peaceful conduct of this year's chariot festival. We request all the devotees coming for this grand spectacle to kindly follow the instructions and the procedures laid out for them. There would be few traffic restrictions in the city and also there would be few specific guidelines relating to the movement of devotees in the Badadanda and the adjoining areas. So we request everyone to kindly follow the SOP issued by the administration.
1: पूरी की रथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं, यह हमें सिखाती है कि ईश्वर स्वयं अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। वे किसी एक वर्ग, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भगवान हैं। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ को जगत का नाथ कहा जाता है। इसी शाश्वत संदेश के साथ हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री जगन्नाथ।
4: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में कल यानी गुरुवार 16 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली रथ यात्रा पर पूर्वावलोकन सुन रहे थे। आलेख एवं वाचन स्वर निशांत मजीठिया, प्रस्तुति सहयोग दिलीप कुमार नायक और राजीव कुमार महुंता, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। कार्यक्रम गीत मालिका में आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए सुनते हैं बर्फी फिल्म का ये गीत रेखा भारद्वाज की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं सैयद कात्री ने और संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

अब आइए सुनते हैं सैयद कादरी का लिखा गीत मिथुन के संगीत निर्देशन में। गायक कलाकार हैं रूप कुमार राठौड़, फिल्म है अनवर।

और कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म आशिकी 2 से। गायिका हैं तुलसी कुमार, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार जीत गांव।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई U19 और U23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 40 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड NVT मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
2: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
2: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे, पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की, वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये

0: समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
2: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक
1: हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
3: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
1: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे सीएसआर के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
4: जो सीएसआर है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है, तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम एमसीडी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मुहोजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रूपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को $14 करोड़ का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Government approves Semicon 2.0 with outlay of over 1,27,000 crore rupees to strengthen semiconductor ecosystem in the country. Also gives nod to mobile phone manufacturing scheme to scale up domestic production.

0: सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर दो कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ्फुज का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। जकार्ता में अंडर 19 और अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप्स में तीन भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के जबकि दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते हैं। और फीफा आलमी कप फुटबॉल के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान 46 किलोमीटर तवील 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिससे शहरी मोबिलिटी में बेहतरी आएगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल सरमाया लागत 14,400 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी और ये कौमी शाहरा 19 और वाराणसी रिंग रोड के दरमियान बिला रुकावट कनेक्टिविटी फराहम करेगा, जिससे शहर के सड़क नेटवर्क पर नुमाया तौर पर भीड़ भाड़ कम होगी और शहरी मोबिलिटी बेहतर होगी। इम्कान है कि ये प्रोजेक्ट जिस हिस्से का इहाता करेगा उसमें सफर का औसत वक्त 60 मिनट से कम होकर 20 मिनट हो जाएगा। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वरुणा दरिया के किनारे तकरीबन 43 किलोमीटर तवील 6 से 4 लेन वाले सतह जमीन से ऊपर कॉरिडोर की तामीर की भी मंजूरी दी है, जिस पर कुल सरमाया लागत तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए होगी। इसे वाराणसी रिंग रोड, वाराणसी हवाई अड्डे, काशी रेलवे स्टेशन, वाराणसी जंक्शन और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक रसाई में नुमाया बेहतरी भी आएगी। मरकजी काबीना ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम की तश्कील के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट अखराज के साथ सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि सेमिकॉन 1.0 प्रोग्राम में तवज्जो सनत के आगाज और उसे कायम करने पर थी और सेमिकॉन 2.0 के तहत सभी अहम जरूरी चिप्स भारत में ही डिजाइन की जाएंगी और इस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के इख्तिताम तक मुल्क चिप डिजाइन करने के मामले में खुद कफील बन जाएगा।
1: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: Us industry ko aur aage badhane ke liye
0: जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि भारत ने अमरीका, जापान, यूरोपीय यूनियन, नीदरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी के साथ पहले ही शराकत दारियां कायम की हैं। उन्होंने मुत्तला किया कि सेमिकॉन 2.0 के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का इम्कान है। मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट अखराजात के साथ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि आइंदा 5 बरस के लिए ये स्कीम नाफिज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से इसकी मुद्दत के दौरान मजमुई तौर पर अंदाजन 39,00,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन तैयार किए जाने का इम्कान है, जबकि मजमुई बरामदात के 7,50,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 15,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद है।
3: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है।
0: مرکزی کابینہ نے آتم نربھر بھارت کے لیے یوریا 2026 کی خاطر قومی سرمایہ کاری پالیسی کو بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد ملک میں گیس پر مبنی

0: यूरिया तैयार करने वाले यूनिटों के कयाम के लिए यूरिया के शोबे में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है ताकि खुद कफालत के हदफ को हासिल किया जा सके।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA नाफिज हो गया है। इसके साथ ही समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है, भी नाफिजुल अमल हो गया है। इससे बरतानिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबकती सलाहियत को मजीद तकवीत मिलेगी। इस तारीखी मुआहिदे के तहत बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदात के 99% हिस्से को 0 महसूल के साथ रसाई हासिल होगी। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खुराक की डिब्बाबंदी, दवासाजी और MSME जैसे शोबे शामिल हैं। इस मुआहिदे पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत, मुसाबकती और पायदार मईशत बनाने की समत में एक अहम कदम है। ये मुआहिदा भारत और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का आगाज भी है। मुआहिदे के निफाज के पहले ही दिन भारत से बरतानिया को 14 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया बरामद की गई। तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि ये एक निहायत अहम और बड़े तिजारती मुआहिदों में से एक है, जो दोनों मुल्कों को तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके फराहम करेगा। बरतानिया की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरॉन ने कहा कि ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। मलबूसात की बरामदात को फरोग देने से मुतालिक कौंसिल AEPC के चेयरमैन डॉक्टर ए सक्थीवल ने कहा कि इस मुआहिदे के नतीजे में 1.5 साल के अंदर बरामदात दोगुनी होने की उम्मीद है। नायब सदर CP राधा कृष्णन ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA और समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा भारत और बरतानिया के देरीना ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA से भारत के किसानों, कारोबारी अफराद और MSMEs को काफी फायदा होगा, जबकि मुख्तलिफ शोबों को बरतानिया के बाजार तक बेहतर रसाई हासिल होगी। इससे टेक्नोलॉजी, पेशेवराना खिदमात और इख्तरा के शोबों में भारतीय बाहमी तआवुन बढ़ेगा और हुनरमंद भारतीय अफराद की आमदोरफ्त आसान होगी। उन्होंने मजीद कहा कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत बरतानिया में आर्जी तौर पर काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद को बड़ा फायदा पहुंचेगा और भारतीय कंपनियों की मुसाबकती सलाहियत में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमले के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका की फौजी सेंट्रल कमान ने कहा है कि एक बार फिर किए गए हमलों का मकसद आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है, जो तवानाई की आलमी सप्लाई का एक अहम रास्ता है। ईरानी अहलकार उन्होंने कहा कि अमरीकी हमलों में फौजी बैरक्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 7 फौजी अहलकार हलाक हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी हमलों में जनूबी बंदरगाही शहर बूशहर को भी निशाना बनाया गया, जहां मुल्क की सिविल न्यूक्लियाई तंसीबात मौजूद हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमे मोहाजिरानी ने कहा कि एक दूसरे पर जारी हमलों के दौरान हालिया दिनों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उसने बहरीन और उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं, जिसमें कमान सेंटर, तैयारों के शेल्टर और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। उसने कहा है कि ये हमले बुहिरे हिंद में अमेरिका की जानिब से बहरी अफवाज तैनात करने और

0: ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोर्ट CSR पर जोर दिया ताकि स्टार्टअप्स महारत की तरक्की और एग्रीटेक के जरिए ज़राअत को मजबूत बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने नई दिल्ली में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 के लिए ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर पर जोर दिया कि वो ट्रस्टीशिप के भारतीय अखलाक को अपनाएं और अपनी कमाई का एक हिस्सा किसानों, जरई तहकीक और देही बिरादरियों के फलाह बहबूद के लिए वक्फ करें।
1: निश्चित तौर पर जो समझौते हुए हैं देश में कृषि के लिए भी और बाकी सेक्टर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझौते न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे जिसका लाभ खेती को भी मिलेगा, बल्कि इन समझौतों से भारत में हमारे उद्योग व्यापार जगत उनको एक नई ताकत मिलेगी।
0: चुनाव कमीशन ने आज पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी SIR मुहिम की हतमी तारीख में 11 दिन की तौसी कर दी है। दिल्ली में इब्तदाई वोटर फहरिस्त अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को शाये की जाएगी। इस तरह घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक का अमल जो 28 जुलाई तक जारी रहना था अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाये की जाएगी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज स्टार्टअप तहकीक और इख्तरा के लिए बेल्जियम के ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर एकाटेरिना जहरीवा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने तहकीक के लिए साफ सुथरी और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज के लिए उभरते हुए मौके पर तबादला ख्याल किया। 19 साल और 23 साल तक की उम्र की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप्स में आज जकार्ता में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते हैं, वहीं दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते। 19 साल तक की उम्र के जुमरे में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता, वहीं प्राची ने 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। फीफा आलमी कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे होगा। इससे पहले कल रात टेक्सास में मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। बरतानिया की हुकूमत ने आज 16 और 17 साल के 9 उम्र जवानों के लिए आधी रात के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने के मंसूबे का ऐलान किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ़ का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में कल से पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू

0: अबू के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यही मानना रहा है कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। राज्य की विमानन नीति इसी विचार पर आधारित है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मिश्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अमरीका ने होर्मुज जलडुमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमरीका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहजरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया ई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Union Cabinet has approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.
2: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम।
3: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद एन टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। द स्कीम प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक सोर्सिंग एज इंडिया हैज नाउ डेवलप्ड अ स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड मेनी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। अंडर द स्कीम क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन वर्थ अराउंड 39 लाख करोड़ रुपीस इज एक्सपेक्टेड एंड अराउंड 60,000 न्यू डायरेक्ट jobs will be created.
2: 3,000 direct jobs nay create honge.
1: The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Talking to media yesterday, after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the EU have a natural affinity. He added that India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domain. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both nations. Highlighting the discussions during the meeting, he said that they shared a vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. The Election Commission has extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, BLOs, which were scheduled till the 29th of this month, will now continue till the 8th of next month. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till 3rd of next month. Country's unemployment rate for persons aged 15 years and above remain unchanged at 5.5%,

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं।

0: सफर है हाय।
1: मुड़ मुड़ के

और 54 में फिल्म आई थी, और उसके बाद से ही आज तक कितने साल हो गए होंगे, करीब आई थिंक 73 इयर्स हो गए हैं, और ये फिल्म, ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर उसी तरह गुनगुनाते हैं लोग जैसे कोई नया गाना हो, उनकी जनरेशन का गाना हो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, और ये है आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए से अधिक के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत और ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिनों तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2:10 और पूरे 10 सेकेंड हो चुके हैं और ये वक्त होता है नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का। आए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए यायार लाइव न्यूज 24/7।

0: तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है।
1: अब बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ।
0: कल रात मैंने एक सपना देखा था।
1: सपना? कैसा सपना?
0: चारों तरफ आग ही आग, धुएं के बादल, मशीन गनों की धार धार, टैंकों की घरघराहट, भयानक जंग हो रही। मैं भागकर अपने प्लेन में बैठ जाता हूँ, प्लेन स्टार्ट करता हूँ, जूम आसमान में 300, 400, 700 की रफ्तार होते ही नीचे दुश्मनों का एयरपोर्ट नजर आता है। धड़म धड़म धड़म, 3 बॉम्ब जाके निशाने पे गिरते, एयरपोर्ट साफ।
1: उसके बाद
0: एक धड़ाम से आवाज आती, मेरा प्लेन हिल उठता है। नीचे देखता हूँ तो आधा प्लेन गायब, नीचे देखता हूँ तो होश गायब। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, आंखें बंद करके धड़ाम से नीचे कूद पड़ता हूँ, और जब आंख खुलती है अपने आप को एक अनजाने से शहर में एक अनजाने घर के सामने पाता हूँ। दरवाजा खुलता, एक खूबसूरत सी लड़की मुझ पर एक बाल्टी ठंडे पानी की डाल देती, आंख खुल जाती।
1: शुक्र है आंख खुली तो सही, मैं तो डर रही थी कि आपका सपना शायद खत्म ही नहीं होगा।
0: खादी, अब तो शुरू हुआ है मेरा सपना।
1: अरुण बाबू, मैंने आपके हाथ में दवा लगाकर पट्टी बांध दी है, अब आप।
0: पट्टी आपने गलत हाथ में बांध दी।
1: गलत?
0: जानती हूँ ये क्या हो गया वंदना
1: जी,
0: तुम मेरे सपने में खो गई थी। सच होगा मेरा सपना?
1: मुझे क्या मालूम।
0: तो फिर किसे मालूम?
1: बाबा को।

तू जवाब दो। ऐसे नहीं, जोर से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। नॉन स्टॉप फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर। श्रोताओं, रात के 3 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार होंगे। पहले आप हिंदी में और फिर उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0, 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकेंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाते हैं। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुस जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देशभर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उसका मुकाबला 19 जुलाई को स्पेन से होगा। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन एंथनी गार्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल दागा। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटेरो मार्टिनेज ने 90वें मिनट के बाद मिले अतिरिक्त समय के दूसरे मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महबश फातिमा। Union Cabinet has approved Semicon 2O with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1O, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub.
2: Semicon 2.0.
4: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: उस industry को और आगे बढ़ाने के
3: Mr. Vaishnaw said the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The cabinet has also approved two elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-European Union Trade and Technology Council meeting will carry forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU Free Trade Agreement, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Speaking to media yesterday after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the European Union share a natural affinity.
5: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
3: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU Free Trade Agreement as fair, equitable and balanced, saying it is a win-win agreement for all sectors in both nations. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal has launched the EVSP portal of Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department in New Delhi. The portal aims to expand digital access to legal knowledge by making important judgments of the Supreme Court and High Court's legal journals, reference books and other legal literature in Hindi available online. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that by exercising their right to vote, people reaffirm their faith in democracy. He called upon elected representatives to uphold this trust by serving with honesty, integrity and dedication. Addressing the conference of present and former members of the Rajasthan Legislative Assembly in Jaipur, organized to mark the 75th anniversary of the Rajasthan Legislative Assembly, Mr. Radhakrishnan said that state legislatures are the heartbeat of Indian democracy. Union Health Secretary Punya Salila Srivastav launched the Intermediate Field Epidemiology Training Program in New Delhi yesterday. The initiative through the National Center for Disease Control aims to build a highly skilled field epidemiology workforce by training 250 state and district

वाकई में श्रोताओं, जगजीत सिंह की आवाज़ में जो जादू था, जो कशिश थी, जो अपनापन था, वो किसी और के अंदर शायद मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। शायद यही वजह है कि उन्हें गज़लों का बादशाह आज भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं उनकी मधुर आवाज़ में ये अगली गज़ल।

वाकई में श्रोताओं, जगजीत सिंह की आवाज़ का तो कोई जवाब ही नहीं है, और उनका अंदाज आज भी सबसे अलग ही निराला माना जाता है। लेकिन ये बात कम लोगों को मालूम है कि उनकी पत्नी चित्रा सिंह भी गज़ल गायकी में किसी से कम नहीं थी। वो भी जगजीत सिंह की तरह ही एक मशहूर गज़ल गायिका रह चुकी हैं। आइए सुनते हैं उनकी प्यारी सी आवाज़ में ये मधुर सी गज़ल।

वाकई श्रोताओं, चित्रा सिंह की आवाज़ भी बेमिसाल थी, उनका भी अंदाज एकदम निराला था। आइए सुनते हैं चित्रा सिंह की ही आवाज़ में ये अगली गज़ल।

श्रोता हूँ गज़ल गायकी में। वैसे अगर देखा जाए तो पंकज उधास साहब का भी एक अलग ही मुकाम है। उन्होंने भी गज़ल गायकी में अपना एक अलग ही वजूद बनाया और यही वजह है कि आज भी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। हालांकि अब वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपनी गज़लों के ज़रिए वो हमेशा हमारे बीच मौजूद रहेंगे। सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये मधुर गज़लें।

0: इसी के साथ श्रोताओं, चलते चलते गजलों और गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: मैंने भूपेंदा के गीतों का अच्छा अनुवाद नहीं किया, मैं जानता हूं, या वो जानते होंगे जिन्होंने ओरिजिनल असमिया सुना है। मैंने कोशिश की थी इसलिए कि अनुवाद मुमकिन नहीं है। किसी भी इलाके की शायरी का तर्जुमा तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना किया है कि सुनने वालों को उकसाऊं कि वो इस शायर को, इस गायक को, इस संगीतकार को ढूंढें, तलाश करें और सुनें।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। सुबह के 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे श्रीमती सुधा रघुरामन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में श्रीमती सुधा रघुरामन प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर M. बाला मुरली कृष्णा की रचना बृहदेश्वरा महादेव।

इस कार्यक्रम का समापन श्रीमती सुधा रघुरामन गुरु सुरजानंदा की रचना गंगाधीश्वरम शंकरम से करेंगी।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। सुबह के 4:20 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 का समय होगा अंग्रेजी समाचारों का। सुबह 5:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग बद्ध पद्मासन। 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत। और 5:30 का समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। पर आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन सकते हैं। 6:40 पर आप कार्यक्रम चिंतन सुनेंगे। 6:45 पर आज आप सुनेंगे रामचरितमानस बालकांड का भाग 118। 6:55 पर संस्कृत समाचारों का समय होगा और 7 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार और सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीतिका। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी और 8 बजे आप हिंदी समाचार प्रभात सुनेंगे। 8:15 पर आप अंग्रेजी समाचार मॉर्निंग न्यूज़ सुन सकते हैं और 8:30 पर समय होगा उर्दू समाचारों का। 8:45 पर समय होगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का। पंद्रह मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका और 9:30 पर आप सुन सकते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। सुबह 10:10 का समय होगा हिंदी समाचारों का और 10:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पर

0: स्थिति की को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी थी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई, जो अधिक संरचित और व्यापक साझेदारी के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ होराइजन यूरोप कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बैठक के दौरान वे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना मानकों पर पहला नवाचार केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। सेना के केंद्रीय कमान ने बताया कि उसने दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाते हुए रात भर लगातार हमले किए और फिर दिन के उजाले में भी हमले जारी रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। मध्य प्रदेश में पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यही मानना रहा है कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। राज्य की विमान नीति इसी विचार पर आधारित है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां 19 जुलाई को इसका सामना स्पेन से होगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. Union Cabinet has approved Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub. Mr. Vaishnav said the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The cabinet has also approved two elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-European Union Trade and Technology Council meeting will carry forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU Free Trade Agreement, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Speaking to media yesterday after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the European Union share a natural affinity.
3: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
2: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU Free Trade Agreement as fair, equitable and balanced, saying it is a win-win agreement for all sectors in both nations. Election Commission of India has extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, BLOs, which were scheduled till the 29th of this month, will now continue till the 8th of next month. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till 3rd of next month. Delhi's iconic Red Fort complex has been closed to the public till the 80th Independence Day celebrations on August 15. An order in this regard has been issued by the Archaeological Survey of India, ASI, in view of the ongoing preparations for the Independence Day celebrations at the complex. A senior ASI official said that such orders are issued every year ahead of Independence Day. On August 15, only those with passes issued by the government are authorized to enter the Red Fort area to attend the celebrations which are held amid heightened security. The annual Rath Yatra of Lord Jagannath, Lord Balbhadr and Goddess Subhadra is being celebrated across Jharkhand today with traditional fervor and devotion. Religious rituals began early this morning at the historic Jagannathpur temple in Dhurwa, Ranchi. The Rath Yatra will commence for Mausi Badi at 5:01 p.m. The first international flight service from Madhya Pradesh has been launched. Chief Minister Dr. Mohan Yadav flagged off the first direct flight from Indore to Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. Speaking on the occasion, Chief Minister said that Prime Minister Narendra Modi had always believed that even a common man should be able to fly. The state's aviation policy has been built on this very idea. He said the government is ready to provide 15 lakh rupees per flight as financial support for international routes. This will help bring down ticket prices for passengers. In FIFA World Cup football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in USA to set up a title clash against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th time. Argentina's Enzo Fernandez equalised in the 55th minute and Lautaro Martinez struck in the 90th minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. Now Argentina will play against Spain in the final of July 19. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ

है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग बद्ध पद्मासन।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणता पूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की

0: 因着这里广播电台，接着我们现在播送佛教故事，请收听。
1: 印度德里广播电台。